एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। आज बृहस्पतिवार है। शक संबत 1948 के ज्येष्ठ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 11 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 और 20 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6 बजने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की

0: हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। चिंतन

जो लोग आपके सामने दूसरों की बुराई करते हैं, सच मानिए निश्चित ही वो लोग दूसरों से आपकी बुराई भी करते होंगे। बुरा करना ही गलत नहीं है, अपितु बुरा सुनना उससे भी गलत है। बुरा करना अगर घातक है तो बुरा सुनना पातक है। बुराई को सुनना बुराई को चुनना जैसा ही है, क्योंकि हम जब बुराई सुनना पसंद करते हैं तो बुराई का प्रवेश हमारे जीवन में स्वतः ही होने लगता है। जो हम रोज सुनते हैं देखते हैं वही हम भी होने लगते हैं। इसलिए उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो दूसरों की बुराई करते हैं। सदैव ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलया कोई, जो दिल खोजे आप ना मुझसे बुरा ना कोई।

जीवन में दिन आते और जाते रहते हैं, लेकिन वही दिन श्रेष्ठ कहलाता है जिस दिन की शुरुआत हम प्रभु भजन से करते हैं, ईश्वर की आराधना से करते हैं।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सुबह के 6:40 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए श्री रामचरित मानस गान।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:50 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित और रिले होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सुहानी। कार्यक्रम में आज विशेष के साथ ही हम जानकारी देंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, CNA डे के बारे में और साथ ही राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस के बारे में। और इसके साथ ही और भी जानकारियां और मनोरंजन के लिए गीत संगीत लेकर आएंगे हम कार्यक्रम सुबह सुहानी में। सुबह 7:40 का समय है लोकगीतों के कार्यक्रम शुभ प्याग का और 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम गाने सुहाने। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा सुबह 9:10 का समय है कार्यक्रम गीतों का कारवां और 10:30 पर आप सुनेंगे पहाड़ों के सुर और इस कार्यक्रम में हिमाचली गीत और लोकगीत आपके लिए लेकर आएंगे। महक पंजाब दी पंजाबी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा सुबह 11:05 पर और 11:30 का समय है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 12:00। दोपहर 12:30 का समय है कार्यक्रम मिंजरा का। विविध भारती के कार्यक्रम दिन में 1:10 पर आकाशवाणी मुंबई से रिले किए जाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20 पर, 11:00 दिन में, 3:00 शाम, 6:00 और 7:45 पर। समाचार प्रभात 8:00, मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर और न्यूज एट 9 रात 9:00 आकाशवाणी दिल्ली से रिले की जाएंगी। भजन सुनिएगा शाम 5:10 पर और शाम 5:30 का समय है कार्यक्रम युवा मंच का। कार्यक्रम किसान वाणी सुनिएगा शाम 6:05 पर और 6:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम मौजा गराइंदियां।

0: शाम 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से विशेष कार्यक्रम रिले किया जाएगा, साइंस एंड टेक। मिले जुले गीतों का कार्यक्रम सबरस रात 8:00 और रात 8:30 का समय है देशगान का। रात्रि 9:15 पर एक ही कलाकार, इस कार्यक्रम में अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर फिल्माए गए गीत हम आपको सुनवाएंगे। रात 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम रंगे गजल और 10:00 हिमाचली गीत और लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। रात्रि 10:30 का समय रहेगा कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। तो ये था कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से पहले संस्कृत में, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: इयम आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदो उपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमंत्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढमापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमंत्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानां उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44.5 कोटि नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं NDA सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य, प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः अष्टोत्तरैकशत प्रसिद्धाः कलाकाराः चतुर्विंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अथ च पञ्चविंशत्युत्तर द्विसहस्रतम वर्षस्य अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
3: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
4: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
3: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में, हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Expected during the day over Andaman and Nicobar Islands, Bihar, coastal Andhra Pradesh and Karnataka, Gangetic West Bengal, Tamil Nadu and Northeast India. And that is the end of this news bulletin.
1: एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 7:10 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सुहानी।
2: सुबह सुहानी।

0: सुबह सुहानी।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, गुड मॉर्निंग धर्मशाला। धौलाधार की खूबसूरत वादियों से टकराकर आ रही है ठंडी हवाओं के बीच आपके घरों की खिड़कियों और गाड़ियों के स्टीरियो से गूंज रही है एक फ्रेश आवाज जी दोस्तों, वो है आकाशवाणी धर्मशाला की। और सुबह के 7:10 हो चुके हैं, आपके साथ हाजिर हैं हम कार्यक्रम सुबह सुहानी लेकर। और आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त वंदना रैना, और हमारे स्टेशन का नाम है 103.4 MHz पर आकाशवाणी धर्मशाला। जी दोस्तों, आज तारीख है 11 जून और जून का महीना देश के बाकी हिस्सों में गर्मी का पारा चढ़ रहा है, लेकिन हमारी धर्मशाला की सुबह हमेशा की तरह जादुई है। तो चलिए इस जादुई सफर पर आप हमारे संग चलने के लिए तैयार हो जाइए कार्यक्रम सुबह सुहानी में। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस बेहद खूबसूरत गीत के साथ।

जी श्रोताओ, जीवन की बीणा में तार हैं और ये तार जो हैं हमारे जीवन को संगीतमय करते हैं। और अगर हम बात करें सुबह की,

पहाड़ों की सुबह हमेशा ही बहुत खूबसूरत रहती है और इन ऊंचे पहाड़ों को देखकर हमें मन हमारा जो है वो मुग्ध हो जाता है और इसके साथ ही हम महसूस करते हैं ठंडी हवाओं को, साथ ही सुनते हैं पंछियों की आवाज़ों को और एक सूर्योदय जो है वो हमारे जीवन में भी पूरा प्रकाश भर देता है। और दोस्तों, जब हम इन पहाड़ों को देखते हैं तो हमेशा एक ही बात समझ में आती है, ये पहाड़ सदियों से अपनी जगह पर अड़ी खड़े हैं, चाहे कितनी भी बर्फ गिरे, आंधी आए या फिर तूफान आए। और किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। जी दोस्तों, अक्सर हम जिंदगी में बड़ी मुश्किलों या फिर बड़े लक्ष्यों को देखकर डर जाते हैं और हमें लगता है कि ये काम कैसे होगा, लेकिन हमेशा ये याद रखने की ज़रूरत है, जैसे पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हर बार सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना होता है, वैसे ही जिंदगी के हर बड़े सपने को पूरा करने के लिए आज का दिन आपका वो कदम है। तो दोस्तों, पास्ट में जो हुआ उसे भूल जाइए, फ्यूचर की चिंता छोड़ दीजिए और बस आज के इस दिन को अपना बेस्ट दीजिए और कोई भी मुश्किल होगी, कोई भी कठिनाई होगी, वो आपके आगे घुटने टेक देगी। और इसी पावरफुल और इसी पॉजिटिव थॉट के साथ अब कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं अगला गीत।

जी श्रोताओं, जीवन हंसने और हंसाने का नाम है, और ये ज़रूरी नहीं कि हम कितना हंसते हैं, बल्कि ज़रूरी ये होता है कि हम अपने चारों तरफ कितनी खुशियां बिखेरते हैं और कितने लोगों के हंसने का कारण बनते हैं। और आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुबह सुहानी। आप सुन रहे हैं ये कार्यक्रम FM धर्मशाला पर। दोस्तों, अब नज़र डालते हैं आज की समाचार सुर्खियों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में राज्यों के विकास, रोजगार और कौशल विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसके साथ ही देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट बदल ली है, और मौसम विभाग ने हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और श्रोताओं, इसके साथ ही फुटबॉल का महाकुंभ 2026 फीफा विश्व कप आज अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में शुरू हो रहा है, और दुनिया भर के करोड़ों दर्शकों की निगाहें इस टूर्नामेंट पर टिकी हुई हैं। और खास बात यह है कि इस टूर्नामेंट में पहली बार 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिससे मुकाबले के और भी रोमांचक होने की उम्मीद है। और इसके साथ ही श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज है परमा एकादशी, और हिंदू धर्म में इस एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है, और भक्तजन आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे शहर के तापमान की। तो आज अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री के आसपास रहेगा, और हमारे शहर का मौसम जो है वो बहुत ही सुहाना है। और शाम होते होते ही पहाड़ों पर हल्की ठंडी हवाएं चलेंगी, हल्के बादल भी देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो सकती है। जी हाँ, और ये मौसम बिल्कुल परफेक्ट है अपने काम पर फोकस करने के लिए। तो जितने भी लोग इस समय गाड़ी चला रहे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, उन्हें हम बस यही कहना चाहेंगे कि गाड़ी थोड़ा आराम से चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें या फिर हेलमेट का भी प्रयोग करें। और आपके इस सफ़र में थोड़ा सा और सुकून हम भी घोलते हैं अगले गीत के साथ।

जी दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर, और आज है 11 जून। और चलिए अब पलटते हैं इतिहास के पन्ने और बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जिन्होंने 11 जून के इस दिन को बना दिया कुछ खास। भारतीय क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ साल 1897 में आज ही के दिन, और उन्होंने साल 1918 का मैनपुरी कांड और साल 1925 का काकोरी कांड और इसके साथ ही ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किया था। वे न सिर्फ महान स्वतंत्रता सेनानी थे बल्कि कवि और कुशल साहित्यकार भी थे, और उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए 19 दिसंबर सन 1927 को उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। 11 जून सन 1997 को निधन हुआ था भारतीय लंबी दूरी के तैराक और व्यवसायी मिहिर सेन का। वे डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे और एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैरने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, और उनकी उपलब्धियों के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे लंबी दूरी के तैराक के रूप में शामिल है। श्रोताओं, साल 1866 में आज के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, और पहले इसे आगरा उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया गया साल 1921 में, और एडविन आर्मस्ट्रांग ने पहली बार एफएम का प्रसारण किया 11 जून सन 1935 को। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी अस्थियों को देश की प्रमुख नदियों और खेतों में बिखेरा गया 11 जून सन 1964 को। और ब्रिटेन की आयरन लेडी कही जाने वाली मार्गरेट थैचर ने 11 जून को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला साल 1987 में, और ब्रिटेन के 160 वर्ष के इतिहास में ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली राजनेता थी। और आज ही के दिन वर्ष 2010 में अफ्रीका ने 19वें फुटबॉल वर्ल्ड कप टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, और ये पहला मौका था जब अफ्रीकी महाद्वीप में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था।

जी श्रोताओ, गर्मियों के इस मौसम में पानी का अपना ही महत्व है और अगर पानी स्वच्छ हो, साफ हो, तो फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसे में जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो पानी की बोतल साथ रखना बिल्कुल ना भूलें और इसके साथ ही अपने घरों में रखें बेजुबान पशु पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा पानी। और अब कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। तो दोस्तों, खेलें सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बच्चों की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं को विकसित करने का प्राकृतिक तरीका है और इनके साथ ही खेल बच्चों की प्रतिभा को उजागर करते हैं और इसीलिए आज का दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में। और ये दिन पहली बार मनाया गया साल 2024 में, जो विशेष रूप से बच्चों और उनके खेलने के अधिकारों पर केंद्रित है। और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के बीच विश्राम अवकाश और खेलने को बढ़ावा देना और सभी को जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूक करना। श्रोताओं, इसी के साथ आज है सीएन डे, यानी कि नेशनल करियर नर्स असिस्टेंट्स डे, और ये दिन मनाया जाता है 11 जून को। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई साल 1977 से। CNA स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में और होम केयर सेटिंग्स में नर्सों के साथ मिलकर मरीजों की दैनिक ज़रूरतों और स्वास्थ्य में देखभाल में मदद करते हैं। और ये दिन सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट्स के समर्पण, कड़ी मेहनत और उनके द्वारा मरीजों की जाने वाली देखभाल को सम्मानित करने का दिन है।

और श्रोताओं, हर साल 11 जून को मनाया जाने वाला उत्सव है राष्ट्रीय जीवन सौंदर्य दिवस। ये दिन उन सभी लोगों, कार्यों और पॉजिटिव एटीट्यूड को सम्मानित करता है जो हमारे जीवन और दुनिया के अधिक सुंदर, सार्थक और खुशहाल बनाते हैं। और इसके साथ ही आज का दिन हमें प्रेरित करता है दूसरों के जीवन में खुशियां बिखेरने के लिए और खुद के जीवन को सार्थक बनाने के लिए। और आप भी ये दिन मना सकते हैं किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके और प्रकृति के बीच में समय बिताकर या फिर अपनी पसंद का कोई काम करके। तो दोस्तों, आज कार्यक्रम सुबह सुहानी का खूबसूरत सफ़र बस यहीं तक है, लेकिन आज का दिन, पूरा दिन अभी आपका है। इसे खुलकर जिए और साथ ही इस दिन में कुछ नया कमाल करें। कल फिर आपसे इसी कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। और जाते जाते बस इतना ही कहेंगे कि आप जब भी हमारे पहाड़ों में आते हैं तो आप सबका स्वागत है, लेकिन पहाड़ों को साफ और स्वच्छ रखने में हमारी मदद ज़रूर कीजिए। और मनोरंजन के सिलसिले को कार्यक्रम में आगे बढ़ाते हैं इस गीत के साथ, और आप मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति।

0: सुबह सुहानी।
1: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुबह सुहानी आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग। और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं वर्षा कटोच के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

0: this June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
2: Nexa.
3: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
4: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: नई विक्टोरियस, स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
6: दोस्तों, इस दौड़ती भागती जिंदगी में संवाद बहुत जरूरी है और यही कोशिश करता है आपका अपना आकाशवाणी धर्मशाला का परिवार।
7: जी श्रोताओं, चैटिंग और मैसेजिंग की इस दुनिया में आकाशवाणी धर्मशाला आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मंच जहां जुड़ती है आम जनता की आवाज, उनके विचार, उनके सुझाव और उनकी उम्मीदें।
6: आपकी इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम जनवाणी, जहां हर राय मायने रखती है, हर आवाज गूंजती है।
7: साथियों, जनवाणी सशक्त माध्यम है आपके और हमारे बीच संवाद का, जिसमें आप फोन कॉल्स के माध्यम से सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और अपने विचार साझा कर सकते हैं।
6: क्योंकि आपकी हर बात हमारे लिए मायने रखती है, तो आइए मिलकर अपनी बातें साझा करते हैं कार्यक्रम जनवाणी में, हर शुक्रवार सुबह 9 बजे FM धर्मशाला पर।
5: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
6: और श्रोता लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम शुभ प्याग की अंतिम प्रस्तुति। करनैल राणा की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये लोकगीत।

लोकगीतों का कार्यक्रम शुभ प्रयाग आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति गीत महेंद्र कपूर और साथियों का गाया हुआ।

आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8 बजे और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
3: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
0: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
2: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
8: भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
2: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है।

0: अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
2: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने दो वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
0: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्ता ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब ₹1,000 तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमरीका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है, 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी ITBP। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से, 10 दावेदार, 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खान पान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
5: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
4: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
6: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
4: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the country has moved out of the fragile 5 category and has now become one of the fastest growing economies in the world. Earlier yesterday, the National Democratic Alliance adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming the country's longest-serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Naveen has said that a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave held at Bharat Mandapam in New Delhi. Speaking to the media, Mr. Naveen said the NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Narendra Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone, calling it a moment of pride for 140 crore people of the country. Mr. Naveen said, under Prime Minister Modi's leadership, India is moving forward towards the vision of Viksit Bharat. He added that the Prime Minister's guiding mantra of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas has connected people across the country. India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: रिश्तों की खुशबू से महकेगा हर पल,
3: जहां संवरेगा सखियों का आज और कल,
4: जानकारी, मनोरंजन और भावनाओं से भरपूर,
3: जहां आप नहीं रह पाएंगे हमसे दूर।
2: आ रहा है आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
4: जहां मिलेंगे जीवन को बेहतर बनाने वाले विचार
3: और खान पान में बनाएंगे कई व्यंजन और अचार।
4: तो सोमवार से शनिवार सुनना ना भूलिए
3: आपका अपना कार्यक्रम सुनो सखी,
2: दोपहर 12:30 पर
4: सिर्फ आकाशवाणी धर्मशाला से।
0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
6: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
0: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
7: गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और कार्यक्रम का लीजिए सुनिए अगला गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे।

0: नई विक्टोरियस स्टाइल, कंफर्ट और परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएंगे और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपनी नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्त लागू।
1: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 EMI। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
0: SUV का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
2: यादों की बारात, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत। इस फिल्म से इस गीत को गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

गाने सुहाने, ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे थे आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 9 बज चुके हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम गीतांजलि। जी श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि में आप सबका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ वंदना रैना।

जी दोस्तों, हम बिल्कुल जानते हैं कि आप सभी का मन बस यही कहता है कि आप आकाशवाणी धर्मशाला को ट्यून करके यहाँ से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनते रहें। और वैसे भी दोस्तों, 11 जून की ये सुबह बहुत ही हसीन है और आज एक ऐतिहासिक दिन है रेडियो वालों के लिए और आप सब सुनने वालों के लिए। आज के दिन 11 जून को दुनिया में पहली बार FM रेडियो तकनीक का सफल प्रदर्शन किया गया था। तो दोस्तों, एक तरह से आज आपके इस पसंदीदा FM रेडियो का है जन्मदिन। और आज के इस खास मौके पर इस मौसम को एंजॉय करेंगे, ताज़ा करेंगे, कुछ पुरानी यादें सुनेंगे वो नगमे जो आपकी सुबह को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देंगी। तो चलिए, कार्यक्रम के सफर की अगला गीत जो है वो ये खूबसूरत सा गीत है जिसे हमने लिया है फिल्म जब भी मेट से।

0: भारत की फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है FM 103.4 MHz पर आकाशवाणी धर्मशाला। और दोस्तों, जब मौसम बदलता है और हवाओं में थोड़ी सी भी नमी आती है तो मिट्टी से एक बेहद सौंधी सी खुशबू उठती है और वो खुशबू हमें अपनी जड़ों की याद दिलाती है, अपने देश की याद दिलाती है। और आज का दिन यानी कि 11 जून हमारे इस देश की मिट्टी के लिए एक और वजह से बहुत ही खास है। आज भारत माता के ऐसे सच्चे सपूत का जन्मदिन है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वो महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे, रामप्रसाद बिस्मिल। तो जब हवाएं गुनगुना रही हैं, आइए हम सब मिलकर भी देश की इस पावन मिट्टी को और साथ ही अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी की यादों को नमन करते हैं।

जी श्रोताओ, आपने ट्यून किया है 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतांजलि और हमारा ये कार्यक्रम अब आप सुनेंगे 9:30 पर। थोड़ी ही देर में यानी कि 9:20 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज। 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के ढगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इनमें आधारभूत मानव पूंजी और भविष्य के लिए आवश्यक कौशल विकास, उत्पादक रोजगार, उद्यमिता और विकेंद्रीकृत विकास, स्वास्थ्य, पोषण और जन कल्याण तथा सभी के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल हैं। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से जुड़े 4 प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज एवं 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संसाधन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के देश वापस लिए गए हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। कांगड़ा जिला के ढगवार में 225 करोड़ रुपए की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत डेयरी सेक्टर को नई मजबूती सहित हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। अधिक जानकारी के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
2: कांगड़ा जिले के ढगवार में 225 करोड़ से अधिक की राशि से एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, जो न केवल डेयरी सेक्टर को नई मजबूती देगा बल्कि हजारों ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

0: कांगड़ा से विपिन शर्मा।
1: प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनावों में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर के खंडपीठ के समक्ष ये मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्थानीय विधायकों नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की चौथी सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुलर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या का समा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं। हालांकि सिरमौर जिला के नाहन में बारिश होने का समाचार है। मौसम विभाग के अनुसार आज से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 16 जून तक मौसम खराब बने रहने की संभावना है। विभाग ने आज 5 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर के लिए बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, व्यावसायिक वाहनों का बढ़ेगा परमिट शुल्क, हर 2 साल में होगी 10% बढ़ोतरी। हिमाचल परिवहन विभाग ने मोटर वाहन नियम संशोधन का ड्राफ्ट किया अधिसूचित। मुख्यमंत्री के हवाले से पंजाब केसरी लिखता है, ई टैक्सी और ई रिक्शा के लिए मिलेंगे 50 करोड़, हिमाचल में अब 24 घंटे खुल सकेगी दुकानें। दैनिक जागरण का शीर्षक है, प्रमाण पत्र व लाइसेंस सहित सभी सेवाएं करें ऑनलाइन। दैनिक भास्कर की खबर है, नीति आयोग की बैठक में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे प्रदेश हित से जुड़े मुद्दे। मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, प्रदेश में आज से बिगड़ेगा मौसम, बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। नीति आयोग की बैठक नई दिल्ली में आज, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल लेंगे भाग। प्रदेश सरकार ने 73 सरकारी स्कूलों को किया मर्ज, 20 किए बंद और 3 कॉलेजों के विलय का फैसला लिया वापस। कांगड़ा जिला के धगवार में एक अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का किया जा रहा निर्माण। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 5 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जबकि अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट किया जारी। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11 बजे। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र है।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
4: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999.

0: per month. Also get amazing benefits up to rupees 50,000. Valid till 30th June.
1: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
2: जी दोस्तों, एक बार फिर से कार्यक्रम गीतांजलि में आप सबका स्वागत है 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी धर्मशाला से। आज गीतांजलि कार्यक्रम का ये सफर आप तय कर रहे हैं अपने रेडियो दोस्त वंदना रैना के साथ। जी दोस्तों, जब मौसम अपनी करवट बदलता है तो उसका असर सिर्फ उस जगह पे नहीं बल्कि सीधे हमारे मूड और दिल के अंदर के मौसम पर भी होता है। और जून की इस गर्मी के बीच में सोचिए जरा, जब अचानक से आसमान में बादल छा जाएं, ठंडी हवाएं चलें, तो हमारा दिल थोड़ा सा भावुक और बहुत ज़्यादा शायराना हो जाता है। और किसी कोने में दबी हुई पुरानी यादें अचानक से मुस्कुराने लगती हैं। और इस खूबसूरत और शायराना मूड को और भी गहरा करते हैं इस रोमांटिक ट्रैक के साथ।

जी दोस्तों, हर मौसम का अपना ही मजा है। किसी को गर्मी पसंद है तो किसी को सर्दी, और किसी को रिमझिम भरी बरसात। और हर मौसम जो है वो हमारी प्रकृति में अपनी खूबसूरती, अपना ही अंदाज बिखेर देता है। और जब भी मौसम बदलता है तो हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ी हुई यादें, अधूरी यादें हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में दस्तक दे देती हैं। और इन जुड़ी हुई अधूरी यादों को और भी खूबसूरत बनाते हैं प्यारे प्यारे गीत। तो कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, लीजिए सुनिए।

जी दोस्तों, जब भी मौसम बदलता है तो इंसान चाहे कितना भी मसरूफ क्यों ना हो, थोड़ा सा शायराना जरूर हो जाता है और किसी कोने में दबी हुई पुरानी यादें अचानक से मुस्कुराने लगती हैं। लेकिन मौसम का बदलना तो दोस्तों कुदरत का खूबसूरत नियम है, लेकिन अगर इंसान बदल जाए तो क्या ही कहना।

जी दोस्तों, हमारा ये जीवन भी मौसम की तरह है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। तेज धूप के बाद छांव आती है, कड़कती गर्मी के बाद बादल की फुहारें आती हैं और पतझड़ के बाद बहार आती है। तो बिल्कुल हुई ना हमारी जिंदगी भी मौसम की तरह, जिसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जरूरत है निराश ना होने की, यकीन रखने की कि बादलों का कारवां बहुत जल्द सुकून की बारिश लेकर आएगा। और मौसम हमें यही सिखाता है कि हर बदलाव खूबसूरत होता है।

जी श्रोता, बाहर मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन अपने दिल के भीतर उम्मीदों और मोहब्बत की बुहार को कभी भी कम मत होने दीजिएगा। और किसी ने क्या खूब कहा है, हौसला रख ए दिल, हर मौसम को गुजर जाना है। हौसला रख ए दिल, हर मौसम को गुजर जाना है, पतझड़ की सराख से ही फिर बहार को मुस्कुराना है।

जी श्रोताओ, वक्त की सुइयां टिक टिक करके लगातार आगे बढ़ती जा रही हैं और हमें इशारा कर रही हैं कि आज का ये खूबसूरत सफर बस यहीं तक। और जाते जाते बस इसी यही कहेंगे कि इस लवली मौसम का आप भी खूब आनंद लीजिए और इसके साथ ही अपनी जो एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव रखिए और इसके साथ ही अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान सजाइए जो किसी के भी उदास दिन को खूबसूरत बना सकती है। आपको ये कहना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम गीतांजलि के आज के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर जतेंद्र पाल सिंह। अपनी रेडियो दोस्त वंदना रैना को दीजिए अनुमति। हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए FM धर्मशाला। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतांजलि आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। सुबह के 10 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों का कारवां।

श्रोताओं, घड़ी की सुइयों ने कर दिया है इशारा और वक्त है अब हमारा। जी हाँ, मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त नीलम, जिसकी बातें कभी नहीं होती कम। हाजिर हूँ लेकर के आपका अपना कार्यक्रम गीतों का कारवां। दोस्तों, हर दिन की अपनी एक कहानी होती है और हर इंसान भी अपने हिसाब से अपनी कहानी लिखता है। कोई अपने सपनों के पीछे दौड़ता है, कोई जिम्मेदारियों का झोला उठाए निकल पड़ता है, तो कोई बस दो पल का सुकून अपने लिए तलाशता है। तो जी हाँ, अगर आप भी सुकून की तलाश में हैं तो आ जाइए हमारे साथ और इस गीतों के कारवां को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं।

जिंदगी के सफर में हम आगे बढ़ते हैं जैसे जैसे, और रास्तों से जब हम गुजरते हैं और किसी ऐसे शख्स से हमारी मुलाकात हो जाए जिससे मुलाकात से हमें डर लगता है, तो दिल कुछ थक सा कर जाता है और दिल से जो कुछ आवाज निकलती है, जो कुछ बोल निकलते हैं, बिल्कुल वैसा ही इस गीत का हाल है। सुनिए।

जी हाँ दोस्तों, दिल है छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है, छोटी छोटी बातों से डर जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। हम आपके साथ बने हुए हैं FM 103.4 MHz पर, आकाशवाणी धर्मशाला आपने ट्यून किया है और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गीतों का कारवां। दिल भी अजीब है, कई सालों तक किसी को पहचानने के बाद भी खामोश रहता है और कभी किसी एक मुलाकात में अपनी सारी हुकूमत किसी के नाम कर देता है। ना नाम पूछता है, ना पता, ना वजह ढूंढता है, ना बहाना। बस एक दिन अचानक कह उठता है, लो ये दिल अब तुम्हारा है। और दिल तुम्हारा है और इसी बेफिक्र मोहब्बत के एहसास को शब्द देता है हमारा अगला गीत। इस गीत को सुनिए और इस गीत का आनंद लीजिए।

0: कार्यक्रम गीतों का कारवां इसका आनंद ले रहे हैं आप आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने इसे ट्यून किया है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
1: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
2: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
1: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
2: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
1: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
2: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
3: अरे बेटा, जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
5: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
6: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: गीतों का कारवां इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत। श्रोताओं, कभी कभी दिन कितना बिजी होता है लेकिन तब भी दिल खाली खाली सा लगता है, कहीं दिल लगता ही नहीं। तो ऐसे में एक अच्छी सी धुन, कुछ प्यारे से गीत और अपनों के साथ बातें हो जाएं तो इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है। और अगर आपका भी आज कहीं दिल नहीं लग रहा तो हमारी गली का पता तो आपको मालूम ही है, बस रेडियो का नॉब घुमाइए, FM धर्मशाला 103.4 MHz पर मिलाइए और हो जाइए शामिल हमारे इस गीतों के कारवां में। यहाँ बातों की गर्माहट है, गीतों की मिठास भी और आपका बेहतरीन सा साथ भी।

जी हाँ दोस्तों, हमारी गली यानी एफएम धर्मशाला की गली आप आ ही गए हैं, तो इस गली से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस गली में आप आए हैं, आपको मोहब्बत है आकाशवाणी धर्मशाला से। और मोहब्बत सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दिल का सुकून देने वाली एक मीठी सी धड़कन है, जिसके होने से जिंदगी के हर रंग है और हर खूबसूरती है। जब किसी का साथ भरोसा बन जाए, किसी की बातें मुस्कान बन जाए और किसी की मौजूदगी दिल का चैन बन जाए, तो समझ लीजिए कि प्यार अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल पर है। इन्हीं जज्बातों को बयां कर रहा है ये हमारा अगला गीत, दिल है तुम्हारा, फिल्म से।

ये था दोस्तों आज का कार्यक्रम गीतों का कारवां। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 10:30 हुए हैं, हाजिर हैं लेकर के हिमाचली लोक गीतों का कार्यक्रम पहाड़ों के सुर। जी हाँ दोस्तों, पहाड़ अपने आप में बहुत से गीत गाते हैं। जब ठंडी हवा बहती है, नदियाँ कलकल बहती हैं और ऊपर से गिरते हुए झरने, ये सब अपने आप में कुछ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। और बात करें अपने हिमाचल की, तो हमारा हिमाचल बेहद खूबसूरत है, तभी तो पर्यटक यहाँ खिंचे चले आते हैं।

पहाड़ों की सूर्य कार्यक्रम आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, पहाड़ों का हर महीना अपने साथ एक नया रंग लेकर आता है। चैत्र की बहार हो, सावन की फुहार हो, या माघ की ठंडी हवा हो, या हो जेठ की कड़कड़ाती सी धूप, हर मौसम की अपनी अलग ही कहानी है। बिल्कुल इस गीत की तरह।

0: कार्यक्रम पहाड़ों के सुर में वक्त अब एक ब्रेक का।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply. Nexa.
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट, 1999 ईएमआई। जी हाँ, अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए ईएमआई के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना, खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।
0: पहाड़ों की सुर हिमाचली लोकगीतों का यह कार्यक्रम आकाशवाणी धर्मशाला से आप सुन रहे हैं। और आकाशवाणी धर्मशाला से जब लोकगीतों का कार्यक्रम हो और धर्मशाला की वादियों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाग सुना अगर धौलाधार की बात ना आए, ऐसा भी नहीं हो सकता। भाग सुना की हसीन फिजाओं पर नजर उठे तो सामने बर्फ से ढकी धौलाधार पर्वतमाला अपनी पूरी शान के साथ चमकती दिखाई देती है। इसी प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों की भव्यता और क्षेत्र के प्रति प्रेम को बड़े ही खूबसूरत अंदाज से बयां कर रहा है हमारा ये अगला लोकगीत।

श्रोताओ, ये हुई बात भाग सुनागर धौलाधार की। हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, पहाड़ों के सुर। श्रोताओ, हिमाचल की बात हो रही है और आजकल यात्राओं का मौसम चल रहा है, यानी जिसे हमारी भाषा में जातर कहा जाता है। तो यात्राएं आजकल जा रही हैं और जातर के लिए जब कहीं भी जाते हैं तो उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। इससे ही मिलता जुलता सा कुछ एक ऐसा लोकगीत है जो हम आपको सुनवा रहे हैं। आनंद लीजिए इस लोकगीत का।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa. 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पहाड़ों के सुर।

कार्यक्रम पहाड़ों की सुर आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं और लोकगीतों की बात हो रही है और पहाड़ों की खूबसूरती की बात हो रही है। पहाड़ों की खूबसूरती को बयां करता अगला लोकगीत लीजिए, सुनिए लक्ष्मी का गाया।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी और एनडीए ने हमेशा राष्ट्र के विश्वास को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: एनडीए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। सम्मेलन में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के नेता, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मौजूद रहे। बैठक में विकसित भारत 2047 के रोडमैप पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस दौरान विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री

0: सुखविंदर सिंह सुक्खू भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री प्रदेश से जुड़े चार प्रमुख मुद्दों को प्रधानमंत्री के समक्ष उठाएंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व घाटा अनुदान राशि के बंद होने से राज्यों को हुए आर्थिक नुकसान, प्राकृतिक आपदाओं की भरपाई और लंबे समय से लंबित ग्रीन बोनस की मांग से जुड़े मुद्दे उठाने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी हाईकमान से सरकार और संगठन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के वर्गों को संबोधित करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश में 5 छात्रों वाले 73 स्कूल मर्ज और 0 नामांकन वाले 20 स्कूल और बंद कर दिए हैं। राज्य सरकार का तर्क है कि स्कूलों के युक्तिकरण से छात्रों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं व संस्थान उपलब्ध करवाए जा सके। इस बीच सरकार ने 3 सरकारी कॉलेजों को विलय करने के आदेश वापस ले लिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें डिग्री कॉलेज कुकुमसेरी, डिग्री कॉलेज रोहनाट और डिग्री कॉलेज जयनगर के विलय के आदेश वापस लिए गए हैं। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के चुनाव में विधायकों के वोट डालने पर रोक लगाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायाधीश अतुल एस चांदुरकर की खंडपीठ के समक्ष ये मामला 15 जून के लिए सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश हाईकोर्ट ने 4 जून को प्रदेश सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसके तहत स्थानीय को नगर निकायों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव में बराबर पार्षद होने पर वोट डालने का अधिकार दिया था। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की 4वीं सांस्कृतिक संध्या में आज उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस संध्या में सुप्रसिद्ध पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर मुख्य कलाकार के रूप में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके अतिरिक्त हिमाचल के विभिन्न मशहूर कलाकार सांस्कृतिक संध्या में सामा बांधेंगे। इसके अलावा उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों के साथ लोगों और पर्यटकों का मनोरंजन करेंगे। 12 जून तक चलने वाले इस महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम व अन्य प्रतियोगिताएं लोगों व पर्यटकों को आकर्षित कर रही है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के शिमला FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र से सुने जा रहे थे। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर यानी
2: 704.4 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला। 11:05 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महक पंजाब दी।
3: ता नीलम कार्यक्रम च लो पेश है पहला गीत आशा सिंह मस्ताना ते सतिंदर कौर दी आवाज
2: जी जी बिल्कुल ते कार्यक्रम च सारे श्रोतियां दा स्वागत, सारे सुनन वालेयां नू सत श्री अकाल ते जी आयां नू। सुनिए इस गीत नू।

0: कार्यक्रम है महक पंजाबी। कार्यक्रम तुसी सुनते पे हो अपनी आर जे नीलम दे नाल ते मेरे नाल हैगे जितेंद्र पाल सिंह जी। जितेंद्र जी, ए गीत असी सुनिया, इनू कहंदे ओल्ड इज गोल्ड
1: जी। ए बहुत ही पुराना ते मशहूर सिंगर दा गाना हैगा सी
0: जी। बिल्कुल, आसा सिंह मस्ताना ते सुरेंद्र कौर ने इस गीत नू गाया है ते इहदे च बोलिया है जवानी नू रोलो ना। ते असी भी सारे जितने भी साडे युवा हैगे उहनां नाल अपील करना चाहांगे कि अपनी जवानी नू बिल्कुल ना रोलो,
1: संभाल के रखो
0: जी। बिल्कुल, अच्छे कम्मां च लगो ते अच्छे कम्मां च वधो। हुण असी भी अगे वधदे आं ते लोक गीत सुणांदे आं। लोक गीत नहीं, माफ करियो, ए पंजाबी गीत।
1: अगला गीत सुणावांगे अमरिंदर गिल दी आवाज़
0: जी।

0: 4.4 MHz ते तुसी इस समय जुड़े हुए ने आकाशवाणी धर्मशाला दे नाल ते तुसी आनंद ले रहे हो पंजाबी गीतां दे कार्यक्रम महक पंजाब दी दा। ते कार्यक्रम च अगे वधन तो पहले वक्त हैगा छोटे दे ब्रेक चा ब्रेक दा।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
4: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
5: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
7: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
8: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
2: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
3: Nexa.
9: प्रोग्राम महक पंजाबी तुहाडा फिर स्वागत है। अगला गीत सुनवावांगे तुहानू दिलजीत दोसांझ की आवाज़

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ से तुसी जुड़े हुए ने आकाशवाणी धर्मशाला दे नाल ते इंजॉय कर रहे ने कार्यक्रम महक पंजाब दी। जी जितेंद्र जी, पंजाब दी महक दी जदों गल आंदी है ते पंजाबी गीतां दी गल जरूर आंदी है
1: जी,
0: ते पंजाबी गीत जदों चलदे है ते मौज मस्ती हुंदी है ते नाच भी
1: तमाला पैंदियां ने।
0: जी तमाला पैंदियां ने, भांगड़ा गिद्धा हुंदा है। ते अगला जिहड़ा पंजाबी गीत असी श्रोता वास्ते लै के आए दे ने ਉਹ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਗੁਲਰੇਜ਼ ਅਖਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੀਏ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਨੂੰ।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
3: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छिपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
3: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
3: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
3: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
3: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई है, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती है। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
3: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
2: जी
3: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
2: जी
3: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
2: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको

0: का फल कैसा होता है?
1: तो श्रोताओ, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है, यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है,
0: जी
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है किस्मों और स्थान के अनुसार।
0: जी
1: इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओ, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी, श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
1: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
2: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहाँ बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती उन्हें कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी।
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ।
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें 1-2 विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी।
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या ना करे

0: की शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है। उसके अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं, बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
1: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
0: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5 इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
1: जी,
0: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
1: जी हाँ,
0: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
1: जी बिल्कुल,
0: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: माताजी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

गई इस गीत में। अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

एफएम बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र आपने ट्यून किया है। कुछ देर में सैनिक भाई बहनों के लिए कार्यक्रम सैनिकों के लिए लेकर हाजिर होंगे हम, और दोपहर 12 बजे बहनें सुनना न भूलें अपना कार्यक्रम मिंजरा।

सैनिक भाई और बहनों, जय हिंद। सरहद की बर्फीली चोटियों से लेकर तपते रेगिस्तान तक, जहां जहां भारत का तिरंगा लहराता है, वहां वहां हमारे सैनिक भाई बहन अपने साहस का पहरा देते हैं। उन जांबाजों को नमन, और इस नमन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इस देशभक्ति गीत के साथ।

देशभक्ति के रंगों से सजे इस खूबसूरत आगाज के बाद अब कार्यक्रम में वक्त है सुरों के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। और सैनिक भाई बहनों को अब सुनवा रहे हैं हम ये गीत, आए दिन बहार की फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले की आवाज़ें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी धर्मशाला और इस वक्त सुना जा रहा है कार्यक्रम सैनिकों के लिए। जी सैनिक साथियों, संगीत की यही तो खूबी है कि वे दूरियों को भी करीब कर देता है, कभी यादों से मिलवाता है, कभी अपनों का एहसास दिलाता है। तो आइए इस संगीतमय सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत सा नगमा आशा भोसले की आवाज में, वक्त फिल्म से। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है और रवि का संगीत।

0: जी हाँ, कौन आया? आया है आकाशवाणी धर्मशाला आपके घर द्वार 103.4 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के माध्यम से, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हमारे जो सैनिक भाई बहन हैं, उनकी ज़िंदगी में अनुशासन रहता है, जिम्मेदारियां तो बहुत होती हैं, लेकिन गीत संगीत के ये पल जो हैं उन्हें थोड़ा सा सुकून दे जाएं, यही हमारी कोशिश होती है, और इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं सैनिक भाई बहनों के लिए। अब सुनवा रहे हैं ये अगला गीत। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी की आवाज़ें, ये संगीत कल्याण जी आनंद जी का। इंदिवर ने इस गीत को लिखा है। फिल्म का नाम सच्चा झूठा।
1: यूं ही तुम

कुछ बातें शब्दों से कही जाती हैं और कुछ एहसास दिलों के सहारे, माफ कीजिएगा, गीतों के सहारे दिलों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत गीत से दिलों के एहसास हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं इस अगले गीत के जरिए। आशा भोसले की मधुर सी आवाज, संघर्ष फिल्म, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद।

सरहद पर डटे हमारे सैनिक साथियों के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए। संगीत वो साथी है जो सफर को आसान बना देता है और तन्हाइयों को भी रंगीन। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला ये खूबसूरत सा नगमा।

आशा भोसले किशोर किशोर कुमार के युगल स्वरों में जॉनी मेरा नाम फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। संगीत कल्याण जी आनंद जी का और बोल राजेंद्र कृष्ण की। कहते हैं संगीत की कोई सरहद नहीं होती, ये वहां भी पहुंच जाता है जहां कोई नहीं पहुंच पाता, अपनापन अपनेपन का एहसास साथ लिए। तो हमने भी कोशिश की आज सैनिक साथियों के दिल तक इस एहसास को पहुंचाने की इन गीतों के जरिए। और आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सैनिक साथियों, जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है प्यारी बहनों के लिए कार्यक्रम मिंजरा।

मिंजरा कार्यक्रम सुनने वाली बहनों जो नमस्ते कन्ने सारियां जो राम राम। मैडम गर्मी का मौसम जोड़ा सा चलिया खूब गर्मियां हुआ कर दी जो कि भी महीना चलिया है जेठे का यानी कि जून का। इस महीने धुप्पा तेज हवा तूफान हल्की हल्की बरखा की फुहार भी हुआ कर दी है। काली काली धरत भी हिला कर दी है। तो बिना भी कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। पानी पींदे रहना चाहिए पर बर्फ वाला नहीं। खाना भी हल्का होए। गर्मी च बिनो तली बुनी चीज़ों का प्रयोग घट करना चाहिए ताकि असां दे शरीर जो नुकसान ना होए। बिनो इन्हां दिनों च धुप्पा तेज होंदियां तो अखी का भी बचाव जिहड़ा सा बड़ा जरूरी है। साफ ठंडे पानी के छिट्टे जिहड़े सा जरूर देंदे रहने चाहिए। ठंडी पट्टी दिन च एक वारी जरूर रखनी चाहिए। काफ़ी राहत असा जो तिस्ते मिलती है। तो बिनो भी अजकल खेतों के कम तो लगभग हो ही गए हैं पर हूँ अगली फसल की जिहड़ी तैयारी है सै भी शुरू करनी है धीरे धीरे। कन्ने हल्के फुलके काम तो जेडे सह ब्यागा ब्यागा ही करी लेने चाहिए धुप्पे सेरने से पहले। तो भी बिनो साग सब्जियां या फुलों च पानी भी ब्यागा ब्यागा ही दे लेना चाहिए जिससे पौधे भी ठीक रहेंगे कन्ने जमीन च जड़ी सह रिहाई भी बनी रहती। तो बिनो अजकल असा पहाड़ों च मंदिरों च यात्रा पर भी जा करते हैं इस करी अपना ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। खाने पीने से लेकर ही पहनने तक आरामदायक सूती कपड़े चप्पल जूते छड़ी पानी की बोतल जूस सुके मेवे कन्ने टार्च ये चीज़ा असा वाला जरूर होना चाहिए ताकि यात्रा बढ़िया होए सकुशल असा अपने घरे वापस पुजी आन। तो बिनो कुथी भी दिने दिने यात्रा पर जाना होए तो ब्यागा ब्यागा निकली आना चाहिए ताकि तेज़ धुप्पा से असा बची आन। तो बिनो अगर अस अपने शरीर जो स्वस्थ कन्ने तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो अपने खाने च मौसमी फल हरी सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए ताकि असें दे शरीर च पानी की मात्रा घटे ना। इस कन्ने गन्ने का रस नींबू पानी जल जीरा मिठी लस्सी ये चीज़ा बिनो पानी की कमी जोड़ी से दूर कर दें। इस कन्ने देसी कच्चे अंबों का पन्ना भी अस अपने घरे बनाए के पी सकते हैं तिस्ते भी लू जी से बिनो घट लगती है। तो कार्यक्रम च हुण सुणांदे ने एक प्यार दिया लोक गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर,
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है,
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: लोकगीतने विज्ञापन के बाद असा फिरी हाजिर हैं। कने बनो पर्यावरण संरक्षण वास्ते असा अपनी छोटी छोटी आदतों जो दैनिक आदतों च बदली सकते हैं। पेड़ पौधे लगाना, पानी कने बिजली दी बचत करना, प्लास्टिक दा घट उपयोग करना, कने कचरे दा सही तरीके कने निपटान करना, अगर इन्हां गल्लां पर असा ध्यान दिंदे हैं तो बड़े सारे बदलाव लियाने च असा मदद करी सकते हैं। कई बारी असा सोचते कि भी पेड़ कुथू लगाने, तो बिनो घरे या घरे ते बाहर हरियाली वास्ते छोटे वड्डे पौधे लगाए सकते हैं। समय समय पर तिना जो पानी देना भी जरूरी है। एक बारी जड़ पकड़ी लई तां सह पौधे जिहड़े सह वधिया चले रहिंदे ने। तो बिन पेड़ पौधे हवा जो शुद्ध रखते, ऑक्सीजन असां जो मिलती, जेडे भी फल फ्रूट असा खाते हैं सह बी कुथी नहीं बल्कि खाली जगह पर सटी देना चाहिए ताकि सह कदी ना कदी लगी पौन। कहने बहने वो जल भी असा बाजार से कोई समान लियाते हैं तो कपड़े की थैलियाँ का असा प्रयोग करना चाहिए। असा बारी बारी इस बैग का जोड़ा सा प्रयोग कर ही सकते हैं। कहने बहनों सब तो ज़्यादा गर्मियों से जरूरत पौंदी है पानी बचाने की। जितनी भी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करना तो जोड़ा पानी असा बचाया हो पेड़ पौद्या व सब्जियों असा दे सकते हैं। जिड़ी भी रसोई के सब्जियों के छिलके निकलते हैं इससे पेड़ पौद्या वास्ते खाद बनी सकती है। कहने बहनों अपने साग सुगवाड़ूँ जैविक या प्राकृतिक खाद का भी असा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि शुद्ध चीज़ा का असा खाई सकन। तो बहनों चीज़ असा प्रकृति से लेंदे न तो वापस भी उतनी ही चीज़ असा जो देनी चाहिए। प्रकृति जो जंगली जीव बनस्पति अगी ते इना जो जरूर बचाना। तो बहनो इना ते भी जंगलों च घर होंदे हैं, इना दे घर जंगलों च बने होंदे न। कने ये पर्यावरण संतुलन बनाई के रखते हैं। कने पृथ्वी स्वच्छ सुरक्षित कने संतुलित रहे। तो बहनों जल लोग जंगलों च मजाक वास्ते अग लगाई देते हैं इससे कितना नुकसान जीव जंतुओं जो धरती जो पेड़ पौद्या जो होंदा है से जंगल 5 साल तक पिछे चली जाते हैं। तो बहनों हर साल पर्यावरण दिवस जोड़े से मनाते हैं सारे जो जागरूक करने वास्ते कई आयोजन होंगे न, भाषण प्रतियोगिता, कविता पाठ, स्लोगन, पोस्टर, पेड़ लगाना, ये इस वास्ते किया जाता ताकि सब जागरूक होने वाली समस्या से बची जान, कने सब स्वस्थ जीवन जिहड़ा जी सकन। कने बहनो ऐसी ऐसी बीमारियां निकला कर दियां ना जिन्हां दा इलाज तोपना भी जिहड़ा सा अज मुश्किल होआ करदा है। तो बहनो अगर हुण भी असां इन्हां चीज़ां जो नज़रअंदाज करदे रहेंगे तो इसका नुकसान असां सारे जो ही भुगतना पौना है। तो बहनो हुण गल करनी है ज्येष्ठ यानी कि जेठ महीने की। यह महीना धर्म, तप, त्याग कने साधना का महीना मनिया जाता। तेज गर्मी ते रात पाने लई जलदान, पानी पियाना, प्याऊ लगाना यानी कि कोई घड़ा दान करना, छवील लगानी, कने जरूरतमंद लोकां दी सेवा करना सब ते उत्तम मन्या जांदा। बिनो रस्ते च चलियो राहगीरां जो ठंडा पानी पियाना, शरबत मठा पियाना, प्यासे पशु पक्षियां वास्ते छत पानी दे बर्तन दी व्यवस्था करनी, ब्यागा ब्यागा जड़ा सा तांबे दे पात्र च सूरज जो अर्ग देना, तो बने इस महीने जड़ा सा छाता पंखा सूती कपड़े सत्तू दा दान करना जड़ा सा बड़ा बढ़िया मन्या जांदा। हर दिन पिपले जो जल देना, ये सब भेनों पर्यावरण कने जुड़िया चीज़ा हैं। कने अधिक मास चलिया है तो विष्णु भगवान की पूजा भी जड़ा सा की जाती है। भेनों जिस महीने के मंगलवार जो बड़ा मंगलवार मनिया जाता, इस दिन हनुमान दे विशेष पूजा अर्चना होंगी है, सिंदूर अर्पण करते हैं, भंडारे भी लगते हैं, कने सलाह सात्विक भोजन करने वास्ते दी जाती। तो भेनों इस महीने च बैंगन खाना भी स्वास्थ्य वास्ते सही नहीं होंगे। कने भेनों तले कने बासी भोजन भी नहीं करना चाहिए इस महीने। तो भेनो असां दे प्रदेश हिमाचल दे लोक तो जानते हैं कि इस महीने जेठी कुड़ी या मुंडुए का ब्याह जड़ा सा नहीं किया जाता, कोई भी मांगलिक कार्य भी नहीं होंदा। ए भेनो अनुशासन कने समय का संयम का महीना मनिया जाता। खाने पीने दियां ठंडिया चीज़ों का दान किया जाता, कने सत्तू तिल चंदन गुड़ तरबूज खरबूजे भी दान किए जाते। तो भेनो भाई ज़्यादा तेल मसाले वाली गर्म तासीर वाली चीज़ा जड़ी सै या फिर भारी खाना जड़ सै बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, कने सै ठीक नहीं रहिंदा। दिने दे समय च ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए, कने तिसते शास्त्र अनुसार तिसते आलस जड़ सै बधी जांदा, कने पाचन तंत्र भी खराब रहने की संभावना जड़ी सै बनी रहिंदी। तो मैंने कोई भी तीज त्यौहार होए, कोई भी महीना होए, सारिया चीज़ा असां दे पर्यावरण असां दी प्रकृति कने जुड़िया हैं। समय समय पर पर्यावरण संतुलन वास्ते प्रयास किए जाते ताकि कुसी जो भी कोई नुकसान ना होए, सब स्वस्थ रहन। तो मैंने समय होआ करदा एक होर लोक गीत सुनने का, तो सुनवाते हैं प्यार दिया लोक गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को

स्वयं सहायता समूह दे जरिए भी अपना व्यवसाय जड़ से बढ़िया तरीके कने चला कर दिए न, कने अपने घरे दी स्थिति भी सुधार करा दिए न। अजकल अंबा दा मौसम चलिया कने अचार मुरब्बा चटनी समोसे तीस जो आम पापड़ भी बोलते न बनाई करी बाजार तक पुजा भी कर दिए न। कई तरह दे जैम शीरा बड़ियां पापड़ सेवियां हर्बल साबुन काठा साबुन भी बना कर दिए न। इस कन्ने कन्ने डिस्पोजल कप प्लेटां डूने स्वेटर साला सब बना कर दिए न। कुथी कुथी ता मशरूम कने फुलां दी नर्सरी भी चला कर दिए न। कई तरह हर्बल दियां चीज़ां बनाई करी बेची लिया कर दिए न। तो भैनों भाई कमी दी कोई शर्म नहीं होंदी, कन्ने काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होंदा, अपनी घर गृहस्थी चलाना चाहिदी। तो भैनों हुण गल करनी है खान पान दी। भैनों गर्मी दे मौसम च लस्याड़े असा खाना जड़ सै पसंद करदे। हर ग्राएं च एक दो पेड़ जड़ सै जरूर लगे होंदे हन। तो भैनों ये बाजारे च भी अजकल मिली आ करदे हन। इसका कुर इसकी खट्टी मिठी सब्जी असा बनांदे, काफ़ी सारे गुण इस विच होंदे। उत्तर भारत च पारंपरिक खट्टा मिठा तिखा अचार भी बनाया जाता। गर्मी के दिनों च भैनों इस अचार का आनंद असा पूरा साल लेंदे न। यह स्वादिष्ट अचार आसान तरीके कने बनाया जाता। समग्री असा लैनी है 500 ग्राम लस्याड़े लैने, कच्चे अंब लैने, कने अगर भैनों अंब ना मिली पान तो असा जड़ा इमली का प्रयोग भी करी सकते हैं या फिर अमचूर भी ले सकते हैं। 250 ग्राम लैने जड़े से कच्चे अंब, सौंफ 3-4 वड्डे चम्मच, मेथी दाना लेना, कने एक वड्डा चम्मच राई या पीली सरसों 3-4 चम्मच लेने, नमक लेना, हल्दी लेनी 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर लेना, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेना, 2 चम्मच कलौंजी लेनी, कने आधा छोटा चम्मच जेड़ा सा कलौंजी दा लेना, कने सरसों दा तेल लेना 2 कप। तो भैनों लस्याड़े जो पहले बढ़िया दो ही लेना, ध्यान रखना कि डंडिया या किसी जेडे कैप लगी होनी चाहिए, नहीं तो सह उबलते समय पानी तिस विच जा सकता है। हुण एक पतीला या कढ़ाई च पानी उबलना रखी देना, तिस विच नमक कने आधा चम्मच हल्दी पाई देनी, फिर उबलते पानी च सैले स्याड़े पाई देने, कने 4-5 मिनट पकड़ा देने। जल ही 50% तक नरम हो जाए तो पानी जो निकाली करी छानी लेने, कने ठंडे होना देने, फिर इसकी जी कैप या डंडियाँ हटाई देनी है, कने इस जो सूती कपड़े च 2-3 घंटे पंखे के नीचे जेडे से धुप्पा च रखी देना, कने गुठलियाँ कड़ी देनी है। हूँ एक पैन लैना, तो इस विच सौंप कने मेथी दाना धीमी आंच भुनी लैना, कने दरदरा पी लैना। एक कढ़ाई लैनी, तो इस विच सरसों का तेल गर्म करना रखना, फिर इसे ठंडा होना देना। हल्के गर्म तेले च हींग सारे मसाले सौंफ मेथी राई कलौंजी नमक हल्दी लाल मिर्च पाई देनी, कने मिला देनी। मसाले च कद्दूकस कित्यो अंबा की कैरी कने सुके लस्याड़े पाई देने, कने तिस जो हाथा कने साफ चम्मच की मदद कने बढ़िया मिलाने ताकि मसाले तिस कने लगे। दा अचार जो एक साफ सुखे कांच या चीनी की मिट्टी के जार या बरनी च भरी देना, उपरा ते बचिया तेल भी पाई देना ताकि लस्याड़े तेले च डुबी जाए। फिर 6-7 दिन धुप्प लगानी, कने हर दिन साफ सुखे चम्मच कने हिलाते रहना। तो भैनों हफ्ते बाद यह अचार खाने वास्ते जिहड़ा सा तैयार हो जाता, बड़ा स्वादिष्ट होंदा, कने राहत वाला होंदा। सिर्फ ध्यान रखना चम्मच सुक्का होना चाहिए। तो भैनों कार्यक्रम च हुण एक होर लोक गीत सुनवाना है, तो सुनांदे ने प्यार दिया लोक गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मिंजरा FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। दोपहर का 1 बजने को है। अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से पहले हिंदी में और 1:05 पर अंग्रेजी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक के अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
1: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi. The meeting will deliberate on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling and create sustainable employment opportunities across the country. Discussions will also focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers, including governance, digital public infrastructure and partnerships, while ensuring accountability and measurable impact. In a social media post, Mr. Modi said, guided by the spirit of cooperative federalism, centre and states are working together to accelerate India's development journey. He added that the collective efforts of the centre and states will play a pivotal role in realising the shared vision of Viksit Bharat. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, which emphasizes the well-being and development of every Indian regardless of age, region, gender or socio-economic background. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Finance Ministry announced that petrol blended with 22, 25, 27 and 30% ethanol has been exempted from central excise duty. The Ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. Union Minister for Railways and Information and Broadcasting Ashwini Vaishnav virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Jaisalmer district of Rajasthan during a program held at the Akashvani premises in Jaipur today. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashvani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnav, focusing on strategic infrastructure, highlighted the government's commitment to strengthening communication in border regions. He said today, a major initiative to cover border areas has commenced in Rajasthan. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
3: Today, our new 20 kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
2: All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Setabello have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected US missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal said the bodies of three seafarers have been located and identified. Trinamool Congress MP Prakash Chigbaraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. The United States carried out a new round of military strikes on Iranian targets, prompting Tehran to announce the closure of the strategically vital Strait of Hormuz and launch retaliatory actions against regional locations hosting U.S. forces. U.S. Central Command said it had completed a second consecutive day of self-defense strikes targeting Iranian air defense systems, radar installations, communications infrastructure, and surveillance capabilities in response to what Washington called continued Iranian aggression. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And with that, we end this news bulletin.
4: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 1:10 हुए हैं, अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
5: के सभी को प्रणाम, सब तो आप सभी को भी बहुत बहुत प्रणाम। विविध भारती के सुरीले सफर में जहां बचपन फिर यादों के सहारे लौट आया है, वो आज़ादी, वो स्वच्छंदता अब लौट के नहीं आने वाली। जब मेघ बरसते थे, भीगते निकल जाते थे और साथियों के साथ चपाकचई खेलते, बहते धारे में कागज की नाव चलाते, दिन भर बिना भूख प्यास की चिंता के नदी के पार जाकर खेतों से खरबूजे चुराया करते। एक श्रोता और लिखते हैं कि आज की इबारत केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की स्मृतियों और आधुनिक जीवन के अकेलेपन का एक बेहद खूबसूरत और मर्मस्पर्शी दस्तावेज है। लेखक, इन्होंने लिखा है कि बड़ी संवेदनशीलता के साथ शहरी चकाचौंध के पीछे छिपे खालीपन और ग्रामीण जीवन की निश्चलता के बीच द्वंद्व को हमने उभारा है। आखिरी पंक्तियां, शायद हमने दुनिया से अलग एक गांव बसा रखा है, ये दर्शाती हैं कि भले ही भौतिक रूप से इंसान शहर में कैद हो, लेकिन उसका मन आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। ये अंत निराशा में भी एक खूबसूरत उम्मीद और सुकून देता है। गाँव की तो बहुत सारी यादें होती हैं। श्रोताओं, आपको अपना गांव क्यों अच्छा लगता है और इसकी क्या खासियत है? क्या कुछ है जो आप अपने गांव में अब भी याद करते हैं और क्या कुछ बदलाव आप देखते हैं? तो ये हमें ज़रूर लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं बहुत सारे गीतों के बारे में। तेरी तस्वीर को सीने से लगा रखा है, ढूंढो ढूंढो रे साजना, तो कभी ऐसा हुआ कि आपकी कोई चीज़ गांव में कहीं खो गई हो या फिर पनघट पे कहीं रह गई हो, तो आप ज़रूर बताइए। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम कहीं जाते हैं तो कुछ ख़ास गीत एक अकेलेपन में बैठकर सुनते हैं। गांव में क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ तो हमें लिखिए। एक और श्रोता लिखते हैं, शहर और गांव हमेशा से एक नियमित प्रसंग के रूप में किसी भी वाद विवाद की चर्चित विषय के रूप में उभर कर आते हैं। अधिकांश शहरवासी शहर छोड़कर गांव में रहने की कल्पना भी नहीं करते, चाहे कितनी भी दुश्वारियां हों शहर में, वही गांव में रहने वाले मजबूरी में ही शहर का रुख करते हैं और बाद में वहीं के होकर रह जाते हैं। भारत में शहर और गाँव दो अलग अलग संस्कृतियों और जीवन शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहाँ शहर आधुनिकता, गति और सुविधाओं का केंद्र है, वहीं गाँव सादगी, परंपरा और प्रकृति के करीब होते हैं। तो आप बताइए कि आपके गांव में क्या कुछ ऐसा था जो आप भी आज भी आपकी यादों में बसा है और क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो आपकी गांव की यादगार चीज़ है।

तो अगर आपने फिल्म देखी है गंगा जमुना तो आप ज़रूर बताइए, और आपको याद ही होगा तो इनका बाला कहाँ है, कहाँ गुमा है, आप क्या ढूंढ सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइए अगर आपको मिला हो। वैसे गांव में भी कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जब आप पनघट पर गए होंगे, कोई चीज़ या कहीं गए होंगे, कुछ खो गई होगी, तो कुछ यादें अगर इसे मिली जुली आप साझा करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। और गाँव की बहुत सारी खासियत होती है श्रोताओं कि गाँव में जो यादें हैं, रहट का पानी है, या अगर आपको याद हो कहीं दूर रेडियो में कोई गीत बजता हो जो आपको अपनी तरफ खींचता हो, या कोई फिल्म ऐसी जो आपने गांव के थिएटर में देखी, क्योंकि गांव में पहले थिएटर कम हुआ करते थे। एक और श्रोता ने लिखा है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था। इस गीत से पहले सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत आपने सुना जो जीना तमान पर फिल्माया गया, और सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार आपको बताने हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, यादें अजीब होती हैं, एक तो बिन बुलाए आ जाती हैं और आ जाएं तो सांस थमने सी लगती है। किसी पुरानी फोटो को देखो जो धुंधली पड़ गई, लेकिन उसके पीछे उससे जुड़ी याद हमेशा ताज़ी मिलेगी। कुछ यादें शब्द मांगती हैं तो कुछ यादें खामोशी, कुछ आवाज़ें अब भी दुनिया में नहीं पर कभी कभी लगता है कि कंधे पर हाथ रख कर कह रही हूँ अपना ध्यान रखना। वो हाथ जो अब कंधे पर नहीं पर थकान में सहारा बन जाते हैं। यादें हमें एक ही समय में दो जगह रख देती हैं, शरीर को वर्तमान में और दिल को किसी सुनहरे अतीत में। दुख इस बात का नहीं कि वक्त बदल गया, दुख इस बात का कि वो लम्हे अब दोबारा नहीं जी सकते। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज एक बार फिर काफ़ी लंबा गद्यांश सामने आया है और साथ में लाया है वो बचपन की यादें जो कभी मन को सुकून देती, जब पनघट पगडंडी खेत खलिहान नदी झरने रेत पर उकेरी तस्वीरें सब अपने से लगते थे और हम खुशियों के से पल भरे पल जीते थे। लेकिन जब ये छोड़ शहर की ओर चले तो वक्त की लाठी ने धीरे से सब कुछ छीन लिया और दे दिया खालीपन। बस बाकी रह गया तो सुनहरी यादों का गांव मन के भीतर एक कोने में। तो जादूगर की भी बहुत सारी यादें होंगी श्रोताओं, आप बांट सकते हैं, क्योंकि ऐसी यादें तो मेरे पास भी बहुत सारी हैं कि जादूगर आया करते थे गांव में।

प्रदीप कुमार और वैजयंती माला पर फिल्माया गया ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म नागिन से। और एक गीत के हमने संगीतकार आपसे पूछे थे, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के गीत के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ऐसा हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि भोर भय पनघट पर, अब वो दौर कहाँ जब पनघट पर गांव की गोरियां इकट्ठे होकर दिनचर्या की बातें किया करती थीं। अब हर घर पर नल से जल हो गया है, पगडंडी थी अब वो पक्की सड़क बन गई है। मोबाइल ने बच्चों का बचपन छीन लिया है, डाकिये की साइकिल की घंटी मूक हो गई है, डाक का स्थान अब मोबाइल मैसेज और ईमेल ने ले लिया है। गाँव के हरे भरे जंगल जैसे माहौल को शहर के कॉन्क्रीट के जंगलों ने उजाड़ दिए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, इस गीत को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता कहते हैं कि इस चिलचिलाती धूप में विविध भारती के गानों की बौछार हो रही है, ये कहीं न कहीं हमारे मन को सुकून और दिल को ठंडक पहुंचा रही है। सचमुच ही विविध भारती का ये सुरीला सफर हम श्रोताओं को एक साथ जोड़ता है और जो कि इस कार्यक्रम को रंगारंग दिलचस्प बनाता है। और इन्होंने विविध भारती का शुक्रिया किया है, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और श्रोताओं कार्यक्रम तो आपके शामिल होने से ही बनता है। एक श्रोता और लिखती हैं कि गांव की अनमोल यादें ताज़ा हो रही हैं, इस इबारत में गांव का प्राकृतिक सौंदर्य, नदी का किनारा, नैया की सफर, सौंधी मिट्टी की खुशबू, शुद्ध हवा की शीतल लहरें, अनुपम सौंदर्य, सूर्यास्त, गांव का मेला, खेल खिलौने, मौज मस्ती, गांव में गुजरी बचपन की सभी यादें दिखाई देने लगी हैं। उसी की तस्वीर लेकर आ रहा है ये सुरीला सफर। और कुछ गीत भी इन्होंने बताए हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्द हो सकते हैं रात दस्तक, यादें, भोर पनघट, सौंधी रोटी, खिलौने, रेत की नाव। जी हाँ, और गीत भी बताएं। नाव की अगर कोई सैर आपको याद हो

नया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, संगीतकार आप बताना चाहें तो बता दें श्रोताओं। गांव तो अपने आप में बड़ा खूबसूरत होता है, यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं, बगीचे से आम चुरा कर चोरी चोरी दोपहर में खाना, रहट का पानी, गांव की क्या खासियत है आपके गांव की, रेडियो की यादें, कुछ थिएटर की यादें, बाइस्कोप की यादें, दिनचर्या, पत्र जो आपके पास आया करते थे, तो क्या नहीं है गांव में, ऐसी बहुत सारी बातें हैं श्रोताओं। क्या कभी आपने बैलगाड़ी का सफ़र किया या साइकिल से स्कूल जाते थे, ये भी आप हमें ज़रूर बताएं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि

झकझोर देती है। बचपन गांव में या छोटे शहरों में बीता, आज बस आडंबर की भीड़ में मात्र एक इकाई बनकर रह गए हैं। अभी भी दिल के कोने में वो मंजर, हरियाली, बाग बगीचे, कुआं तालाब, बरगद की छांव में चारपाई पर लेटना आदि दिल के कोने में छुपी हुई इन्हें शहरी भीड़ में तलाशते हैं, मगर सिर्फ भीड़ का हिस्सा बन याद करके दिल को सहला लेते हैं। मिट्टी की सोंधी खुशबू वाली सफर का इंतजार है। तो जी हाँ, ये सफर जो है वो तो जारी है। आप भी अपनी बातें कहिए गांव को लेकर, गांव की यादों को लेकर, और गांव आपको क्यों याद आते हैं ये जरूर बताइए।

ये प्यारा सा संगीत था नौशाद का, और आप कलाकार बता दें, एक कलाकार हम आपको बता देते हैं, राजेंद्र कुमार। जी हाँ, ये गीत था फिल्म गंवार से। बाकी आप बताइए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज का सफ़र सुरीला बड़ा प्यारा है, गांव की सभी यादें ताज़ा हो गई और हमें भी याद आता है कुएं से पानी भरना, बैलों को पानी पिलाना, गाय का दूध निकालना, बकरियाँ, वो आंगन में सब कुछ समेटना और रोज़गार के लिए हमेशा काम करते रहना। जी हाँ, जब रोज़गार की बात आती है तो नैया, जिसका गीत हमने आपको सुनवाया, नाव भी बड़ी साधन है रोज़गार का, और हम ऐसी नैया को प्रणाम करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो गांव में बड़ी ज़्यादा खुशियां या प्यार या लोग बड़े अच्छे होते हैं, शायद इस वजह से कि वहां संतोष बहुत ज़्यादा

होता है, बहुत ज़्यादा न पाने की इच्छा होती है, शायद इसीलिए गांव और गांव के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। इन्होंने और भी थोड़ी बड़ी इबारत लिखी है। वैसे एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत भावुक है, गांव की यादें, बचपन, बिछड़न, शहर का अकेलापन, ये सारी बातें इन्होंने लिखी हैं और बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि दिल के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, वो दिन याद करो, भोर भय पनघट पे, ढूंढो ढूंढो रे साजना, मोरे कान का बाला, बहुत सारे गीत इन्होंने सुझाए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन की यादें जब दस्तक देती हैं, तब हम मन के बंद दरवाजे खोलते हैं, भूली बिसरी शक्लें, पनघट की यादें, खिलौने, रेत के घर, कागज़ की नाव, सब याद आता है। तो इनमें से आपको क्या पसंद था, रेत पे घर बनाना, खिलौने, कौन से खिलौने आपको अच्छे लगते थे, या अपने स्कूल की कोई याद? खासकर जब हम लोग स्कूल में थे तो चटपटी चीज़ें बहुत खाते थे श्रोताओं, और अब तो जंक फूड आ गए हैं। आप बताएं ये कलाकार कौन है?

बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म ठोकर से। सजन दिलवी के बोल थे और श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। एक श्रोता लिखते हैं कि जो कभी गांव में गया ही ना हो और वो लोग गांव के बारे में क्या जानेंगे, गांव का मिलनसार जीवन, लड़ते झगड़ते दोस्तों का गांव की जिंदगी क्या होती है वो बातें याद आती हैं तो दिल में एक कसक सी उठ जाती है। एक और श्रोता

लिखा है कि जादूगर एक बार हमारे मिडिल स्कूल में शो करने आया था। खेल की घंटी में स्कूल के प्रांगण में एक घंटे तक ये शो हुआ। बात 1976 के सितंबर की है। हमने घर से 75 पैसे लेकर उसे दिए थे। बहुत मज़ा आया था। जी हाँ, तब पैसे भी बहुत कम हुआ करते थे और थोड़े से पैसे में बहुत सारी चीज़ें हम खरीद लिया करते थे। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि मेरे गाँव के चारों तरफ पहाड़ है, जैसे एक टोकरी होती है, जिसके कारण मेरे गांव का नाम टोकर है। मेरे गांव की लोकेशन बहुत अच्छी है। गांव उत्तर दिशा की पहाड़ी की तलहटी में बसा है। दक्षिण की तरफ तालाब है जिसका नाम कायरा तालाब है। गांव तो हमारा जीवन है, इसकी हर चीज हर स्थान हमारे रग रग में बसा हुआ है। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों के बीच अपने गांव में बचपन की यादें और पुराने दोस्तों के साथ बिताए गए पल आज भी बहुत सताते हैं। गांव की भोर की बेला में पक्षियों की चहचहाट और बचपन के दोस्तों की यादें किसी मरहम से कम नहीं। ये अनमोल पल में बिताए गए बचपन से जोड़े रखते हैं, जिसमें हमारे मन को असीम सुकून और शांति देते हैं। और भी इन्होंने अपनी बातें बहुत सारी लिखी हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का जो ये सुरीला सफ़र है, अक्सर लोग गाँव छोड़कर शहर में रहने लगे हैं, लेकिन गांव में जो आपसी प्रेम और भाईचारा देखने को मिलता है वो शहरों में नहीं मिलता। शहर में तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को नहीं जानता। मनुष्य अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए शहर की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती जो गांव में थी। तो खिलौने वालों की जो यादें हैं वो आप हमसे साझा कर सकते हैं।

संध्या पर फिल्माया गया दो आंखें बारह हाथ फिल्म का ये गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा भी है इस गीत के बारे में, तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद इस गीत को पहचानने के लिए। और भी हमारे कुछ नगमे हैं, देखते हैं कि कौन से शामिल हो पाते हैं। एक हमारे श्रोता लिखते हैं, अरे वाह, तीन गीत मेरे शामिल हो गए। आज सुहाना सफर में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मेरे गाँव की पैदाइश है, बहुत सुंदर था बचपन। हमारे गाँव में रामलीला होती थी और इन्होंने निम्बाड़ी लोकगीत गणगौर उत्सव में बड़ा आनंद आता था। बहुत याद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल में शुभकामनाएं, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं। आपने रुला दिया, वो बहुत यादों को जगा दिया। तो जी हाँ, यादें तो होती ही हैं, ऐसी हैं, समय समय पर इन्हें जगाना भी चाहिए श्रोताओं। और एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि यह हकीकत है कि गुजरे वक्त यानी पास्ट में हम जा नहीं सकते, इसलिए अपना अक्स अपने बच्चों और आसपास के बच्चों में देखा करते हैं। बचपन में मैं स्कूल और कॉलेज जाया करता था, उनकी सभी गतिविधियों को देखकर मैं ये सोचता हूँ और महसूस करता हूँ जैसे उनकी शक्ल में मैं स्वयं हूँ। उनमें स्वयं को देखकर अपने गुजरे वक्त को याद करके बहुत खुश होता हूँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि मैंने आठ गीतों को लिखा और पहला गीत शामिल हुआ जो भोर भय पनघट पे। जी हाँ, तो यही तो आपको पहचानना है। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की भारत पढ़कर आपने बचपन और बचपन के साथी याद आ गए, हमारे मन बहुत बेचैन हो रहा है, कौन कौन से साथी बिछड़ गए पता नहीं।

ये तो बैलगाड़ी है जिसमें ये दुल्हनिया जा रही है, ये कौन सी दुल्हनिया है वो आपको बताना है, फिल्म पहचाननी है। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं आपको बताऊं, मेरे गांव से एक नदी बहती है, बचपन में हमने इस नदी के पाट करीब 100 फीट के आसपास देखा है, जो कि बरसात में 1 किलोमीटर दूर तक हो जाता था, किंतु अब बहुत दुख होता है वो केवल एक नाले में परिवर्तित हो गया है। इस नदी के पास आम के बगीचे होते थे जो आज नहीं है। जी हाँ, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें बचानी है। श्रोताओं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, अगर कुछ खास करते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं, जैसे पेड़ वगैरह लगाने को लेकर जो बातें हैं। और आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, तो आजकल खेतों में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं वो गांव में भी हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं। एक और श्रोता ने बचपन के जो चटपटी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है कि बेर जो गुड़ और नमक मिर्च के साथ पके रहते थे, वो कागज़ की पुड़िया के समान बांध के देना, वो न्यूज़पेपर के लिफाफे जो घर में आटे की लोई बनाकर बनाए जाते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन में गांव में कहीं शादी होती थी तो लाउड स्पीकर बजता था, उस समय राजा और रंग का मेरा नाम है चमेली ये गीत लोकप्रिय था, आवाज़ सुनते ही सभी साथी दौड़ कर वहाँ पहुँच कर गाना सुना करते थे।

0: क्या किया बाबू?
1: क्या री?
0: छह महीना हुई गवा, खतो नहीं लिखेंगे।
1: खतो नहीं लिखन? बोल क्या लिखूं?
0: बस जल्दी से अभी।

ये गीत आप सुन रहे थे, हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक पहचाना है। श्रोता, पलकों की छाव में इस फिल्म का गीत था, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया। एक हमारी श्रोता ने लिखा है, वो भी क्या दिन थे जब पनघट पर हम सब इकट्ठे भोर की किरणों को ताका करते थे। बड़े खुशनुमा दिन थे, यादें अजीब चीज होती हैं, वे कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती, बस अचानक से किसी गीत में किसी रास्ते से दस्तक देती हैं और हम घंटों बैठे रहते हैं उस याद में, उसकी तस्वीर के साथ। मन ने इन सब यादों को, बातों को बड़े सीधे तरीके से आत्मसात कर लिया है। हर चीज को स्वीकार करना, यही सुख की निशानी है, इसी में बड़ी समझदारी है। फिल्म आपको पहचाननी है श्रोताओं, और कलाकार

पहली फिल्म का ये गीत आपने सुना, सत्यजीत और नमिता चंद्रा पर फिल्माया गया। हमारे श्रोताओं ने इस गीत को भी पहचाना बिल्कुल ठीक। और अगले गीत को आपको पहचानना है, कलाकार पहचानना है। एक श्रोता ने लिखा है, मैं कल ही अधिक मास के चलते मेरे शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर चांदोद, जो नर्मदा नदी पर बसा है, वहाँ दर्शन करने गई थी। वहाँ नाव में बैठकर सामने वाले दूसरे किनारे पर स्नान किया। मतलब कल ही नाव में बैठकर आई हूँ।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है, वो दादी के हाथ की मक्के और ज्वार के चूल्हे पर बनी रोटी काश एक बार ही सही खाने को मिल जाए, बस फिर और कुछ नहीं मांगेंगे अपने इस मालिक से।

एक श्रोता ने लिखा है, मेरा गांव बहुत सुंदर है जो पहाड़ों की तलहटी में बसा है। एक नदी बहती है जिसके तट पर बहुत से मंदिर हैं। शाम के समय जब घाट पर बैठते हैं तो मंदिर से आरती की स्वर लहरियां गूंजती हैं, बस मन खुश हो जाता है।

अरुण गोविल और जरीना बहा पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे सावन को आने दो फिल्म से। इस गीत की डिटेल हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, तो अब चलते हैं गांव से शहर की ओर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी गांव ज़रूर जाना चाहिए और वहां की सारी चीज़ों को देखना चाहिए, निहारना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम सुरीला सफ़र सम्पन्न होता है।

साथियों, आज है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। इसे इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भी कहते हैं। ये दिन बच्चों और बड़ों के जीवन में खेल के महत्व को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, स्क्रीन के सामने बैठने का बढ़ता समय और पढ़ाई के बढ़ते कंपटीशन के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल नुस्खा है खेल। ये सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का मजबूत स्तंभ है। चाहे बात बड़ों की हो या बच्चों की, खेल हर जीवन में ऊर्जा का संचार करता है। और जब एक बच्चा मैदान में दौड़ता है, गिरता है और फिर खड़ा होता है, तो वो जीवन का सबसे बड़ा पाठ सीखता है कि रुक गए या झुक गए तो फिर उठो, आगे बढ़ो। पढ़ाई के साथ बच्चों के लिए खेल कूद उतना ही आवश्यक है जितना कि संतुलित आहार। खेल से हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, साथ ही जीवन में स्फूर्ति बनी रहती है। आप देखिएगा, खेलते कूदते रहने वाला बच्चा हमेशा प्रसन्न दिखाई देता है ना?

अकेले रहना पसंद करने वाला व्यक्ति भी खेल के कारण टीम में रहना सीख जाता है। विशेष तौर पर बड़े हो रहे बच्चे में खेल सहयोग, नेतृत्व और दूसरों का सम्मान करने की भावना उत्पन्न करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जिम्मेदारियों के बोझ के तले अपने खेल की भावना को कहीं पीछे ही छोड़ देते हैं। लेकिन साथियों, खेल बड़ों के लिए भी उतना ही आवश्यक है। दिन भर के दफ्तर का काम या घर का काम, उसके बाद थोड़ा सा खेलकूद, चाहे वो बैडमिंटन हो या शतरंज का या लुका छुपी का खेल, थोड़ी सी देर का ये खेल का समय हमारे दिमाग में एंडोर्फिन यानी खुश रहने वाले हार्मोन का रिसाव करता है और इसी के कारण त्वरित तनाव भी कम हो जाता है। बच्चों के साथ बच्चा बनने से, उनके साथ किसी खेल में पूरी तरह डूब जाने से मन की सारी थकान दूर हो जाती है। कभी ये खेल भी खेलकर जरूर देखिएगा।

खेल हमारे नज़रिए को पूरी तरह बदल देते हैं। ये हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाते हैं। मैदान पर कोई भी खिलाड़ी हमेशा नहीं हारता, हर हार उसे अगली जीत के लिए तैयार करती है। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। जो व्यक्ति खेलों से जुड़ा होता है वो संकट के समय घबराने के बजाय उसका सामना करता है। आज इस बात की ज़रूरत है कि हम बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से दूर रखकर वापस मैदान की मिट्टी से जोड़ें और स्वयं भी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय खेल के लिए निकालें, क्योंकि जब तक जीवन में खेल है तब तक ऊर्जा बरकरार है। खेल हमें जाति धर्म और अनेक भेदों से ऊपर उठाकर एक धागे में पिरो देता है। तभी तो जब देश की टीम मैदान में उतरती है तो करोड़ों दिल एक साथ धड़कते हैं, और यही जुनून, यही जज्बा खेल की सबसे बड़ी ताकत है।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो

0: ये विविध भारती है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिकबराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश की खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया।
2: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर DG साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल, इन दो सूत्रों में बांधें। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का

0: वेव्स ओटीटी है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें, लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी बनाने वाले आप, इम्प्लीमेंट करने वाले आप।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
0: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धेय अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
1: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C-295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
2: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
1: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
2: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
1: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमेरिका ने ईरान पर नए सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमेरिका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईरान के मीडिया ने बंदर अब्बास, केशम द्वीप, मीनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है।
3: मिलिट्री कॉन्फ्रेंटेशन अब ईरान की बॉर्डर से बाहर भी फैल चुका है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने क्लेम किया है कि उन्होंने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। ईरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है। लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
4: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए AI द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या SMS सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
2: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहेगी। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था।

0: सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़क।

0: कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, एम जी हर्षमत के बोल थे। किशोर कुमार सुलक्षणा पंडित को आप सुन रहे थे फिल्म उलझन में।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

फिल्म पूर्णिमा में आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर को, गुलजार के बोलों को सुरों में ढाला कल्याण जी आनंद जी ने। विविध भारती से श्रोताओं, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म पालकी का ये गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: शारदा की आवाज में अराउंड द वर्ल्ड फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, और श्रोताओ यही है सदाबहार नगमे प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को नमस्कार, और आप सुनिए ये नगमा।

FM बैंड 103.4 MHz पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3 बजने को है, अब से कुछ ही देर बाद आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। 13 जून को वे मीडिया प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे और केंद्र सरकार के सहयोग से हिमाचल प्रदेश में विकसित हुई महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं का अवलोकन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की उदासीनता और सुस्त कार्यशैली के कारण ऊना के हरोली में बन रही बल्क ड्रग पार्क परियोजना तय गति से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस कारण प्रदेश को आर्थिक और औद्योगिक स्तर पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जयराम ठाकुर ने बल्क ड्रग पार्क का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल को ये परियोजना कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद मिली थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कांग्रेस सरकार ने इस परियोजना को प्राथमिकता नहीं दी, इस कारण राज्य को इसका समय पर लाभ नहीं मिल पाया है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के बन जाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार से राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर इस परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा करने की मांग की। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीपशिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीपशिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है। 16 जून से 15 जुलाई के बीच मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए लगभग 18,600 कर्मचारी फील्ड में तैनात किए जाएंगे।
1: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है, आम जनता है, वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा, जिसको की प्रगणक जब हमारे 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट कर। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
0: ईरान के हॉर्मुज जलडमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को शांति और दुखी परिजनों को इस अपूर्णीय क्षति को सहन करने की शक्ति देने की भी प्रार्थना की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। राज्य सरकार ने सेवा अवधि के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अध्ययन अवकाश पर जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया है। अभी तक अध्ययन अवकाश लेने वाले कर्मचारियों को अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त वेतन का केवल 40% और महंगाई भत्ते के साथ आवास भत्ता दिया जा रहा था। इसके लिए सरकार ने CCS नियम 1972 के नियम 56 में संशोधन किया है। जिन कर्मचारियों ने पहले पुराने प्रावधानों के तहत अध्ययन अवकाश लिया था, उन्हें भी संशोधित नियमों अनुसार वेतन के बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं चंबा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचक स्वर शशि चौहान का है।
0: चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले महत्वपूर्ण साच पास को लोक निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड समय में बहाल कर दिया है। लगभग 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग से बर्फ हटाकर छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। मार्ग खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण मार्ग बंद होने से लोगों को जम्मू या कुल्लू के रास्ते करीब 750 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर चंबा पहुंचना पड़ता था, अब ये दूरी मात्र 172 किलोमीटर रह जाएगी। नगर परिषद चंबा के चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गए। चुनाव परिणामों में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने 6 सीटों पर जीत दर्ज कर बढ़त बनाई, जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी 5 सीटों पर विजयी रहे। मतगणना के बाद समर्थकों ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। प्रशासन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व पारदर्शी ढंग से संपन्न करवाया। पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में भी जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। करवाल पंचायत निर्विरोध चुनी गई, जिसके लिए पंचायत को सरकार की ओर से 25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने बताया कि जिले में कुल 411 पंचायत प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं, जिनमें 4 प्रधान, 7 उप प्रधान तथा 400 वार्ड सदस्य शामिल हैं। महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्वाइकल कैंसर रोकथाम अभियान के तहत चंबा जिले में भी HPV वैक्सीन टीकाकरण अभियान तेज कर दिया गया है। 14 वर्ष तक की किशोरियों को सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में निशुल्क टीका लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य कम उम्र में ही बेटियों को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करना है। जिले का ऐतिहासिक व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिंजर मेला इस वर्ष 26 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। मेले की तैयारियां शुरू हो चुकी है। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दायित्वों का गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि मिंजर मेला चंबा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है तथा इसके मूल स्वरूप और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। जिला मुख्यालय के सुल्तानपुर वार्ड के ओबड़ी संपर्क मार्ग की जर्जर स्थिति स्थानीय लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। लोगों ने मुख्यमंत्री से इस सड़क की शीघ्र मरम्मत करवाने की मांग की है। जनगणना 2027 की प्रक्रिया भी आरंभ हो चुकी है। प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण व आवास जनगणना का कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त व जिला जनगणना अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने बताया कि इस बार जनगणना में आधुनिक डिजिटल तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तथा नागरिकों को स्वगणना की सुविधा भी प्रदान की गई है। नागरिक निर्धारित अवधि में ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। पूरे देश की तरह चंबा जिले में भी ईद उल अजहा का पर्व श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। ऐतिहासिक चौगान मैदान में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सामूहिक नमाज अदा कर देश और प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। बैरागढ़ पांगी वायस साच पास मार्ग पर पर्यटकों से भरा एक वाहन गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतकों में 7 पर्यटक और 1 चालक शामिल है। बेंगलुरु से आए ये पर्यटक साच पास क्षेत्र में बर्फ देखने गए थे। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने बताया कि दुर्घटना का पता चलने के बाद पुलिस और राहत दल ने दुर्गम क्षेत्र में राहत व बचाव अभियान चलाया। जिला परिषद और पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों ने भी अपने पद व गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में आयोजित समारोह में 18 जिला परिषद सदस्यों और 135 पंचायत समिति सदस्यों ने शपथ ली तथा अपने क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भी हाल ही में चंबा जिले का दौरा किया। खजियार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बूथ

0: अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और प्रत्येक मतदाता का वोट लोकतंत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने जिले के मतदाताओं से भविष्य के चुनावों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया।
1: चंबा जिला की चिट्ठी आपने सुनी, लेखक थे विकास ठाकुर।
2: FM बैंड 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये धर्मशाला केंद्र है। 3:10 हुए हैं, अब आकाशवाणी मुंबई से विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे।
3: कलाओं को जीवित रखने के लिए संघर्षरत ग्रामीण कलाकारों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी।
4: पारंपरिक कठपुतली कला जो विलुप्त हो रही थी और खतरे में जा रही थी, क्योंकि ऐसी कला है ना जिन्हें बहुत लोग नहीं जानते, तो जब उन्होंने इस खतरे को भांपा तो युवा पीढ़ियों को प्रशिक्षित करने का बीड़ा भी उन्होंने उठाया कि भाई जो चीज़ उन्होंने खुद सीखी है वो आने वाली पीढ़ी है वो भी सीख सकें, ताकि जो तोगलू गोम्बे याता की जो कला है इसके अस्तित्व के लिए जो भी ज़रूरी ज्ञान है, कौशल है, वो उन तक भी उसे पहुंचा सकें।
3: बिल्कुल, और उनकी कार्यशालाओं और मार्गदर्शन ने कठपुतली कलाकारों की एक नई पीढ़ी तैयार की है, जिससे ये कला आज भी जीवंत और प्रासंगिक बनी हुई है। उनके मार्गदर्शन में उनका परिवार प्रमुख महाकाव्यों और लोक कथाओं का मंचन करता चला आ रहा है।
4: और ये जो मंचन वो करते आ रहे हैं, इससे कर्नाटक की जो सांस्कृतिक विरासत है वो देखिए ना आज भी संरक्षित है। और उनके प्रदर्शन केवल मनोरंजन ही नहीं देते हैं लोगों को, बल्कि उनका जो प्रतीकात्मक महत्व है या जो भी वहाँ के उत्सव हैं, त्यौहार हैं, जो भी परंपरा हैं, उनसे जुड़े हुए होते हैं।
3: बिल्कुल,
4: भीमव्वा की जो जीवन यात्रा है वो केवल एक कठपुतली कलाकार की कहानी हमें नहीं बताती, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण किस तरह से किया जाता है ये पूरी कहानी बयान करती है।
3: बिल्कुल, उनका जीवन भर का मिशन कर्नाटक के पर्दे पर कला की जीवंतता को बनाए रखना रहा, ताकि तोगलू गोम्बेता की प्राचीन आवाज़ें आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करें और उनको शिक्षित करती रहें। और पारंपरिक चमड़े की कठपुतली कला टोगलू गोम्बेता के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए भीमव्वा डोडा बलप्पा शिले कैथारा को भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री प्रदान किया गया।
4: वो आगे इसी तरह नई पीढ़ियों को ये काम सिखाती रहें और इसके क्या क्या फायदे हैं समझाती रहें, लोगों को इससे जोड़ती रहें, यही शुभकामनाएं हम देते हैं।
3: जी
4: और एक गीत सुन ले अभी।
3: जी बिल्कुल।

0: देखिए ना, इस गीत में भी कठपुतली का जिक्र था, और ऐसे जो खेल होते हैं ना, ये बच्चों को बड़े लुभाते हैं। और हम सब ने भी बचपन में ज़रूर कठपुतली का खेल देखा होगा, और ख़ास तौर पे स्कूल में जब कठपुतली वाला आता था तो एक बच्चों में बड़ा कौतूहल सा होता था कि किस तरह के खेल दिखाए जाएंगे। और उसमें कुछ कठपुतलियाँ होती थी ना जिनकी कमर बड़ी लचकती है, और उनका जो डांस है वो देखने में बड़ा मज़ा आता था।
1: बिल्कुल, और ये अजीब सी आवाज़ें भी निकालते हैं।
0: हाँ,
1: तो हमारी एक जो श्रोता है वो लिखती हैं कि कठपुतली का खेल डांस जो डांस होता है प्राय विलुप्त सा हो रहा है। गांव और शहर में मोहल्लों में ये अक्सर दिखाई दे जाते हैं। सोसाइटीज़ और बड़े बड़े बंगला जो एरिया है उसमें बहुत कम दिखाई देते हैं। हम लोग के स्कूल में कठपुतली का खेल दिखाया जाता था, जैसा आपने बोला वो
0: बिल्कुल। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी बच्चों के स्कूल में या आसपास के क्षेत्र में अगर कठपुतली का खेल दिखाया जा रहा है तो बच्चों को ज़रूर वहाँ लेकर जाएँ, ताकि कल बच्चे भूल ना जाएं कि कठपुतली नाम की कोई चीज़ होती है, कठपुतली का खेल कैसा होता है। और इसीलिए जागरूकता के लिए भी इस तरह के दिन भी मनाए जाते हैं, और जब ऐसे किसी कलाकार को पुरस्कार मिलता है तो उन्हें भी इस चीज़ के लिए बहुत बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बात हम कर रहे थे खेलों के बारे में, आज जो खेल दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो 11 जून को मनाया जाता है, इसके बारे में हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिवस विशेष रूप से बच्चों के अधिकार, उनकी शारीरिक क्षमता के विकास और खेल के जरिए उनके मानसिक और सामाजिक विकास पर केंद्रित है। इसे यूनिसेफ द्वारा बच्चों के खेलने के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी है हमें।
1: बहुत। और खेलना सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ये हर बच्चे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी भी है। इसलिए खेल की रक्षा करने की खेल को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारा बचपन जो है बच्चों का वो बचा रहता है।
0: बिल्कुल। और खेल की रक्षा करने का मतलब होता है बचपन की सुरक्षा करना, ताकि हर जगह हर बच्चा खेलने का जो अधिकार है उसे पूरा कर सके। और परिवार में जिस सदस्य की खेल की तरफ रुचि ज़्यादा होती है, मतलब सबकी तो नहीं होती ना, तो जिसकी रुचि ज़्यादा है वो खेल के लिए प्रेरणा या खेल का समर्थक बन सकता है उन बच्चों के लिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बड़े अंतर्मुखी होते हैं, ना तो वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं ना खेलना पसंद करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को प्रेरित करना बहुत जरूरी है।
1: वो जिस तरीके के खेल में उनको रुचि हो उस तरफ आप उनको बढ़ावा दीजिए। और हमारे एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद की बधाई दे रहे हैं, और कहते हैं कि वर्तमान में बच्चे मोबाइल के आदि हो गए हैं और खेलकूद से रक्त का संचार होता है, शरीर और मन प्रफुल्लित रहता है, स्वस्थ रहता है। पुराने खेलकूद, छिपा छिपाई, गिल्ली डंडा, खो खो, कबड्डी, आम के पेड़ पर रस्सी बांध कर झूलना सब लुप्त हो गए हैं। आज केवल बच्चों को क्रिकेट ही अक्सर खेलते देखा है और मोबाइल चलाना। खैर, हमारी बिटिया रानी ऐसी नहीं है।
0: लेकिन अगर बच्चों को स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो रहा है तो उसे थोड़ा कम करके बाहर खेलने के लिए प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनकी जो शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है और सामाजिक क्षमता है, टीम में खेलने का जो एक स्पिरिट है, ये सब चीज़ें बच्चों में आ सकें। और ये जो हम खेल दिवस मना रहे हैं आरती, इसका उद्देश्य भी यही है कि खेल की क्या शक्ति है इसे हम सब जानें, पहचानें और समझें। ये हर व्यक्ति को समझना है कि हर बच्चे के विकास के लिए और कल्याण के लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और खेल दिवस

0: जैसे आयोजन, ये बातें समझने का हमें मौका देते हैं और यही वो समय होता है आरती जब हम सब मिलकर ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर बच्चा खेलने के अधिकार का पूरा लाभ उठा सकता है।
1: बिल्कुल, और बहुत ज़रूरी भी है खेल के को महत्व देना। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हम जो बच्चे आजकल दिख रहे हैं ना कि छोटे छोटे बच्चे भी जिम जा रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो खेलेंगे तो जो प्राकृतिक रूप से उनका विकास होगा।
0: और खेलने के लिए आपके पास बहुत सारी सामग्री

0: गेंद बना ली, उससे मारकर खेल रहे हैं उन
1: बिल्कुल, बहुत
0: पत्थरों
1: से
0: के
1: ऐसे
0: टुकड़ों
1: खेल
0: को।
1: हैं और जिनको खेल के मतलब मन तो खुश रहता ही है ना, हम स्वस्थ भी रहते हैं, और
0: जी
1: जबकि मोबाइल हम लेके एक जगह बैठे हैं तो बस हम उसी जगह बैठे हुए पूरा दिन निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता, हमें कोई दिन दुनिया की खबर नहीं रहती है।
0: जी
1: तो इससे क्या होता है ना, हम एक ही जगह बैठे रहते हैं तो रक्त संचार भी हमारा सही से होते हैं, उससे आँखों में हर तरह से उनको नुकसान नहीं होता है। तो बहुत ज़रूरी है बाहर निकलना, बाहर निकल कर खेलना।
0: तो इस दिन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में स्थापित किया, ताकि इस अधिकार को बढ़ावा दिया जा सके और इसकी रक्षा की जा सके। संयुक्त राष्ट्र की ओर

बच्चों के साथ मिलकर जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जब खेल का हिस्सा बन जाते हैं ना, तो बच्चों को खेलने में बड़ी रुचि रहती है। तो देखियो हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती, कि ये जो

0: बच्चों के लिए दी जाए। एक सिक्योरिटी गार्ड हर बगीचे में वहां होना चाहिए जो
1: बिल्कुल
0: बच्चों की सुरक्षा का ध्यान रखे। माता पिता में से कोई एक सदस्य तो जाता ही है, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित हो, इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और बच्चे सीखते हैं कि किस तरह हमें साथ साथ मिलके काम करना है, साथ मिलके खेलना है, टीम वर्क क्या होता है, ये सब चीज़ें खेल के ज़रिए ही आती हैं। जब वो साथ मिलके खेलते हैं और बच्चों के साथ में खेलते हैं, उनके से उनसे सीखते हैं, शेयर करना सीखते हैं, है ना, ध्यान रखना सीखते हैं, बहुत
0: अभी
1: कुछ सीख
0: जैसे
1: सीख
0: बारिश का जब
1: सकते हैं।
0: मौसम आएगा, पेड़ों पर झूले पड़ेंगे, तो सब बच्चे एक साथ मिलकर झूलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं अपने आप लंबी पेंग नहीं ले पाते हैं झूले।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। मैं हूं आपके साथ चंचल वर्मा।
1: मैं आरती श्रीवास्तव।
0: और देखिए, हम बात कर रहे थे बच्चों के खेल की। बच्चे खेलकर कितने खुश हो जाते हैं और बच्चे कोई दिखावा भी नहीं करते।
1: नहीं,
0: अगर
1: नहीं।
0: वो खुश हैं तो खुशी दिखाई देगी, अगर वो किसी से नाराज हैं, गुस्सा है, तो वो गुस्सा भी अपना साफ दिखा देते हैं। लेकिन ये चीजें हम बड़ों में बहुत ज्यादा होती हैं आरती, कि खुश हैं या नहीं, कई बार सिर्फ दूसरे को हमारी तकलीफ का अंदाजा ना हो इसलिए हम खुश रहने का दिखावा भी करते हैं।
1: बिल्कुल, अक्सर ही होता है ऐसा कि दिखावा ज्यादा होता है, खुशी उतनी नहीं होती है।
0: खास तौर पर जब सोशल मीडिया की बात आती है तब ये दिखावा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज का दौर ऐसा है जहाँ बहुत से लोग वास्तव में खुश रहने से ज़्यादा खुश दिखाने पर ध्यान देने लगे हैं। सोशल मीडिया पर जो मुस्कुराती तस्वीरें होती हैं, शानदार यात्राएं, महंगे सामान, चमकदार जीवन शैली को देखकर कई बार हमें भी ऐसा लगता है कि भाई ये जो सामने वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा खुश व्यक्ति यही है और हमारे जीवन में कोई खुशी पता नहीं है भी कि नहीं। लेकिन अक्सर इन तस्वीरों के पीछे की जो सच्चाई है
1: उसको खुश देखने के बारे में हम समझ साथ में आ जाते हैं कि वो इतना खुश है हमसे। कहते हैं ना कि हमारे मतलब तुम्हारे उसके कपड़े हमारे कपड़े सफेद कैसे हो सकते हैं, तो वही चीज़ है, वो हमसे ज्यादा खुश कैसे हो सकते हैं।

0: और तनाव, तुलना से क्या होता है, तनाव और असंतोष, क्योंकि उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन होता ही नहीं है कि मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही हूँ, वो सिर्फ दूसरों की नज़र से खुद को देखने लगता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए अगर सच्ची खुशी आप चाहते हैं अपने जीवन में तो क्या करना है, जो लाइक्स और फॉलोअर्स हैं ये दिखावे से नहीं आती। आजकल इसी के पीछे बस सब भाग रहे हैं कि अगर हमने कोई पोस्ट डाली है, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है जिसने

0: खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कि कब हम हंस रहे हैं कब हम रो रहे हैं, एक एक चीज़ को उस पर डालने की ज़रूरत भी नहीं है। तो वो चीज़ें होती हैं जो खुशी होती है ना, वो होती है छोटे छोटे पलों में। हम बहुत बड़े बड़े पलों का इंतजार करते रहते हैं ना, कि चलो ये त्यौहार आएगा तो हम बहुत खुशी से ये पहनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो हम अभी क्यों नहीं खुश हो जाते? तो
1: बिल्कुल
0: हर जो जो जो खुशी छोटे छोटे पलों में मिलती है ना, वो खो जाती है उसे इंतज़ार में कि बहुत बड़ा पल हमारे पास में
1: और
0: आए।
1: जो लोग खुशियों के लिए बहाने ढूंढते हैं ना इस तरह से, उनकी खुशियां जिंदगी में पूरी कभी नहीं होती। ये मिलेगा तब खुश होंगे, उससे
0: बिल्कुल
1: मिलेंगे तब खुश, यहाँ जाएंगे तब खुश होंगे, इसके इसके ये आएगा तब खुश होंगे, ये तो सिर्फ एक बहाने हैं। लेकिन
0: बिल्कुल
1: वो खुशी छोटे छोटे पलों में, जैसा आप
0: बिल्कुल। और
1: बता
0: ये
1: रही हैं।
0: जीवन है, कोई ऐसा मंच नहीं है कि
1: जी
0: हमें दूसरों को प्रभावित करना है, बस कि वो हमसे प्रभावित हो जाए, वो हो जाए। भाई हमें अपने लिए जीना है ना, हमें दूसरे के लिए इतनी दूसरे की नज़र से नहीं जीना, हमें अपनी नज़र से जीना है कि हम कब संतुष्ट हैं, हमें कब अच्छा लग रहा है, वो देखना है।
1: तो देखो हमारे श्रोता क्या लिखते हैं कि खुश होना दिल की बात है और खुशी दिखाना

0: रहना या दिखावा करना, सच बताऊं तो जब हम खुश होते हैं तो हमारे हाव भाव हमें बता देते हैं कि आज हम बहुत खुश हैं, और अगर हम परेशान होते हैं तो हम कितना भी खुश रहने की कोशिश करें वो दिख ही जाता है। ऐसा ही कुछ हम सब के साथ में होता है, क्योंकि समाज में रहने के लिए हम सभी को कभी ना कभी दिखावा करना ही पड़ता है, क्या करें। लेकिन अक्सर लोगों की आदत होती है कि कुछ ज़्यादा ही दिखावा करते हैं खुश रहने का, लेकिन मुझसे ये सब नहीं होता। खुश रहने का एक उपाय है, वो बताते हैं वो, कि सबकी करो, और मतलब सुनो सबकी, करो अपने मन की,
1: क्या बात
0: क्योंकि
1: है।
0: मन से किए गए काम खुश करते हैं।
1: तो चलिए अभी हमें खुश करेगा और हमारे सभी सुनने वालों को खुश करेगा
0: एक
1: ये
0: प्यारा सा
1: प्यारा
0: गीत।
1: सा गाना।

0: बहुत मीठा बहुत सुरीला गीत हमने सुना और इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर। हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना। जी
1: बिल्कुल, और वैसे भी चंचल अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए

0: इसके बाद हम लौटते हैं अपने विषय पर. हम बात कर रहे थे खुश रहना और खुशी का दिखावा करना. जी
1: बिल्कुल. और वैसे भी चंचल, अपनी खुशियों को महसूस करना, उन्हें जीना और उनके लिए आभारी होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि हम उन्हें केवल प्रदर्शित करते रहें. क्योंकि खुश रहने और
0: ज्यादा उजागर करके लेकर आइए, अपने सकारात्मक भाव को लेकर आइए, तो सामने वाले के जो भी नकारात्मक भावनाएं हैं वो आपको कभी प्रभावित नहीं. और देखिए, अब मैं एक अच्छा सा संदेश पढ़कर आपको सुनाती हूँ. हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुश रहना या खुशी का दिखावा करना, दोनों पहलू शामिल हो चुके हैं. सोशल मीडिया के इस दौर में लोग अक्सर अपनी परफेक्ट तस्वीरों को और स्टेटस के जरिए अपनी खुशियों का दिखावा करने में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जबकि असल जिंदगी उनकी कुछ और ही होती है. जो अलग अलग सोशल मीडिया के साइट्स हैं वहाँ पर अपने स्टेटस, अपना घर, अपने कपड़े, आउटिंग की फ़ोटो डालकर बस लोगों को दिखाना चाहते हैं कि वो कितने खुश हैं और कितने कामयाब हैं. और इस बेहतरीन दिखने की वहाँ पर होड़ सी मची हुई है. खुशी मांगे जो हो और मांगे सामानों से महंगे पलों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए समय में होती है, शांति में होती है, छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाने में छिपी होती है. बहुत सही बात लिखी है.
1: बहुत सही बात. और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि खुश रहना और खुश रहने का दिखावा करने में जमीन आसमान का अंतर होता है. असल में खुशी आंतरिक शांति और संतुष्टि से आती है, जबकि जो दिखावा होता है वो सिर्फ एक मुखौटे की तरह होता है, जिसमें सामने वाले को प्रभावित करते हुए अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाना होता है और कुछ नहीं. क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे. कुछ लाइन्स उन्होंने भेजी है गाने की,
0: और इस गाने के माध्यम से इस बात को बहुत सटीक तरीके से समझा जा सकता है.
1: बिल्कुल.
0: एक आगे के संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि आज के समय में लोग अपनी खुशी से ज्यादा उसकी नुमाइश करने में व्यस्त दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर जो प्रदर्शन है उसके बारे में इन्होंने भी लिखा है. और आगे लिखते हैं कि दिखावा कुछ समय के लिए ही प्रभावित कर सकता है, लेकिन मन का संतोष, मन की शांति कभी नहीं दे सकता. रिश्तों में अपनापन, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अगर है तो चेहरे पर मुस्कान खुली रहती है और यही सच्ची खुशी है.
1: बिल्कुल. एक और श्रोता है जो कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य खुश दिखना नहीं है बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि दिखावा कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन वास्तविक खुशी मन को संतोष और जीवन को अर्थ देती है. जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई के साथ जीना सीख जाता है, तब उसे खुशी का प्रदर्शन नहीं करना पड़ता, उसका जीवन ही खुशी का प्रमाण बन जाता है. बहुत सही बात कही उन्होंने.
0: एक छोटा सा बड़ा प्यारा सा संदेश है कि जीवन में दिखावे की अहमियत इतनी बढ़ गई है कि खुश दिखना अब खुश रहने से ज्यादा आवश्यक हो गया है. जहाँ वास्तविक खुशी मन की शांति और संतुष्टि देती है, वहीं दिखावा ऊर्जा को खत्म करता है और मानसिक तनाव का कारण बनता है.
1: बिल्कुल
0: सही बात है.
1: बिल्कुल. एक श्रोता लिखते हैं कि खुश रहना और खुश दिखना ये दो अलग यात्राएं हैं. खुश रहना भीतर का अनुभव है, ये सस्ता है क्योंकि इसका लेन देन बाहर की दुनिया से नहीं भीतर से होता है, लेकिन खुश दिखना दिखावे की दुनिया का खेल है. ये सब महंगा है, जेब से, दिल से, शांति से भी. असल में कठिनाई खुश रहने की नहीं, खुश दिखने की मजबूरी छोड़ने में है. सुख हमेशा भीतर से शुरू होता है, बाहरी चमक सिर्फ एक नकली रोशनी है. बहुत बहुत गहरी बात कही है इन्होंने.
0: और भी संदेश है.
1: तो एक और जमाइश होता है जो कहते हैं कि भाई दुनिया तो दिखावटी तो है ही, अपितु उसके पोषक भी है. फिर खुश रहना चाहते तो सभी हैं क्योंकि वो आनंद के सच्चित स्वरूपांश हैं, किंतु खुद में खुश रहना एक कला है और खुशी का दिखावा करते रहने वालों में अक्सर इसका अभाव ही देखा जाता है, क्योंकि वस्तुतः वो खुशी प्राप्त करने की कला को अपने दिखावेपन के माध्यम से सीख रहे होते हैं.
0: ऐसी बहुत सी मिलती जुलती बातें हमारे सभी श्रोताओं ने लिखी हैं. कुछ संदेश जिन्हें हम शामिल नहीं कर पाए हैं उनसे क्षमा चाहते हैं और सुनते हैं ये वाला गीत.

0: आरती, हम बात कर रहे थे ना खुशी रहने की, खुश रहने के बारे में और उसके दिखावा करने के बारे में. एक बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है, खुश रहना दिल की बात है और खुश दिखाना दुनिया को. जो सच में खुश होता है उसे मुस्कुराने की वजह ढूंढनी नहीं पड़ती, उसकी मुस्कान अपने आप ही चेहरे पर आ जाती है. दिखावे की खुशी कुछ पल चमकती है, लेकिन सच्ची खुशी मन को लंबे समय तक रोशन रखती है. इसीलिए खुश दिखने से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए. एक और छोटी सी बात ये आगे लिखते हैं, जिंदगी में सबसे सुंदर बात ये नहीं कि लोग हमें खुश समझें, बल्कि ये है कि हमारा मन सचमुच खुश हो.
1: बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने. और इसी के साथ एक और हमारे श्रोता है, वो लिखते हैं कि जीवन में जब भी मौका मिले खुशी रहना चाहिए. खुश रहने का दिखावा करने से हम आंतरिक रूप से खुश नहीं रह सकते. दूसरों को खुशी दिखाकर हमें कुछ भी हासिल नहीं होता. और मुझे विश्वास है कि विविध भारती मुंबई की श्रोता, जिसे मैं स्वयं भी हूँ, अगर कभी किसी कारण से दुखी भी हूँ तो आप सभी शक्की शानदार जो सदाबहार प्रस्तुति होती है और लाजवाब गीत होते हैं उनको सुनकर हम सभी श्रोताओं के चेहरों पर सच्ची खुशी झलकती है, तो दिखावा करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
0: बिल्कुल सही बात है. और अगर आपको विविध भारती सुनकर खुशी मिलती है तो इसके गाने भी आपको पसंद आते होंगे. और जब बात सुनने की आ रही है तो भाई कानों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है.
1: बहुत जरूरी
0: है. और इसी बारे में हम बात करने वाले हैं. कान हमारे शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा जा सकता है और ना केवल सुनने में मदद करता है आरती, बल्कि शरीर का संतुलन बनाए रखने में भी अपनी जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसे निभाता है. इसीलिए कानों की देखभाल बहुत जरूरी है.
1: बहुत जरूरी है. और कानों में इसलिए क्या करना है, हमें कभी भी कोई नुकीली चीज या माचिस की तीरी, जैसे अक्सर हम ना कुछ नहीं तो अरे कान में कुछ ली हो रही तो बस माचिस की तीरी लेके करने लगे तो वो बहुत खतरनाक.
0: और महिलाएं हेयर पिन घुमाती हैं.
1: हाँ, हेयर पिन, चाबी ले लेता है कोई, कोई तो चाबी से करने लगता है, कोई कॉटन बड्स जो होते हैं वो भी, लेकिन क्योंकि वो बहुत पुराने भी कभी कभी बने हुए होते हैं तो हो सकता है उसमें फंगस हो या कुछ हो, तो कभी इस तरीके की चीज़ों को यूज़ नहीं करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका जो अधिक उपयोग है वो कानों को नुकसान पहुँचा सकता है. और लंबे समय तक हमें तेज संगीत भी नहीं सुनना चाहिए, और जो शोरगुल का वातावरण रहता है ना बहुत समय तक, ऐसे उसमें भी नहीं रहना चाहिए कि बहुत तेज़ आवाज़ आ रही हो जहाँ पे, उसमें भी रहने से, क्योंकि एक वो एक अलग फ्रिक्वेंसी पे रहता है ना जो हमारे कानों की होती है, वो एक लिमिटेड होती है, उससे ज़्यादा हम अगर शोर में रहेंगे तो वो हमारे कानों को नुकसान पहुँचाएगा.
0: देखो जिस तरह से आँखों में जब गंदगी आती है, कोई कचरा जाता है, तो आँखों में जो नमी है वो अपने आप आँख उसे निकाल कर कुछ देर बाद बाहर फेंकती है और हम बस हल्के से इशारे से उस गए हुए तिनके को बाहर निकाल सकते हैं. इसी तरह कान में जो एक वैक्स बनता है, जो मोम जैसा होता है, वो अपने आप धीरे धीरे स्वतः ही साफ होते रहता है. कई बार उसे ज़बरदस्ती निकलवाने की कोशिश में हम कान की सफाई करवाने कहीं कहीं चले जाते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे औजार बना लेते हैं. तो अगर आपको कभी लगे कुछ खुजली आ रही है तो जो सॉफ्ट वाले ईयरबड होते हैं आप उनका इस्तेमाल करें, जो चाबी नुकीली चीज़ें हेयर पिन इनका तो कभी ना करें.
1: आप इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से ही करें, बल्कि अपने आप जितना आपका ये कहते हैं ना जितनी आपकी उंगली जो आपके हो सके जा सके उस हिसाब से आप करिए, वो सब चीज़ें आप प्रयोग मत करिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि पुराने जो होते हैं वो बर्ड्स उसमें वो फंगस भी होती है तो वो अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप ना प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है. और दूसरी चीज़ ये है कि अपने कानों का बहुत ध्यान रखिए और जो ईयरफोन वगैरह रहता है ना उसका बहुत कम से कम इस्तेमाल करिए, और क्योंकि ना आजकल लोगों को बहुत समस्या हो रही है कि बहुत सारे लोग ये समस्या बताते हैं कि कानों में तेज आवाज सुनाई दे रही है, मतलब हर समय 24 घंटे एक आवाज सी आती रहती है, तो बहुत परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि अब आजकल लोग ये ईयरफोन का बहुत इस्तेमाल करने लगे हैं, तो अब बहुत ज्यादा घंटों आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको कानों को नुकसान तो पहुंचाएगा ही.
0: क्योंकि जब इस चीज का प्रचार हो रहा था कि घंटों कान पर मोबाइल लगा के रखने से बात करने से मोबाइल के जो गर्म होता है वो हीट हमें नुकसान करती है, तो भाई घंटों अगर आपको कान पर फोन नहीं लगाना है तो बहुत देर तक अगर आप ईयरफोन लगाकर बात करेंगे या गाने सुनेंगे बहुत तेज आवाज में तो इससे कानों को नुकसान तो होगा ही. एक और नुकसान, अगर आप सड़क पर चलते समय ईयरफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पीछे से आने वाले वाहन की आवाज या अन्य कोई आपको आवाज भी दे रहा है तो आपका जरूरी काम छूट सकता है, दुर्घटना कोई भी हो सकती है, तो ईयरफोन का इस्तेमाल कम से कम करना है.
1: सबसे बड़ी चीज है आप अगर आपको सुन ही रहे हैं, आप उसको बहुत ज़रूरी है आपको कान में लगाना, तो आप 50 उसको कम से कम 50 पे रखिए, 50 से ऊपर मत करिए, बहुत ज़्यादा फुल साउंड में मत सुनिए उस चीज़ को कि आपको बाकी आवाज़ें ना आए. और दूसरी चीज़ अपने एक कान में ही लगाइए, अगर आप बाहर जा रहे हैं उसको लगाएं एक कान में लगाइए, आप ये करिए ना एक कान में लगा लिए थोड़ी देर आपने दूसरे कान में लगाया, इससे क्या होता है ना कान आपका ऐसे पर्दे पे उस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, वो ख़राब नहीं होगा. और साथ ही अगर आपकी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है या दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास ही कृपया करके, अपने आप कोई दवाई मत करिए. कई लोग होते हैं ना कि कुछ हम ये चलो ये डाल लें, ये वाला तेल डाल लें या इस तरह से डाल लें, तो वो चीज़ आप अपना स्वयं का इलाज मत करिए, आप विशेषज्ञ से के पास जाइए, उनसे दवा लीजिए, उन्हें बताइए जो भी चीज़ें हैं, तो वो उसका पूरा एग्जामिन करें, उस चीज़ से उसकी जाँच करेंगे, उसके बाद आपको दवाई देंगे। और मतलब कानों की जो नियमित जाँच होती है वो भी ज़रूर करवाइए।
0: हमारे श्रोता ने लिखा है कि नहाने के बाद कान सुखाएं, साफ तौलिए से कोने का प्रयोग करते हुए इसे सफाई करें, और स्विमिंग प्लग का उपयोग करें। इसके बारे में मेरी जानकारी कम है आरती। आगे लिखते हैं कि तैरते समय पानी को अंदर जाने से रोकें, गलत घरेलू नुस्खे कभी ना आजमाएं, डॉक्टरी सलाह के बिना कान में तेल या कोई अन्य चीज़ ना डालें, पानी को झुकाकर अगर चला गया है तो उसे बाहर निकाल दें, और कान में पानी जाने पर एक तरफ झुकाकर ही इसको निकाला जा सकता है। ये बहुत अच्छी जानकारी है। और अब हम सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: आरती कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत। चंचल वर्मा,
1: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक। सखी सहेली।

0: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ है। शाम के 4 बजने को है। एक बार पुनः से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रमों का प्रसारण।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: फरमाइश के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश के इस सफर में बहुत सारे श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है और इस बातचीत से हम एक दूसरे को जान पाते हैं विचारों से और भावनाओं से। और हेलो फरमाइश एक ऐसा मंच है जहां पर हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना संदेश, अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं। तो आज भी ऐसा ही कुछ हुआ है, तो प्रस्तुत है आपके लिए आपका अपना कार्यक्रम हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मैं अभिजीत प्रयागराज से बात कर रहा हूँ। मैम कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका कार्यक्रम सुनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। और हम लोग दिन भर जितने कार्यक्रम आपके यहाँ से प्रसारित किए सारे कार्यक्रम से जुड़े रहते, बहुत अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, चाहे वो हेलो फरमाइश हो, हेलो सहेली हो, सखी सहेली का कार्यक्रम हो, गीत माला हो, गीतों भरी कहानी हो, छाया गीत हो, आज के फनकार, ये सारे कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं।
0: बिल्कुल। तो अभिजीत जी हमें एक बात बताइए, हम थोड़ा सा आज बात करना चाहते हैं खेलों के बारे में। अपने बचपन की ओर लौटिए और बताइए बचपन में कौन सा खेल खेलते थे आप अपने दोस्तों के साथ?
1: सबसे ज्यादा हम लोग गेंदे जो मैच होते हैं वो ज्यादा खेलना पसंद करते थे। गेंदा जैसे बैट बल्ला है, वो हम लोग जब कभी भी स्कूल से आते थे वो अक्सर हम लोग खेल खेला करते थे, बहुत अच्छा लगता था वो खेल खेलने में, खेल बहुत अच्छा होता था उस टाइम का।
0: कभी बिल्कुल घर में बताते हो अपने बच्चों को या अपने घर में जो परिवार के अन्य सदस्य उनके बच्चे हैं, कभी बात होती है इस खेल के बारे में?
1: बिल्कुल होती है मैम। आज के समय में क्या हो गया है, लोग सबसे ज्यादा मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, ये तकनीक, इसी वजह से लोग कोई अभी तक कोई खेल ये जानते ही नहीं आज के लोग। लेकिन हमारा तो यही कहना है सभी लोगों से कि मोबाइल से ज्यादा अगर कोई ऐसा खेल खेला जाए तो ज्यादा ही कुछ अच्छा होता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, आपसे अच्छी बातचीत हो गई है, अब बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: चमत्कार फिल्म का नाम है और गाने का बोल है इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: तो सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम।
1: मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। नाम बताइए अपना।
1: हिलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो मैडम?
0: हम भी अच्छे हैं।
1: मुझे एक गाने की फरमाइश है आज।
0: बिल्कुल, हम आपको गाना सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले चंद बातें कीजिए हमारे साथ। कैसे हैं, क्या करते हैं आप कश्मीर में?
1: जी हम, मैं शॉल काम करते हैं।
0: किस तरह का? पश्मीना शॉल?
1: हाँ, पश्मीना हम बनाते हैं।
0: उसके बारे में बताइए थोड़ा हमको, क्या खासियत है पश्मीना शॉल की, लोग क्यों पसंद करते हैं शॉल को?
1: कश्मीरी शॉल तो बहुत पसंद है, बाहर स्टेटों में भी वो जाते हैं, वहाँ भी पसंद करते हैं लोग, यहाँ भी। यहाँ तो बहुत इसके कारीगर है, हाथों से बनाते हैं हम, वो बहुत मेहनत उस पे लगते हैं, तो बहुत बढ़िया बनते हैं मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर होते हैं और गर्म भी होते हैं, है ना
1: जी? इसका मुख्तलिफ साइज है।
0: चलिए बताइए हम आपको कौन सा गीत सुनवाएं।
1: फिल्म है साथी, उसका कुमार सानू गा रहे हैं, जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए।
0: बहुत गहरा गीत है ये तो, है ना?
1: हाँ हाँ, बहुत
0: बहुत सुंदर गाया है कुमार सानू ने, और बहुत ही सुंदर इसके जो शब्द हैं, बहुत ही सुंदर है, गहरे शब्द हैं
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए अपना।
1: फैसल इमाम।
0: अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं फैजल साहब?
1: मैम अच्छा हूँ मैं, आप कैसी हैं? ठीक हैं?
0: बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप?
1: मैम मैं यूडीसी पोस्ट पे हूँ, डिवीजन क्लर्क पे हूँ कॉलेज में।
0: तो नौकरी के साथ साथ विविध भारती को भी सुनना पसंद करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, विविध भारती तो बचपन से, ये सौगात मेरी मम्मी से मिला, सुनते आ रहे थे और कई बार पहले की बात हुई है विविध भारती में।
0: अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो बचपन में आप स्पोर्ट्स भी करते होंगे, खेलते होंगे बहुत सारे खेल?
1: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट खेलना बहुत शौकीन है हमारा।
0: कैसे खेलते थे, कितने रन बनाए, बताइए अपने बारे में, क्रिकेट की दुनिया कैसी थी आपकी?
1: क्रिकेट की दुनिया बहुत अच्छी थी, हम तो ज्यादातर बैटिंग करते थे, बॉलिंग दोनों थे। बचपन में तो खैर बहुत कम ही खेल पाते हैं।
0: अब तो नहीं खेलना होता है ना?
1: अब खेलना होता है, सुबह सुबह फुटबॉल खेल लेते हैं।
0: अच्छा,
1: खेलने का मौका नहीं मिल पाता है।
0: अच्छा, तो किस खिलाड़ी से ज्यादा प्रभावित रहे आप क्रिकेट खेलते समय?
1: हमारे तो फेवरेट खिलाड़ी रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर रहे हैं।
0: अरे वाह क्या बात है, तो आपने अपनी बैटिंग में कितने रन बनाए होंगे ज्यादा से ज्यादा?
1: ज्यादा 70-80 बनाए हैं।
0: कभी सेंचुरी नहीं बना पाए?
1: बनाना था वो तो खैर, क्रिकेट हम लोग खेलते थे 10 ओवर 20 ओवर से ज्यादातर टप्पा नहीं था हम लोग उस टाइम में। ये है कि फुटबॉल में बहुत गोल किया मैंने।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी फुटबॉल खेला।
0: बहुत अच्छी बात, बताइए क्या
1: खेलने की बहुत चाहत थी, फिर जिम्मेदारी हमारी गुजर गए, जिम्मेदारी घर की आ गई तो सब चीज से छोड़ना पड़ा।
0: ये होता ही है जिंदगी में कि हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं लेकिन घर की जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां कई बार हमको रोक देती हैं वो काम करने के लिए और हम एक जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा बताइए, तो आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आपकी सफाई फिल्म का गाना है वादा कर ले साजना।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: वादा

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील सिरोंज जिला विदिशा मध्य प्रदेश MP से।
0: क्या बात है, आपका स्वागत है बहुत बहुत अरुण साहब
1: जी। और आप कैसी हो?
0: अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: बस हम बहुत अच्छे हैं, मौसम अच्छा है, खुशनुमा है, बादल हो रहे हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, हवाएं भी चल रही है।
0: अच्छी कंपेयरिंग की आपने मौसम पर।
1: जी जी, और आपके इधर मौसम कैसा है?
0: हमारे इधर तो अभी गर्मी है भाई, बहुत उमस है
1: जी, जी,
0: पसीना आता है,
1: जी,
0: परेशान हो जाते हैं, बस बारिश का इंतजार है।
1: जी जी,
0: बताइए अरुण साहब अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं, रेडियो का भी शौक करते हैं, क्रिकेट का भी शौक है, कबड्डी का भी शौक है, हर चीज का शौक है।
0: क्या बात है, क्या बात है, आज तो हम खेल के बारे में ही बातें कर रहे थे, हमारे श्रोताओं से जानना चाह रहे थे कि आपके जीवन में खेलों का क्या स्थान है, खेलते हैं कि नहीं? आपने तो खुद ही कह दिया कबड्डी खेलते रहे, कबड्डी का शौक है।
1: कबड्डी का हर चीज का शौक है, लेकिन खेलते नहीं है, सुनने का है, कमेंट्री आती है कमेंट्री सुनते हैं।
0: तो कभी बचपन में गांवों में खेला तो होगा आपने, ग्रामीण अंचल में तो बहुत सारे खेल होते हैं हमारे, ग्रामीण खेल?
1: नहीं, ग्रामीण में तो खेले हैं बचपन में, गिल्ली डंडा भी खेले हैं, फुटबॉल भी खेले हैं, भूत रंजा, टीप टीप, चोर सिपाही, हर चीज खेलने की तो कुछ बात ही अलग है।
0: लेकिन आपने कौन सा खेला, गिल्ली डंडा खेला या कबड्डी खेली? आप कह रहे हैं फुटबॉल भी?
1: गिल्ली डंडा खेले हैं, अंटी भी हर चीज खेली है हमने।
0: अंटी क्या होता है?
1: अंटी वगैरह खेलते हैं ना, अंटी रहती है ना, कौन में रखते हैं, छाटते हैं उसको, उंगली से मिलाते हैं, उसको मारते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगा कि आप बचपन में ये खेल खेला करते थे, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: अंदाज का सुना देना, आएगा मजा बरसात का।
0: अरे वाह, क्या बात है, अभी तो बरसात आई नहीं, मजा कहाँ आएगा?
1: जी जी, लेकिन बरसात तो आने वाली है, कहूँ कहूँ तो बारिश भी हो रही है।
0: बिल्कुल सही कहा, कई जगह बारिश हो रही है, तो चलिए हम भी इंतजार करते हैं उस बारिश का आपके गीत के जरिए।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगी लाल धाकड़ बोल रहा हूँ।
0: मांगी लाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, और आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं
1: जी। काफी दिनों के बाद कॉल लगी है, बहुत खुशी है मुझे।
0: अरे खुशी तो होगी, क्यों नहीं होगी, लगातार आपने प्रयास किया होगा।
1: जी जी।
0: कैसा लग रहा है अब आपको जब आपकी कॉल लग गई है तो?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं, और कार्यक्रम में मनचाहे गीत सुनता हूँ।
0: मनचाहे गीत के लिए खत लिख रहे हैं हमें?
1: जी जी भेजे हैं।
0: ठीक है।
1: और हेलो सहेली सुनता हूँ, साथी सहेली सुनता हूँ, और आपके पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
0: बहुत अच्छी बात है मांगीलाल जी, और क्या करते हैं आप?
1: मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मैं हम किसान हूँ।
0: मौसम भी अभी आपके अनुकूल हुआ कि नहीं हुआ, खेती बाड़ी के अनुकूल?
1: अभी नहीं, 25 तारीख तक बारिश आ जाएगी।
0: यानी इंतजार है सब कुछ अच्छा होगा ना?
1: जी जी मैम।
0: तो बताइए, हम थोड़ा सा आज अपने श्रोताओं से ये जानना चाह रहे हैं कि बचपन में वो कौन सा खेल खेलते थे, क्या उन्हें याद है कि वो खेल खेला करते थे अपने ग्रामीण इलाकों में? हमारे कुछ पारंपरिक खेल हैं जिन्हें हम सभी खेला करते थे, आपको याद है कोई ऐसा खेल जो आपने बचपन में अपने दोस्तों के साथ खेला है?
1: जी मैम, मैं मैच का शौकीन हूँ, मैच भी खेलता हूँ।
0: अरे बैटिंग करते हैं बॉलिंग?
1: बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं।
0: क्या बात है, हरफन मौला है फिर तो आप
1: जी।
0: तो सबसे ज्यादा कितने लिए आपने, विकेट कितने लिए हैं बॉलिंग में?
1: विकेट जो मिल जाते हैं जो ले लेते हैं, 10-12 विकेट ले लिए थे मैंने एक बार।
0: अरे फिर तो आप मैन ऑफ द मैच हो गए।
1: जी जी मैम, बहुत शौकीन है मैं, रेडियो का बहुत शौकीन हूँ।
0: अच्छा, कौन सा गीत सुनवाए आपको
1: आज? मुझे खुदा गवाह फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ मैम, रब को याद करूं पिछड़ा याद मिला दे वो रब्बा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं मोहम्मद रफीक, नागपुर कुतुब शाह नगर नागपुर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: जी बढ़िया मैडम, आप कैसे
0: हैं? हम भी बढ़िया हैं। बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: जी मैडम, मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, घर में छोटी दुकान है, किराना वही चलाता हूँ मैडम।
0: अच्छा एक बात बताइए, दिन भर तो आप किराने की दुकान में काम करते हैं है ना, तो कभी रेडियो के लिए समय तो निकालते ही हैं, विविध भारती के लिए समय निकालते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो पुराना रिश्ता है मैडम मेरा रेडियो से।
0: तो खेल में रुचि है आपकी?
1: स्कूल में मैडम फुटबॉल खेलते थे मैडम, हम लोग कबड्डी चलता था मैडम।
0: अच्छा, कैसे खेलते थे? अच्छा लगता था? गोल कर पाते थे?
1: ज्यादा तो मुझे गोल की बनाते थे कि हाई रुचि थी ना।
0: हम आज ना अपने श्रोताओं से यही जानना चाह रहे थे कि अगर हम उन्हें बचपन की ओर लौटाएं तो उन्हें क्या याद आता है, कि क्या वो खेला करते थे? हम जब छोटे थे कितना खेल खेला करते थे ना।
1: हाँ मैडम सही बात है, तो बचपन होता ही है, बेफिक्री का रहता है मैडम, जवानी तक बुढ़ापा ही कठिन जाता है मैडम, बचपन और जवानी अच्छी रहती है मैडम।
0: हाँ, जब आप युवावस्था में आए तब भी आपका ये खेल जारी था फुटबॉल का, या फिर काम में लग गए?
1: हाँ मैडम, क्या बोलते सरकारी जॉब लगा था, पार्टी में ही था, जब जॉब लग गया था मतलब सरकारी मुहावरे से साधन का, लेकिन मैंने फिर 2.5 महीने छोड़ दिया, यानी 2 महीने छुट्टी के लिए किया था मैंने, जब खर्चे के लिए।
0: अच्छा, छोड़ा क्यों
1: मैडम? क्योंकि मैं तो आगे पढ़ाई करना था मैडम, उस जमाने में 10वीं पास करना लोहे के चने जमाना जैसा था। पहली से 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ, बिगर ट्यूशन से पास हुआ हूँ।
0: अरे वाह,
1: मैंने कसम खाया था कि मैं 10वीं पास होकर दिखाऊंगा, चैलेंज दिया था दो भाइयों ने।
0: क्या
1: फिर आगे पढ़ना नहीं था 10वीं पास करके, क्योंकि उस फ्रेंड में तो 10वीं बहुत काफी था उस जमाने के साथ।
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने जज्बा रखा ना पढ़ाई का, और आज आप अपना घर चला रहे हैं दुकान के जरिए।
1: जी मैडम।
0: तो बताइए अब कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: झुक गया आसमान का मैडम, कौन है जो सपना में आया है, कौन है जो दिल में समाया है, लो झुक गया आसमान भी इसको मेरा
0: रंग लाया। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं बनेरा जिला अमरावती पद्माताई सिंगारे बात कर रही हूँ, मंदाकिनी दीदी।
0: अरे आपको पता है कि मंदाकिनी बोल रही है इधर?
1: मैं आवाज से पहचान रही हूँ दीदी आपको।
0: अरे क्या बात है,
1: कैसे हो दीदी आप?
0: अच्छे हैं, आप बताइए।
1: मैं भी अच्छी हूँ दीदी।
0: क्या करती हैं आप?
1: मैं तो घर पे रहती हूँ दीदी।
0: घर पे घर के काम करती हैं?
1: घर का काम करती हूँ, घर पे रहती हूँ और विविध भारती के कार्यक्रम में सुनती हूँ दीदी।
0: और क्या शौक है आपके ये बताइए।
1: मेरे को शौक तो गाना सुनने का शौक है दीदी, और रात दिमाग को सवेरे से हेलो फरमाइश में जो कार्यक्रम रहता है वो भी सुनती हूँ मैं। आपका झमकर सुनकर मन चाहे चालू जो करे वो, उसके बाद मैं खूब धन्यवाद देना चाहती हूँ दीदी आपको।
0: तो मन चाहे गीतों के लिए आप हमें पोस्ट कार्ड में अपना नाम पता भेज रही है, पसंद का गाना
1: भेजिए मैंने।
0: अच्छा मुझे एक बात बताइए, आज हम सबसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में कभी स्पोर्ट्स आया, खेल आया? बचपन में हम खेला करते थे ना, युवावस्था में भी खेलते थे। आपने अपने बचपन में कौन सा खेल खेला था? लंगड़ी टांग, कबड्डी, खो खो, कुछ खेला था?
1: मैं तो सबसे ज्यादा ऐसे लंगड़ी खेलती थी दीदी, मैं छोटेपन में अभी खो खो खेलती थी, और मेरी जो बहन है वो ज्यादा मेरे को खेलने नहीं देती थी दीदी,
0: क्यों
1: लाड़ती थी ना मैं।
0: अच्छा, लेकिन बचपन तो खेलने का ही नाम होता है ना, बचपन में तो हम दुनिया भर के खेल खेलते हैं। तो अपने बहन के साथ कभी कंचे खेले फिर बैठ के? क्या करती थी बहन के साथ बैठ के? कंचे खेले होंगे, गट्टे खेले होंगे?
1: कंचे खेलती थी मैं अपने बहन के साथ, खेत में जाती थी तो मट्टी खेलती थी, वो मट्टी के बर्तन बनाती थी, मेरे बहन बना के देती थी मेरे को।
0: याद आया ना आपको अपना बचपन, कितना सुंदर होता है हमारा बचपन, है ना। चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए हमें, कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: फिल्म का नाम था खानदान, और गाने के बोले दिल गर्दन के उड़ते बादल।
0: आ आ आ, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो मैडम नमस्कार, विविध भारती।
0: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: नजीर डोंगरे बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से?
1: सोलापुर में, बार्शी से।
0: अच्छा, स्वागत है आपका नजीर साहब, कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ मैडम।
0: अरे वाह, क्या बात, हम भी अच्छे हैं।
1: बहुत अच्छे कार्यक्रम होते हैं मैडम।
0: अच्छा, अच्छे लगते हैं आपको कार्यक्रम?
1: सुहाना, सब पर अच्छा लगता है। आदमी नई चालू करे ना तुम कार्यक्रम, सब पर 1 बजे से 2 बजे तक
0: सुनते हैं आप सारे कार्यक्रम ना?
1: अच्छा लगता है। हेलो फरमाइश, गीत गाते हैं और अच्छे कार्यक्रम है
0: वो। आपका मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए हमें पत्र लिख रहे हैं आप?
1: नहीं मैडम, नहीं लिखा, अभी लिखूंगा इनसे आगे।
0: अरे क्यों नहीं लिखा भाई, आपके लिए तो है वो प्रोग्राम।
1: लिखता अभी इनसे आगे, बहुत पत्र लिखता मैं।
0: हाँ बताइए, गाना कौन सा सुनवाए आपको?
1: बिल्कुल वो प्रिया प्रिया क्यों भूला गया, ये गीत सुनवाए मुझे।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी मैम, हम धेमाजी असम से विमल बसंतर बोलो। मैम
0: विमल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: जी मैम हम ठीक है, मेरा सिलाई का काम करता हूँ, मेरा दुकान है, दुकान से फोन कर रहा हूँ। मैम
0: कितने बजे तक सिलाई करते हैं?
1: जी मैम हम तो सिलाई करता हूँ, घर में काम करके आके दुकान खुलता हूँ, फिर सिलाई करके जल्दी चला जाता हूँ 4 बजे 5 बजे तक।
0: क्यों जल्दी क्यों चले जाते हैं, लोग तो देर रात तक काम करते हैं।
1: जी मैम हम लोग का ये थोड़ा बस्ती इलाका है ना मैम।
0: हाँ।
1: इसीलिए थोड़ा बस्ती का अंदर का दुकान है ना, इसीलिए इसे चलता है।
0: अच्छा समय रहते घर पहुँच जाते हो।
1: जी मैम जी।
0: अच्छे से हो जाता है काम जितना आप चाहते हैं?
1: जी मैम हम लोग का इधर चल जाता है, थोड़ा मोरा इसे

0: करते रहता हूँ, और सिलाई का अलावा दूसरा शब्द में रखता हूँ दुकान और दूसरा है।
1: और विविध भारती के लिए कब समय निकालती हो?
0: जी मैम, विविध भारती तो सुनते रहता हो, लेकिन पहली बार आज फोन लगाए मैम।
1: कैसा महसूस कर रहे हो?
0: सुनते रहता हूँ, अच्छा लगता है सुन के मैम।
1: अच्छा, क्या फील हो रहा है अभी जब फोन लग गया आपका तो?
0: जी मैम, आज पहली बार फोन मिला, इतना अच्छा लगा है, फिर आप लोग से आज बातचीत हो गया, इतना अच्छा लग रहा है मैम।
1: बताइए कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
0: जी मैम, हमको सुनना है करण अर्जुन का बंधन तो प्यार का बंधन, ये गाना सुनना है मैम।
1: अरे वाह, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्ते मंदाकिनी मैडम। बिल्कुल,
0: नमस्ते। अरे, आपको पता है कि आज हम बैठे हैं मंदाकिनी जोशी।
1: देश की सुरीली धड़कन प्रसारण सेवा में जब आपकी आवाजें पहुंचती है कार्यक्रम सखी सहेली हेलो फरमाइश जैसे कार्यक्रमों में तो बिल्कुल मन आनंदित उठता है हो उठता है मैडम जी।
0: अरे क्या बात है, आप इतने सारे कार्यक्रम सुनते हैं।
1: जी मैम,
0: अपना नाम तो बताइए हमें।
1: मैं आपका नियमित श्रोता बात कर रहा था, संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: स्वागत है आपका संतोष जी, कैसे हैं आप बताइए।
1: मैडम बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रमों से जुड़ाव रखते हैं।
0: अच्छा बताइए क्या करते हैं आप।
1: मैडम मैं एक कृषक हूँ, साथ में वार्ताकार हूँ।
0: अच्छा तो आप वार्ता लिखते हैं।
1: जी मैम।
0: तो अच्छा, मैं आपसे 2 या 3 लाइन में एक वार्ता लिखवाती हूँ अभी। ये बताइए, अगर आपको कबड्डी का खेल दे दिया जाए कि इसके बारे में लिखना है और हमें प्रोत्साहित करना है कि जीवन में खेलों का महत्व होना चाहिए, और कबड्डी जो कि हमारा ग्रामीण खेल है, कैसा खेल है इसके बारे में बताइए, तो क्या कहेंगे।
1: कबड्डी एक ऐसा खेल होता है जिसे मानसिक शारीरिक परिवर्तन गतिविधियां हमारी प्रभावित करते हैं, खास करके युवाओं में अगर देखा जाए तो कबड्डी का एक अच्छा जज्बा होता है। और कबड्डी न केवल उत्साह की का प्रेरणा देता है बल्कि कबड्डी शारीरिक रूप से भी मानसिक रूप से भी आपको ताजगी से भर देता है।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा आपसे अगर हम पूछें तो आप क्या बताएंगे, आप कौन सा खेल खेला करते थे जब आप छोटे थे या युवा हुए किशोर हुए।
1: खेलों की बात की जाए तो रस्सा कस्सी का जो खेल हुआ करता था वो सबसे ज्यादा हमें भाता था। और जो मैच होते थे खास करके पुराने दौर में जब हम लोग बच्चे थे तो खेला करते थे, तो वो सारी यादें हमें आज भी याद आती हैं और
0: हाँ
1: खेलने का मन होता है।
0: लेकिन
1: जी मैम।
0: आज बच्चों की दुनिया केवल कंप्यूटर गेम तक सीमित हो गई है। स्कूल्स में तो खैर गेम्स होते ही हैं, लेकिन घर में अगर देखा जाए तो बच्चे ना के बराबर खेलने लगे हैं।
1: जी मैम बिल्कुल, सिमट करके रह गए हम बच्चे, लेकिन बच्चों की परिभाषा जो होती है, व्यक्तित्व होती है, वो माँ और पिता से शुरुआत होती है। यदि बच्चों की अच्छी आदत डालनी है तो माता पिता को भी सजग बनना चाहिए अपने आसपास।

0: मोबाइल कंप्यूटरों को थोड़ा सा दूरी रखें और खेलों का विषय जरूर चूज करवाएं ताकि बच्चे अपने आप को मेंटेन रख पाएं।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके संतोष जी। चलिए आपकी पसंद का गीत बताइए हमें।
0: बिल्कुल मैम, एक बहुत ही प्यारा सा गाना है, फिल्म खलनायक का गाना है, ऐसी तेरी याद आती है।
1: क्या बात है, चलिए सुनते ही ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: मैं अमल बसुमतारी बात कर रहा है रंगापाड़ा सोनितपुर असम से।
0: स्वागत है आपका। कैसे हैं अमल जी आप?
1: बहुत अच्छी है। आज तो बारिश हो रहा है इसलिए थोड़ा सा राहत मिल चुका है गर्मी से।
0: बहुत अच्छी बात है ये तो।
1: आप कैसे हैं मैडम? बहुत दिन से विविध भारती सुन के आ रहा है लेकिन कॉल नहीं लगा पा रहे थे। आज कॉल लगा पा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारी ट्रैफिक होता है आपके प्रोग्राम में लेकिन उसको तोड़ के आपके पास आ चुका है मैडम।
0: क्या बात है, चलिए अच्छी बात है ना, आज आपका कॉल भी लग गया, आप खुश नजर आ रहे हैं। क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती बाड़ी करते हैं, धान का खेती लगाया जाते हैं और साई का खेती है हमारा और सुपारी वगैरह लगाता है और सब्जी का भी खेती लगाता है।
0: चाय का खेती भी करते हैं?
1: जी जी, असम में तो साई का ही खेती ज्यादा करता है हमारे असम लोग।
0: बिल्कुल, असम की चाय। कौन सी चाय? खुशबूदार पत्तियाँ?
1: जी जी जी।
0: अरे हम भी चाय के बहुत शौकीन है। काश आपके पास होते तो आपके खेत पे ही बैठकर चाय बनाते और पी लेते।
1: नहीं, हमारा साई का तो ऐसे सिर्फ पार्ट निकलता है और इस पार्ट को फैक्ट्री में भेज देता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलिए अमल जी एक बात बताइए, और क्या करते हैं इसके अलावा? खेती बाड़ी तो करते हैं।
1: और मैं बांसुरी बजाता है और पंखा बनाता है, हाथ वाला पंखा, ये भी बनाने अच्छा लगता है।
0: अच्छा, बांसुरी बजाते हैं या बनाते हैं?
1: बनाती भी है और बजाती भी है।
0: खेतों से मिलती है आपको ये लकड़ी?
1: बम्बू से बनाता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर एक कलाकार भी है। तो बताइए, चलिए कभी आपसे सुनेंगे बांसुरी। फिलहाल तो बताइए आपकी पसंद का गीत।
1: हीरो हिंदुस्तानी फिल्म का जो चांद नजर आ गया, ये वाला गाना सुनना है।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: जी मैं दीपक जादव बात कर रहा हूँ मैडम, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले से।
0: स्वागत है आपका दीपक जी, कैसे हैं?
1: जी हम बहुत मजे में मैडम, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं, आप लोगों से बात करके और अच्छे हो गए हैं आज। कैसे हैं आप, क्या करते हैं?
1: जी मैं किसान हूँ मैडम, खेती करता हूँ।
0: क्या है आपके खेत में अभी?
1: अभी तो कुछ नहीं, लेकिन बरसात का इंतजार चालू है।
0: अच्छा, कैसा मौसम हो रहा है आपके शहर में?
1: अभी तो फिलहाल धूप निकल रही है।
0: हाँ तो दीपक जी, और क्या करते हैं इसके अलावा, कोई और शौक है
1: जी?
0: आपके?
1: मैं खेती किसानी करता हूँ खाली,
0: बस और कुछ नहीं।
1: और रेडियो सुनता हूँ।
0: रेडियो सुनते हैं तो रेडियो में कभी आपको कुछ और पसंद आता है? जैसे गाने तो सुनते ही हैं, खेलों पर कभी बात करते हैं आप? खेलों की कमेंट्री सुनना पसंद करते हैं?
1: जी बिल्कुल, सुनते हैं रेडियो पे क्रिकेट की कमेंट्री।
0: क्रिकेट की कमेंट्री तो जब आप छोटे थे तो आप कौन सा खेल खेलते थे, याद है आपको? स्पोर्ट्स क्या करते थे, क्या स्पोर्ट्स था आपका?
1: हम खो खो खेलते थे और क्रिकेट खेलते थे।
0: अरे
1: पसंद है जरा।
0: अच्छा, पसंदीदा खेल कौन सा है?
1: खो खो।
0: खो खो, बहुत मजा आता था खो खो खेलने में तो।
1: जी
0: है ना, कभी आपसे ऐसा हुआ कि खो कहा और आप नहीं उठ पाए हो?
1: बहुत बार हुआ मैडम, मजेदार किससे होते थे वो।
0: फिर बड़े होने के बाद सीधा खेती बाड़ी करी आपने, काम में लग गए?
1: घर में खेती थी ना मैडम, और शिक्षा का आगे चल के खेती करने वाला कोई नहीं था।
0: अच्छा, पढ़ाई की आपने?
1: पढ़ाई 12वीं तक की।
0: अच्छी बात है, चलिए अभी बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: हमें तेरे नाम का गाना सुनना है मैडम, क्योंकि सीखो वफा के बदले वफा नहीं मिलती।
0: क्या बात है, कितना गहरा गीत सुनना चाहते हैं, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222860288। हमारा दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर लेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।
1: विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक में भाग लिया। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीति आयोग भारत को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें 3 भारतीय नागरिकों की जान चली गई। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। खाड़ी क्षेत्र के अपर सचिव असीम आर महाजन ने कहा कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। श्री महाजन ने बताया कि 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जा रहे जहाज MT मारिवेक्स को 8 जून को ओमान के तट पर निशाना बनाया गया था। चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 % एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर बल दिया।
2: नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
1: तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन को भेजा है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। PV सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने प्री क्वार्टर फाइनल में भारत की ही ईशा रानी बरुआ और तन्वी शर्मा ने मालविका बंसोड को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म के इस भजन के साथ। भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर।

श्रोता, इसी के साथ हमारा आज का भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे युवा मंच कार्यक्रम। युवा साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 103.4 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी धर्मशाला पर, जहां रोजाना की तरह हम लेकर आ गए हैं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम युवा मंच। जी हां, नई सोच, नए सपने और उन सपने

100% जो है वो देते हैं और देखिए कामयाबी किस तरह से बाहें फैलाकर आपका स्वागत करती है। युवा मंच कार्यक्रम में आप यूं ही जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि कुछ ही पलों में आपके साथ जुड़ने वाली है एक और युवा शख्सियत। उनसे आपका तारुफ जरूर करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुनवाएंगे ये प्यारा सा गीत। जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ, सुनते रहिए युवा मंच।

परफॉर्मेंस का शानदार संगम अब हर सफर बनाएगी और भी किफायती 28.65 किलोमीटर पर लीटर तक की शानदार माइलेज के साथ। इसके आकर्षक डिजाइन, आधुनिक फीचर्स और आरामदायक ड्राइविंग अनुभव के साथ हर ड्राइव बने खास। साथ ही पाइए ₹80,000 तक का एक्सचेंज बेनिफिट। जल्दी कीजिए, कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी एरिना शोरूम। नियम एवं शर्तें लागू।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी
3: युवा मंच कार्यक्रम इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। युवा साथियों, आजकल मौसम का मिजाज कुछ बदला सा है। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक से बादल गरजने लगते हैं, कभी बारिश तो कभी ओलावृष्टि हमें देखने को मिल रही है। और हम सभी जानते हैं कि इसके पीछे की वजह है लगातार बदलता मौसम। हमारी क्लाइमेट में होने वाला ये बदलाव जो हम सभी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, लेकिन इन सब के पीछे यानी कि जो है इन सब बदलते हुए बदलावों को रोकने में हमारा यूथ जो है ना वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए इसी विषय पर बात करते हैं। हमारी आज की युवा मेहमान शिवांगी से उनका स्वागत करते हैं और जानते हैं उनका परिचय उन्हीं की जुबानी। शिवांगी जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
4: सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ आकाशवाणी का कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपनी आवाज़ रखने का, और आकाशवाणी धर्मशाला के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवांगी धीमान है और फिलहाल मैं अपनी MBA कर रही हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से, और साथ ही मैं पिछले 3 सालों से एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट वॉरियर्स, मैं उनके साथ थ्रू इंटर्नशिप और थ्रू वॉलंटियरशिप जुड़ी हुई हूँ, और मैं पार्ट टाइम वॉलंटियरशिप्स और काफ़ी उनके 2-3 प्रोजेक्ट्स में उनके साथ मैंने काम किया है और अभी भी कर रही हूँ।
3: जी शिवांगी जी, ये बताइए हमारे सुनने वालों की किस तरह का काम है और किस तरह की अवेयरनेस आप जो है अपने काम के थ्रू फैला रही हैं।
4: देखिए, वेस्ट वॉरियर जो है वो सबसे पहले इसमें बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं जी। जैसे एक प्रोजेक्ट है युवा, जिसकी फुल फॉर्म है यूथ यूनाइटेड फॉर वेस्ट एंड क्लाइमेट एक्शन। तो उसमें हम कॉलेजेस में जाके और स्कूल्स में जाके बच्चों को अवेयर करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, और साथ ही में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो धर्मशाला का पूरा वेस्ट मैनेज करती है, और हम काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, इवन हम क्लीनअप ड्राइव्स करते हैं। जैसे पिछले साल ही हमने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था एनवायरमेंट डे के ऊपर, जिसमें सबसे ज़्यादा वॉलंटियर्स पूरे वर्ल्ड में हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किए थे ड्यूरिंग एनवायरमेंट डे।
3: जी, बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और अब चलते हैं गीत संगीत की और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। युवा साथियों, युवा मंच कार्यक्रम में आप यूं ही बने रहिए क्योंकि बातों का सिलसिला अभी खत्म नहीं होने वाला है। शिवांगी से और भी ढेर सारी जानकारियां हम लेंगे, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: जी हाँ, युवा मंच कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। और कार्यक्रम में आज आपसे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज के बारे में। और स्टूडियोज में हमारे साथ आज मौजूद है हमारी युवा साथी शिवांगी। जानते हैं उनसे कि वो क्लाइमेट चेंज को किस तरह से देखती है।
1: जी, जो क्लाइमेट चेंज है वो एक हमारे जो टेम्परेचर है उसमें एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट है। और क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि एक एनवायरमेंटल इशू है, बल्कि ये एक ग्लोबल इशू है। चाहे हमारा एग्रीकल्चर है, चाहे हमारा हेल्थ केयर है, चाहे हमारी इकोनॉमी है, चाहे हमारा जॉब स्ट्रक्चर है, हर जो सेक्टर है हमारे इकोनॉमी का या हमारी कंट्री का, वो क्लाइमेट चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम देखें कि एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर डिपेंड वेदर पे ही होता है। जैसे रेन चाहिए इसे, इवन सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए। तो लेकिन एग्रीकल्चर में भी शायद हम ऐसे ऐसे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारी जो ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है, जिससे कि जितना हमारी पॉपुलेशन है और जितना एक कैपेसिटी है एक लैंड की प्रोड्यूस करने की, वो भी कम होती जा रही है। और साथ ही में अगर हम बात करें, जैसे वाटर पोल्यूशन है या एयर पोल्यूशन है, हर तरह का पोल्यूशन जो है हर इंसान की हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो है वो उसको अफेक्ट करता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही है कि हम अपनी जो डेली हमारी जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, अगर हम उसको चेंज करें तो हम क्लाइमेट चेंज को एक बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और क्लाइमेट चेंज अभी आई थिंक हर गवर्नमेंट या हर जो कंट्री है वो उसका सबसे बड़ा इशू क्लाइमेट चेंज ही है। इवन हम चाहते हैं कि भारत 2047 तक विकसित हो, और उसके लिए भी एक बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स हैं 17, जो कि हमें 2030 तक अचीव कर रहे हैं, उसमें भी ज़्यादातर बात क्लाइमेट चेंज और क्लीन सिटीज़ और इन सब चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है।
0: जी, हमारी छोटी छोटी कोशिशें हैं, आप यही कहना चाहती हैं कि वो हमारे जो एनवायरनमेंट को पल्यूट होने से बचा सकती है, और इसी पर हमें काम करने की ज़रूरत है।
1: हाँ जी।
0: विल प्रोग्राम में बातें तो यूं ही होती रहेगी। फिलहाल और सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी धर्मशाला के विशेष कार्यक्रम आप और हम आपके विचारों, सुझावों और शिकायतों के लिए समर्पित है।
1: यदि आप आकाशवाणी धर्मशाला के कार्यक्रमों के संबंध में अपनी राय, सुझाव या शिकायत हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या पत्र भी लिख सकते हैं।
0: ईमेल का पता है dharmshala@gmail.com। पत्र भेजने का पता है आकाशवाणी धर्मशाला, कार्यक्रम अनुभाग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश।
1: आपके सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य हैं और हमें अपने कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने की प्रेरणा देते हैं।
0: तो देर किस बात की, अपने विचार हम तक अवश्य पहुंचाइए,
1: क्योंकि आप और हम में आपकी आवाज, आपके विचार हैं सबसे महत्वपूर्ण।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
5: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
6: Nexa. ही साथियों, आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं युवा मंच कार्यक्रम, जिसमें आज आपसे बात हो रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर। चलिए बात करते हैं हमारी युवा साथी शिवांगी से और जानते हैं इनसे कि आप कौन कौन से कदम उठाने की सलाह अपने सुनने वालों को देना चाहेंगे कि वो ऐसे कौन से कदम उठाए जिससे क्लाइमेट में होने वाले जो चेंजेस को हम रोक सकते हैं।
7: जी, सबसे पहला जो एक कदम है वो है कि हम जो अपना कूड़ा देते हैं वो हम सेग्रीगेट करके दें। मतलब हमारा जो वेट वेस्ट है और जो ड्राई वेस्ट है वो हम अलग करके दें। जब हम ये अलग करके देते हैं तो जो ड्राई वेस्ट होता है वो मटेरियल रिकवरी सेंटर्स में जाता है, जिससे कि जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिससे हम जैसे हमारी इवन अलमीरा बना सकते हैं, मेज बना सकते हैं, चेयर्स बना सकते हैं ये सारी। और जो वेट वेस्ट होता है उसकी खाद बनाई जाती है। लेकिन जब लोग ये कूड़ा इकट्ठा करके देते हैं तो हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका यूज़ करके हम इसको एड्रेस करें। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, वो है कि ये सारा वेस्ट जो है, जो गवर्नमेंट द्वारा अलोटेड लैंड होती है वहाँ पर इसको डंप किया जाता है, और इसी की वजह से डंपिंग साइट्स बनती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सिर्फ वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट अगर सेग्रीगेट करके दें तो जो वेस्ट है उसको मैनेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। और दूसरा ये कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हम अपनी एक बॉटल ज़रूर रखें, ताकि हम जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बॉटल्स हैं वो हम अवॉइड करें
6: जी।
7: और तीसरा ये कि जैसे हिमाचल में जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो काफ़ी सालों पहले बैन कर दिए थे, लेकिन आज भी जो शॉप्स हैं उसमें कलरफुल बैग्स जो यूज़ होते हैं वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही है, बल्कि वो हमारी एक हम एक ग्रीन वॉशिंग है कि हमारा हम ये मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्रिटेंड करता है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है बट एक्चुअल में वो नहीं है, तो वो बैग्स भी वैसे हैं। तो ऐसे ऐसे अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मैनेजमेंट है वो ढंग से नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक हमेशा प्रॉब्लम है, अगर प्लास्टिक को ढंग से मैनेज करें, हमारे पास ऐसी इक्विपमेंट्स है, ऐसी टूल्स हैं जिससे कि हम उसको रिसाइकल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको, एक तो ये है कि जगह जगह फेंक रहे हैं,
6: अवेयरनेस की कमी कह सकते हैं।
7: हाँ जी, अवेयरनेस की कमी है और लोग शायद थोड़ा एफर्ट नहीं करना चाहते। लोगों को लगता है कि हम एक ही डस्टबिन रखते हैं उसमें ही कूड़ा मिक्स, तो जो मिक्स कूड़ा है उसका कोई भी उसका हमारे पास सोल्यूशन है नहीं। और जब डंपिंग साइट्स भी बनती हैं तो उससे भी इवन जो सराउंडिंग्स में लोग रह रहे हैं उनके आसपास भी जो बीमारियां हैं वो काफ़ी बढ़ती हैं, जैसे डायरिया हो गया या स्किन इन्फेक्शन हो गए, तो ये सारी चीज़ें भी डंपिंग साइट्स की वजह से बढ़ रही हैं
6: जी। तो अब जो घड़ी की सुइयां हैं शिवांगी, वो इशारा कर रही है कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की तरफ, और आप अंत में अपने युवाओं को कोई मैसेज देना चाहेंगे?
7: मैं यही बोलना चाहूँगी कि फ्यूचर बिलोंग्स टू अस. सो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जो भी करें, चाहे हम किसी भी प्रोफेशन में जाएं, लेकिन यू नो हम आए भी धरती से हैं, जाएंगे भी धरती में, तो धरती का ध्यान रखना हमारी हमेशा एक जिम्मेदारी होनी चाहिए.
6: जी, उसका सम्मान करना हम सभी का फर्ज बनता है, क्योंकि धरती माता जो है ना वो हमें बहुत कुछ देती है. और इसी के साथ शिवांगी आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए और हमारे युवा साथियों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी. आपका शुक्रिया.
7: धन्यवाद.
6: युवा साथियों, इसी के साथ हमारा आज का युवा मंच कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है. कल इस कार्यक्रम को नई जानकारियों के साथ इसी समय सुनना ना भूलें. एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं. शाम के 5:55 हुए हैं. आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की.

अब से थोड़ी देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। इसके अलावा शाम 7:45 पर भी प्रादेशिक समाचार सुने जा सकते हैं। 6:05 पर किसान बागवान श्रोता सुनेंगे किसान वाणी कार्यक्रम और 6:35 पर आपको सुनवाया जाएगा मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम। समाचार हमारे केंद्र से सुने जा सकते हैं 7 बजे हिंदी में, 7:05 पर अंग्रेजी में, रात 8:45 पर समाचार संध्या, रात 9 बजे News@9 और सभा के अंत में रात्रि 11 बजे हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुने जा सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। 7:10 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम साइंस एंड टेक। रात्रि 8 बजे सुनेगा विभिन्न गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस और 8:30 पर हम आपको सुनवाएंगे कुछ देशभक्ति गीत। 9:15 पर आप सुनेंगे एक ही कलाकार कार्यक्रम और 9:30 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे शामे गजल प्रोग्राम। रात्रि 10 बजे सुनेगा हिमाचली लोक संगीत का कार्यक्रम और 10:30 पर सुनना ना भूलें फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। श्रोता ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज रात्रि में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा व उनके प्रसारण समय की। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5:58 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार, खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। यही नहीं, पूर्व भाजपा सरकार ने आय के संसाधन जुटाने की भी कोशिश नहीं की। इसके विपरीत तत्कालीन जयराम ठाकुर सरकार मौजूदा सरकार पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़कर चली गई। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का सारा वित्तीय सिस्टम गड़बड़ा गया है और अब मौजूदा सरकार इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चरणबद्ध ढंग से दे रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है।
1: जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश करेगी रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार में लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाना वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और आरडीजी को भी बहाल करवाएं। कुल्लू जिला प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिगत रामपुर जल विद्युत परियोजना के संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ड्रोन अथवा यूएवी के संचालन और उड़ान पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। कुल्लू के उपायुक्त अनुराग शर्मा ने कहा कि पावर हाउस, स्विच यार्ड, सुरंगों, ट्रांसमिशन सुविधाओं और अन्य संबंध प्रतिष्ठानों के ऊपर ड्रोन का अनाधिकृत संचालन सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था और परियोजना की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं किसान वाणी कार्यक्रम।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे किसान बागवान भाई भैन जो सारिया श्रोतियां जो किसान मित्र की संझ दी इस वेला टियाले ते दो हथ जोड़ी के राम राम। कने किसान साथियों अज बड़िया दिनों बाद टियाले पर मुलाकात हो करती है मास्टर ने।

0: जी ने तो मस्टैणी जी राम राम।
1: राम राम किसान मित्र जी कने सारे सुनने वाले किसान कने बागवान साथी हैं जो साड़ी संजय दी बेला दी राम राम
0: जी। तो मस्टैणी जी दिखा भी तुहां दा टियाले खरी दौड़ लगाई है ना कुजल तुहां कुआलू चढ़ा कर दे है।
1: बिल्कुल
0: कने दिखा ऐसे जी भी गए तुहां दा ना
1: तो दिखा हुण टियाले पर भी होना हा कने कने कने दिखा पता नहीं हुंदा कि अंबर कालू बरी पौना।
0: हाँ इतनी मैं दिखा करदा हा ना मैं तो थोड़ी जल्दी चले आ ना अज तौली पुजी आ तो मैं दिखा करदा कि जियां इत्थे नेरी तूफान चलिया तो मस्टैणी दा जेहड़ा छतरू है कदी तां हो गया कदी उल्टा सीधा हो गया कदी पुट्ठा हो गया है ना।
1: किसान मित्र जी तो हुण क्या करना दिखा टियाले पर होना भी जरूरी था क्योंकि तुहानू पता कि इत्थों बई के हां गल्लां भी करनियां जानकारियां भी देनियां।
0: हां जी हां क्योंकि
1: गीत भी सुनाने एना करे टियाले पर होना भी जरूरी था। हुण बरखा होए आंधी होए तूफान होए टियाले पर तां
0: होना ही है। ये हाँ टियाले की जी रीत है कि अहाँ जल कार्यक्रम च इत शुरुआत करते हैं तो एक ना अहाँ जानकारी कोई गल हाँ साझा करते हैं।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल।
0: तो मस्टैणी जी का देखा भी जिन्हें जड़ी जानकारियां जड़ा ना झोलू है ना सह इन बरखा बिच भी जड़ा सह खरा जड़ा जिसकी बोलते ना निगे च जड़ा सह लपेटिया हा कहना हाँ दसा भला कौन दी जानकारी लेके आई
1: है ना। बिल्कुल दिखा जी मैं गलाया ना किसान मित्र जी तूफान बरखा ओले पौंदे ना हाड़े मुंडे पर
0: तां
1: वी अज हां जिम्मेवारी लई होई टियाले पर पुजणे तां पुजणा पुजणा हा।
0: हां
1: तीए क्या हुंदा ना कि हां खेतां च वी फसल वाही हुंदी
0: जी। हां जी
1: तां हुंदा क्या कि सांजो पता नहीं है भाई चलो हां फसल वाही ती तां चलो मौसमे दा तां होई गया पर जालू जी फसल उगदी तां सै साड़ी दिखा कितने समय दी जिहड़ी है इक सै मेहनत हाड़े उत्थे हुंदी।
0: हां
1: तां तिस च क्या हुंदा हांजो पता नहीं हुंदा कि मौसम कदिया रहना है फसल रहणी खराब होई जाणी। ठीक है तां क्या हुंदा कि इहदे ताईं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जिहड़ी है सै कीती गई थी 13 जनवरी 2016 जो
0: जी।
1: कने दिखा तिस च क्या हुंदा कि अगर साड़ी बाइयो फसल खराब हो जांदी तां तिहदे ताईं हांजो जिहड़ा सै मुआवजा मिली जांदा पर साड़े जिहड़े किसान न सै पात्र होना चाहिए। ठीक है तां प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिहड़ी है सै प्राकृतिक आपदा ते फसल खराब होने पर जिहड़ी है सांजो सुरक्षा दिंदी है उहदे ताईं इह चलाई गई होइ है जियां कि चाहे सुखा होए चाहे बाढ़ होए चाहे ओले पौण कीट लगन फसला जो चाहे कोई रोग लगे तो साड़ा जिहड़ा सै नुकसान हुंदा है तां सै जिहड़ा बीमा दा फायदा इसते मिलदा है कने किसान दी आय जिहड़ी है इस कन्ने सुरक्षित रहिंदी है जिसते क्या हुंदा है कि नुकसान होने पर अगली फसल दी बुआई दे ताईं आर्थिक सहायता जिहड़ी है सै मिली जांदी है कने बुआई ते लई कने कटाई तक कुछ परिस्थितियां च कने कटाई ते बाद भी जिहड़ी है सै प्राकृतिक आपदा ने होयो नुकसान पर बीमा सुरक्षा जिहड़ी है सै मिलदी है
0: जी। कुल मिलाई के जड़ा सै मस्टैणी जी ये बोल सकते हैं कि फसल बीमा हांजो कराना बड़ा जरूरी है ना।
1: बिल्कुल जी।
0: उन खरीफ दा जड़ा सै मौसम है ना
1: जी
0: तो खरीफ दी जड़ी भी आहदी फसलां दियां छल्ली है सोयाबीन है धान है तिल मा और जो भी है अहां बीमा जरूर करवाना है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल कने पर ए पी दे ताई किसान जड़ा सै पात्र जरूर होना चाहिदा ताई सांजो जड़ा सै इस च फायदा मिलना है
0: जी। तो हुण मस्टैणी जी सुनते हैं एक लोक गीत कहते लोक गीत के बाद जड़ी सह अहाँ सुननी है एक भेंट वार्ता की जड़ी सह एक डॉक्टर जड़ी सह साहब अहाँ दे जड़ी सह डॉक्टर रुचिका शर्मा टियाले पर आए हुए हैं ना कहते उन्होंने कन्ने की गई गलबात भी जड़ी सह सुननी लेकिन उससे पहला सुन लेंदे एक जड़ी सह लोक गीत है ना
1: जी।

0: जाना है लोक मित्र केंद्र, हर पंचायत च होना ही है, हर ग्राएं च होना ही है, तो तुहां उनाल जा कने अपना रजिस्ट्रेशन करा ताकि आने वाले समय तुहां जो सारी सुविधाएं जो है सरकार द्वारा मिली सकन।
1: डॉक्टर रूपका शर्मा जी की इस कोई शक नहीं की गल करदे ना हां राज्य सरकार दी या केंद्र सरकार दी, ता असा दे किसानां दे हित ताई मती सारी जिहड़ी फायदे कन भी योजना दे माध्यम कन उहनां ताई आवा करदे ना। ता इस विच असा गल करनी की जिहड़ी ए प्राकृतिक खेती कने परंपरिक रसायनिक खेती ए किस तरह दी खेती है, इसदे बारे च क्या बोलेंगे तुहां?
0: ये तुहाडा सवाल बिल्कुल ठीक है। थोड़ा प्राकृतिक खेती सोचते कि यहाँ जो करा दे से प्राकृतिक हित है, यहाँ प्रकृति के अंदर बैठे के जो काम करा दे से प्राकृतिक है, बट प्राकृतिक खेती का मेन ये है कि यहाँ जो होंगे रसायन नहीं यूज करनी, जो बाहर खा केमिकल फर्टिलाइजर है सह नहीं यूज करना है, यहाँ कीटनाशक जो पेस्टिसाइड्स का स्प्रे है सह नहीं करना है, कने जो बी ब्याज होंगे जो यहाँ हाइब्रिड यूज करते सह भी यहाँ कटते कट यूज करने, जो अपना लोकल बीज होंगे से धीरे धीरे खत्म हुआ था। प्राकृतिक खेती का बढ़ावा सरकार दिया दी, प्रदेश सरकार भी दिया दी, कने सेंटर की सरकार भी दिया दी, तो उस मेन यही है कि रसायनिक खादों का उपयोग धीरे धीरे खत्म करा, कने आड़े कीटनाशक कने जो यहाँ के कृषि उपकरण यहाँ जिया बीज जो महंगे बीज हाँ हाइब्रिड बोलने दे खरीदा दे इतने महंगे महंगे, तो कोशिश करा कि अपना बीज भी आपू वाली रखा जिया फसलों का, पहले आड़ियाँ दुनिया वरायटियां जो होंगे लोकल से लुप्त हो रही उन्होंने बीज उन्होंने संभाले के रखा, गोबर गौमूत्र जो आड़े प्राकृतिक खेती के घटक हैं, जीवामृत बीज है ना, बीज अमृत घन जीव अमृत, फिर जो अहां दे पेस्टिसाइड्स दी जगह से आंदे आड़े कीटनाशक जी अग्निअस्त्र हुई है, नीमवाण हुई है, सह दी चीजां खट्टी लस्सी दा उपयोग करा, इन्हां चीजां जो यूज करके जो खेती हो दी उसी प्राकृतिक खेती बोलदे। कने रसायनिक खेती से आंदी जिस च तुहां गोबर नहीं पा दे, जिस तुहां गोमूत्र नहीं यूज करा दे, जिस तुहां बी लोआ दे हाइब्रिड ट्रैक्टर चला दे, हुण बैलां बूलां सारा कंसैप्ट खत्म हुई है, ट्रैक्टर चला दे बी हाइब्रिड पा दे, कने यूरिए दे छिट्टियां दे या दे, कने हां एनपीके पा दे, सैड़ी रसायनिक है टोटल, यहाँ फिर जो कीड़ा होता जो एक कीड़ा दुसिया तो हाँ स्प्रे खरीदना चली पोवा थे,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना, जिसकी जरूरत नहीं भी है। अगर मान लिया दो चार एक थ्रेशोल्ड लेवल होंदा हर कीड़े का, एक थ्रेशोल्ड लेवल की जितनी उसी पॉपुलेशन है तो उससे बड़ी करी होंगी ताई से नुकसान पहुंचाता है ना, ता चलो स्प्रेस करा दे ताड़े जो मित्र कीट है से भी खत्म हुआ थे। पहले होंगे छोटा मोटा नॉर्मल कीड़े होंगे जड़े सुनी सहनी होंगी, तो पताजी होंगे या कुछ वैसे कीड़े होते थे या मैना होता पक्षी होते थे वही खा जाते थे, पर हाँ स्प्रे पे आई हो तो सह रसायनिक चीजा थोड़ा जहा कटाना पोनिया हाँ जो क्योंकि आड़ी सेहत पे भी उन्हों का प्रभाव पुआ था।
1: बिल्कुल कने देखा कि अगर असदा किसान साथी प्राकृतिक खेती जो अपनांदा है तो प्राकृतिक खेती कने जेडे उत्पाद पैदा होने ने से असा दी सेहत ताई भी ठीक होने ने और बीमारियां भी कने भी घट लगनियां ने।
0: हां जी बिल्कुल जी,
1: ए यहां आशा करदे ने कि असा दे जेडे किसान साथी कने भी प्राकृतिक खेती दी तरफ आउन, अपनी सेहत दा भी ध्यान रखन और अपना जेड़ा एक पर्यावरण जो बचाने ताई भी सहयोग कने भी करन।
0: बिल्कुल ठीक जी,
1: ता देखा डॉक्टर साहब कि असा दा जेड़ा किसान साथी के भी असा दे बुजुर्ग दे टाइम जेडी खेती बाड़ी कने भी करा करदे ने है ना, और एक ऐसा भी समय था कि असा दे बुजुर्ग के भी उन्हां दी एक आय दा साधन खेतीबाड़ी ही था, लेकिन अज दे वर्तमान समय च ए जेड़ी प्राकृतिक खेती है इसकी कजो सांझो जेड़ी जरूरत के भी महसूस हुआ करदी है।
0: हां जी देखा प्राकृतिक खेती दी जरूरत तो महसूस हो दी, सबसे पहले जियां तुहां बोलिया कि बीमारियां बढ़ा दियां,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: जो प्राकृतिक खेती दे मुख्य घटक है कि देसी गाय दा सुने होना तो कि देसी गाय दा गौमूत्र हुंदा गोबर हुंदा उस जीवाणु अधिक हुंदे, उस दे ही कई घटक हां बनाए हो जिया बीज अमृत घन जीव अमृत है ना, तसे स्प्रे ताए कने खाद वास्ते जल उन्हां दा हां गोबर कने गौमूत्र यूज करा दे ता उइयां ही कंट्रोल हो जांदियां सौ बीमारियां, कने चलो हां बाहर ते कोई आर्टिफिशियल केमिकल नहीं पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करना है, तो जो आड़ा उत्पाद अहां लेना है तसे भी हेल्दी होना, तो हां करे भी रखी के देखा जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस है से तुहाड़ा चार दिन ठीक रहना, कने उइयां जो स्प्रे वाले टमाटर या भिंडी लोआ तसे एकदम पली उदी लगदी दो दिन अंदर खराब हो जांदी अहां दी हेल्थ पे भी, जियां तुहां पता है सुने तो अजकल न्यूज भी होता कि जो हाड़ा हिमाचल प्रदेश है से दूए नंबर पे आई है कैंसर पेशेंट दी शुगर आड़ी बढ़ा दी बीमारियां ता बढ़ा दी है क्योंकि हाड़ा जो उत्पाद है से ठीक नहीं रहा, तो उसी वहां एकदम क्योंकि यहाँ अपना पेट भी भरना है तो एकदम हर रसायनिक खादों छड़ी भी नहीं सकते क्योंकि इसका उत्पाद जी प्राकृतिक खेती चलो तो रसायन एकदम कटानी है हाइब्रिड बीज से तो नॉर्मल सर्टिफाइड या ओपी वराइटीज का बीज पाना है, तो हाँ एकदम थोड़ा ये नहीं सोचना है तो कि जितनी अगर मन लिया पहले उपज 10 क्विंटल कणक निकलती तो 10 हो ही सकता से अद्धी पे भी आई है,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: कि तुहां काय मारने दी दवा नहीं पानी तुहां कोई वो नहीं पाना बारे ते जियां मन लिया रस्ट आई आदि तुहां टिल्ट या शाइन कोई दवाई स्प्रे करा दे या सब्जियां पे भी तीं तुहां छोटे दे बीमारी हो दी तुहां उसे हरा भरा या कीड़िया मुक्त रखने ते तुहां स्प्रे कर दिया दे तुहाड़ी उत्पाद तो बढ़ी आदा, पर तुहां जो स्प्रे करा दे से तुहाड़े सब्जियां दे माध्यम ते तुहाड़े शरीर च जांदी, कने शरीर च जांदे तां बीमारियां बढ़ा दी, ਤਾਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੰਨੇ ਜੋ ਇਤੋਂ ਹਮ ਬੋਲੇ ਕਿ ਯੁਵਾ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸਾਹ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇ ਛੱਡਾ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਕਮ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਵੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਹਾਂ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਵੇਸਟ ਘਟਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਗੋਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੇ ਖਾਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਂ ਕੁਤੇ ਤੇ ਬਾਹਰੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਂ ਪਾਲੀ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਂ ਫਸਲ ਹੀ ਬੀਜ ਬੀਜਣੇ ਕਨੇ ਉਤਪਾਦ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਉਥਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨ ਮੁਰਗੀ ਪਾਲਣ ਵੀ ਕਰਨ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਰਨ ਸਹਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਨੇ ਕੁਥੇ ਤਾਂ ਕੁਥੇ ਮਤਲਬ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤਰਫ ਤੇ ਵੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਣੀ ਜੋ ਯੁਵਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਨਾ ਸਹਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਫਲੋਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਜਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਈ ਸਕਦੇ ਆਹਦੇ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਇਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦੇ ਕਨੇ ਕਨੇ ਸੇ ਗੇਂਦੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ ਤਾਂ ਗੇਂਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਰਸਰੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਉਸੇ ਇਨਕਮ ਉਸਮੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਯੁਵਾ ਕੋ ਹਮਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜੋੜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਹਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੋਪਸ ਦਾ ਤੁਹਾਂ ਸੀਰੀਅਲ ਕ੍ਰੋਪਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੁਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸਟੋਕ ਵੀ ਲੈਣੇ
1: ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ
0: ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਖੇਤੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਅਪਰੋਚ ਲੈਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ 'ਚ ਸਸਟੇਨ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਕਨਾੜੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੇ ਜੋ MSP ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੀ ਤੀ ਉਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਉਤਪਾਦ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹਾਂ ਹਲਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਪਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹਲਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 150 ਰੁਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਾਏਬੈਕ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇ ਅੜੀ ਜੋ ਕਣਕ ਹੈ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ 90 ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਤੀ ਆ ਕਨੇ ਛੱਲੀ ਮੱਕੀ ਜੋ ਹੈ ਅੜੀ ਸਹਿ 60 ਰੁਪਏ ਕਰੀ ਤੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਂ ਲਗਾ ਦੇਣ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿਆ ਦੀ ਹੈ
1: ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਤੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ
2: ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀਓ ਅਸਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤ ਬਚਾਓ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਸੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਦੇਖਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤਕਰਤਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਵਿਕਾਸ ਪਠਾਣੀਆ ਨੇ
3: ਹੁਣ ਸਾਜੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਤੇ ਆ ਅਨੁਮਤੀ
2: ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੈ ਹਿੰਦ।

0: इस कार्यक्रम दे प्रायोजक थे कृषि कने किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं मौजा ग्राएं दिया कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम मौजा ग्राइंदियां सुना करदे सारे किसान कने बागवान साथियां जो मास्टर निधि फिरी ते राम राम कने किसान साथियो मेरे सोगी है नटियाले पर किसान मित्र जी जेडे अज मेरे सोगी आए हो बड़े टाइमे बाद क्योंकि तिना जो घरे फसलों का बड़ा भरी काम पिया था ता राम राम किसान मित्र जी
1: जी एक बार फिर से सारे सुनने वालों का हाँ स्वागत करते हैं कार्यक्रम के कार्यक्रम लेकर ही हाजिर हैं हम मौजा ग्राई दियाँ।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल दिखा अजकल दिखा

0: जी किसान साथियों दिखा हाँ संजय बेलाए लोक गाथा सुनी तां
1: हाँ
0: दिखा क्या हुंदा हा कि ये जिहड़ी है साढ़े इत्थे टियाले दे बखे दी लोक गाथा है। कहने
1: हाँ
0: दिखा राजे दे जालू क्या करदे है कि भई पानी ताई सै उन्हां अपनी नूहां दे जिहड़ा सै बलिदान दे दित्ता।
1: हाँ अगर देखा हर एक जड़े अहाँ के लोग गीत है ना, इन्हें बच्चे
0: जी
1: जी तुम दसिया ना गाथा, कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कविता अहाँ के इलाके की कोई याद जुड़ी हो है।
0: बिल्कुल जी
1: कहना
0: बिल्कुल
1: हाँ इन्हें गीतें अगर ध्यान देने सुन कहना पूरा अगर तुम अहाँ समझ ना तो एक बड़ा आनंद आता ना।
0: आनंद भी आता। कने एक अहाँ सोचते भी तालू जीवन कदिया था। कने
1: हाँ
0: सांझो अपने बच्चों जो अगलिया जो सारे जो जड़ा है सही बारे च दसना चाहिए भी तालू दिखा पानी की कितनी कमी थी। कने
1: हाँ
0: ता जड़ा ऐसा राणी अपना जड़ा ऐसा बलिदान ती दे पिछे दिता था।
1: जी
0: कने दिखा अजकल लगी हैं गर्मियाँ
1: हाँ
0: कने सांझो जड़ा ऐसा जरूर पानी की बूंद बूंद बचाना चाहिए। कने ये सोचना चाहिए कि पानी जड़ा ऐसा बड़ा भारी कीमती है।
1: जी हाँ कहने एक टियाले का जड़ा सा नारा भी है ना
0: बिल्कुल
1: कि धरती माता करे पुकार, धरती माता करे पुकार, बरखा का पानी ना जाए कुथी भी बेकार।
0: बिल्कुल जी
1: कहना
0: बिल्कुल
1: इसी इकट्ठा करना करा तो हाँ सारे स्वीकार है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: हाँ देखा चलो बरखा होनी है तो बरखा का बड़ा सारा पानी रूढ़ी के जड़ा सा निचले इलाके चली जाता ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: कहना सरकार द्वारा भी जिया विभाग द्वारा या पंचायत स्तर पर मते सारे पानी जो रोकने दे ऐसे जिया कोई जिया जिस जलाशय जिया तालाब होई ये टैंक होई ये या चेक डैम बनाई की है ना,
0: जी
1: ताकि पानी जड़ा सा जमीना भी अगर कुथी अगर बाहर भी जाता था तो सारे हिसाब जमीना बिच ही होवे ना,
0: जी
1: क्योंकि पूरा साल अटेगी यही बरसाती का पानी जड़ा सा निकलना है फिर जी कुछ सीरा ते कुछ नाला खोला च दरिया च है ना।
0: वैसे भी दिखा ना
1: हाँ
0: किसान मित्र जी तुहानू पता कि साड़ी धरती पर जितना भी पानी है उसका कुछ प्रतिशत ही जड़ा है हांजो पीने जड़ा ऐसा मिलता है।
1: हाँ
0: बाकी पानी जड़ा ऐसा सांजो पीने ताई नहीं हुंदा। तो
1: हाँ
0: दिखा हुण आ फिरी गलबात करनी है फुलां दी खेती दे बारे च। दिखा इहदे बड़े फायदे हन। साड़े कई बच्चे जड़े हन गलांदे भई जी सांजो रोजगार नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है। अहां अपने घरे च रही कई चाहे साड़ी छोटी जगह है चाहे साड़ी मती जगह है तिथों कुछ ना कुछ काम करके जड़ा अपना रोजगार बनाई सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: ता
1: हाँ जी देखा फुलां दी खेतीबाड़ी एक जड़ा सा रोजगार दा साधन है।
0: बिल्कुल जी
1: कहना फुलां दी मस्टैणी जी कितनी मांग है ना, जब
0: बिल्कुल जी
1: देखा
0: बिल्कुल
1: नवरात्रे लगते हैं ना मंदिरों में कितनी मांग है।
0: हाँ जी
1: कहना इं भी देखा कोई ब्याह शादियां लगी हैं जी यहाँ के बोलते ना गड्डी सजानी है लाड़े दी या
0: बिल्कुल
1: लाड़िए
0: जी
1: दी है ना
0: बिल्कुल ब्याह च क्या दिखा पूरा
1: देखा।
0: मंडप फुलां ने सजाया हुंदा। कने जालू सै ताजे फुलां ने सजदा ना तां
1: हाँ
0: तिहदी जिहड़ी ऐसा सुंदरता ही होर हुंदी। दिखा नकली फुल तां कुत्थे भी मिली जांदे
1: हाँ
0: ताजे फुलां दी गल ही होर है। दिखा पूजा च इन्हां दा काम हुंदा मंदिरां च लगदे होटलां च लगदे सजावटां ताईं त्योहारां
1: हाँ
0: ताईं फुलां दी खपत जिहड़ी है बड़ी ज्यादा रहिंदी है। बस सांझो ये है कि तिन्हां जो उगाणे दी तिन्हां दी मांग जो पूरा करने दी जरूरत है।
1: जरूरत है। हाँ
0: बिल्कुल
1: जी
0: जी
1: जी
0: कने
1: कहना
0: घट जमीना च भी हाँ जड़ा ऐसा इस खेती है जो संभव जड़ा ऐसा करी सकते।
1: जी तो मस्टैणी जी फिर ते जड़ा सा सुनते ने एक संदेश पहला कहना फिर एक जड़ा सा लोकगीत है ना।
0: जी
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bolt Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa.
5: सिर्फ 1999 डाउन पेमेंट 1999 EMI। जी हाँ अब नई मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 घर लाइए सिर्फ 1999 रुपए डाउन पेमेंट और 1999 रुपए EMI के साथ। साथ ही पाइए कुल बेनिफिट्स 72,100 रुपए तक। जल्दी कीजिए कीमतें जल्द बढ़ने वाली है। आज ही विजिट करें अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम। मारुति सुजुकी अरीना खुशियों की चाबी। TNC अप्लाई।

0: तो किसान साथियों दिखा हाँ गल करा दे हे फुलां दी खेती दे बारे च, तो दिखा हाँ घट जमीन च भी जड़ा ऐसा इस कम्मे जो संभव करी सकदे, कने छोटे क्षेत्रां च भी हाँ इसकी जड़ी ऐसे खरी आए ले सकदे, कने दिखा फुलां ते माला बन दी आर गुलदस्ते वगैरह इत्र बन दे, कने और कई कुछ जड़ा ऐसा इसते बनदा, इसते अतिरिक्त आमदनी जड़ी ऐसे हो ही आंदी।
1: हाँ जी हाँ जी, तुम दस्या है ना गुलाब से, दिखा गुलाब से कितने सारे हैं जिस यहाँ बोलते नहीं है खुशबू वाले, हाँ सेंट हो ही है ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल,
1: कने कुछ दवाइयों से भी इसी प्रयोग से लिया जाता फुला जो।
0: बिल्कुल जी हाँ। दिखा साढ़े रजनीगंधा है, गेंदा है, गुलाब है, तो कितनी तरह की किस्म है न, कने तिना ते हाँ जड़े हैं सह इस खेती है जो करी के फायदा ले सकते। तो दिखा कई बार क्या होंगे ना कि हाँ कुछ खेती की होंगी तो इसते फायदा ना हो, हाँ एक दो जगह और हाथ मारे हो ना, जी तो मना फुलां की खेती की हो, मछली पालन कित्या, मुर्गी पालन कित्या, तो कुथी ना कुथी तो हाड़ी आमदनी जी सह बनी आती।
1: हाँ जी बिल्कुल हाँ जी, कहना आमदनी तो अहाँ जो जड़ी से बनाना ही पौनी, अहाँ के मत सारे जड़े किसान साथी है ना तिना दिखा अपने खेती बाड़ी के कमे एक कार्य करना, तिना मत सारे और कम धंधे भी रखे हो ना, जी कुनी ग्राएं बीच कोई आटा चक्की लगाई हो है, या कोनी कोई मछलियां पालने का काम करा करते हैं, या इससे सोगी मधुमक्खी पालन है, अजकल दिखा मखीर दी जड़ी सै बड़ी बड़ी मांग है बाजारे
0: बिल्कुल
1: बीच
0: जी
1: है ना।
0: बिल्कुल, ती दे कन्ने दिखा अच्छे फूल हो ना, तो तीन
1: हाँ
0: खरिया किस्मा हो, तिसते शायद भी जेड़ा ऐसा खरा मिलता, मन्ना कि अगर सह तुलसी दे फुलां पर बैठा ही है या कुछ छैड़ फुलां पर बैठा ही है, तो तिसने जड़ी ऐसे तिना दा गुणवत्ता जड़ी ऐसा होर बधी आंदी, कन्ने दिखा जलू भी सू कुछ चीज़ा का मुल मिलता तो तिदी गुणवत्ता के आधार पर ही मिलता है।
1: हाँ, कने अगर तो हाँ फुलां दी खेतीबाड़ी दा कारोबार नहीं है रोजगार चलाना चाहते हैं
0: जी
1: इस ताइया तो हाँ अपने नज़दीक दे जड़े कृषि विज्ञान केंद्र हैं ब्लॉक स्तर पर उतू जड़े अधिकारी हैं जड़े से विशेषवाद विशेषज्ञ हैं उन्होंने कन्ने मिला, कने उतू तो हाँ अपनी एक अर्जी दिया कि अहाँ भी जड़े से ये बारे एक पूरा प्रशिक्षण जड़ा सा लेना चाहते हैं ना,
0: जी
1: तो हाँ जो जिंगी ऐसा संभव होना तो हाँ जो तेना सूचना देनी कने तो हाँ एक अच्छी जड़ी सर ट्रेनिंग लेके अपना कारोबार जड़ा सा चला ना।
0: बिल्कुल जी बिल्कुल, जालू भी कोई काम करना है तो तीदे ताई सांजो ट्रेनिंग लेना बड़ा जरूरी है, तिसने क्या होंदा कि अहां जड़ा ऐसा कुछ भी कम्मे च गलत नहीं होंदे, कने खरे ने अहां जड़ा सा फायदा चुकी सकदे। हुण अहां फिर चलना एक प्यारे जे लोक गीत दी तरफ, पर तिसते पहले कुछ एक संदेश।
1: जी
2: This June, make every drive feel smoother and every journey special. Presenting the Bold Baleno, the perfect combination of style, technology and safety. Equipped with features like 360-degree camera, heads-up display and safety through 6 airbags. The Baleno can now be yours at an EMI starting at just ₹3,999 per month. Also, get amazing benefits up to ₹50,000. Valid till 30th June.
3: Hurry, offers till stocks last. Visit your nearest Nexa showroom. TNC apply.
4: Nexa. अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्था

0: अस्पतालों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही है।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार। सुक्खू सरकार, सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

किसान साथियों, इसी जड़ी सैल माता की भेंट करने कार्यक्रम का समय इतों ही संपन्न होने जो है। प्रस्तुतकर्ता कार्यक्रम के जितेंद्र पाल सिंह, तकनीकी सहयोग दिता विकास पठानिया ने। हाँ जी, दुनिया दिया अनुमति। अच्छा जी, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे मौजा ग्राइंडिया कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
2: We attach high importance to the welfare and well-being.
3: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
2: Peace and stability in the region.
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि अधिकारियों को एमटी सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ओमान के अधिकारी राहत और आपातकालीन समन्वय के प्रयासों में जुटे हैं। टैंकर में आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। 8 जून को एमटी मारिवेक्स अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर आकाशवाणी में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता का उल्लेख किया। उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Viksit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. India strongly condemned the recent attack on a Palau-flagged tanker MT Setebello off the coast of Oman, in which three internationals lost their lives. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Ranthir Jaiswal said in this regard, the government has lodged a strong protest by summoning the US Charles de Fer.
2: We attach high importance to the welfare and well-being of our seafarers community. Yesterday, we condemned the attack on a ship off the coast of Oman, in which, unfortunately, we lost three Indian nationals. We had summoned the US CDA here to register a strong protest. The continuing incidents of attacks on shipping in the region are deeply worrisome. These attacks must cease and end. And we also call for dialogue and diplomacy so that we can have an early return to peace and stability in the region.
4: Additional Secretary in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Mukesh Mangal, expressed concern over recent incidents involving merchant vessels in the Persian Gulf region and reaffirmed its commitment to the safety and welfare of Indian seafarers. He further informed that today the bitumen tanker MT Jalveer, a Guinea-Bissau flagged vessel, was involved in a maritime security incident near Shinas port in Oman. The vessel had 20 Indian crew members on board. All of them are reported to be safe and evacuation operations are currently underway. Union Textiles Minister Giriraj Singh today said that India's textile market has grown from about 8.5 lakh crore rupees in 2014-15 to over 16 lakh crore rupees at present. Briefing media in New Delhi on the occasion of 12 years of achievements of the Modi government, Mr. Singh said that the textile sector is the largest employment-generating industry in the country after agriculture. The minister highlighted that India's silk production has increased from 26,480 metric tons to 42,005 metric tons, while silk imports have declined by nearly 50%. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to France and Slovakia from 14th to 18th of this month to participate in the upcoming G7 summit. Briefing media in New Delhi this afternoon, Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said this will be a highly productive and wide-ranging visit. He added that the visit spans three destinations in France, Nice, Evian and Paris, and Slovakia. Mr. George said that the visit will provide an opportunity for Prime Minister to engage with world leaders present at the G7 summit on issues of importance to India as well as to the Global South. India has dispatched a consignment of 20,000 doses of measles vaccines and approximately 3 tons of medical supplies to support the government of Maldives in strengthening immunization coverage and safeguarding public health. The External Affairs Ministry said in a statement that this timely assistance will help address increasing cases of measles in Maldives and reinforce the response efforts of the government. UK Defence Secretary John Healey has resigned, accusing the government of being unwilling to commit the resources needed to safeguard the country. In his resignation letter to Prime Minister Keir Starmer, Mr. Healey said the Treasury Department had refused to provide the funding required under the government's defence investment plan, leaving him with no choice but to step down from the cabinet. Benchmark domestic equity indices ended today's trading session with moderate losses of 0.2%. Sensex slipped 151 points to close at 73,833, while the Nifty dipped 53 points to settle at 23,162. And that is the end of this news bulletin.
0: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
5: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ, और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: धन्यवाद आपका।
5: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूं, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूं। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
6: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयां, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है। और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूं। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला। उनको बहुत बहुत बधाई।
5: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा है, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
6: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
5: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं अपने शिवराज से बात कर रहा हूँ। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
6: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीजें चल रही थी, तब उनने फोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
5: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
6: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
5: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
6: देखिए, एक तो संकट है
5: जिसको इतिहास याद रखेगा,
6: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि यह दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है, जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
5: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगा। बहलाने
6: को गालिब ख्याल अच्छा है।
5: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
6: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
5: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है?
6: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई, दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
5: आपने जो बात कही पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
6: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है, और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की भरने की कोशिश की गई।
5: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
6: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
5: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
6: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
5: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
6: हकीकत तो यही जनता जान, देखिए हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, एनडीए शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
5: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
6: नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
5: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
6: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
5: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
6: देखिए कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे। उस जमाने में विकास की दृष्टि नहीं थी। कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचाया। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे, मतलब मैं तो कहूंगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
5: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगहों पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
6: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
5: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
6: तत्काल देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे। और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे, प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
7: अच्छा,
6: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
5: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
6: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। तो काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
5: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
6: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
5: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें, और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
6: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा हमें सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी, किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, और इसलिए AI का उपयोग भी हम कैसे हम कर सकते हैं, मैकेनाइजेशन का काम कैसे करके उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उत्पादन की लागत घटा सकते हैं, इस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। एक ने अनेकों प्रयोग हो रहे हैं, जैसे AI के माध्यम से ही अगर आप बात करेंगे,
5: जो अल नैनो की हम बात कर रहे हैं,
6: हमने अल नैनो के भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। हमने एक भारत विस्तार, हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर कोई भी किसान पूछता है अगर कोई सवाल कि मेरी फसल की पत्ती पीली हो रही है, ऐसे लक्षण है, अब मैं क्या करूं, तो तत्काल उसको जवाब मिलता है कि फलानी बीमारी हो सकती है, आप ये दवाई डालिए। ये AI का इस्तेमाल है। मोबाइल लेके आप खेत में खड़े हो जाए तो ये पता चल जाता है कि मिट्टी में कौन कौन से तत्व है और हमको कितनी खाद डालनी चाहिए, और नहीं तो बिना मतलब के जिस चीज की जरूरत नहीं है वो भी डाले जा रहे हैं, खर्चा भी बढ़ता है, उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो AI के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने AI के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी AI की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
5: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
6: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हों, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रहित सर्वोपरि मानते हुए जो विश्व हित की भी सोचता हो। तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
5: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
6: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश उसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है। तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ। जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
5: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
6: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
7: छब्बीस मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है सभी

0: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई, या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, पर इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए, या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएं और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएं, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूजियम बनाने की घोषणा की जिस पे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूजियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परंपरा से ज़्यादा बेहतर हैं। उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियां हैं, जो विभिन्न विषयों पे हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पे हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
1: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही। जहाँ किसी भी देश का, हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं। और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी संस्कृति खत्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे?
0: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पे नालंदा विहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पे रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
1: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेनजी की अगर मैं बात करूं तो

0: ज्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें, अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेज़ों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और ख़ासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पर अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ ARVR एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पर जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो ज्ञान की प्राप्ति होगी, उसे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी और अपने ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में है संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर, जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर है, वो मूर्तियां, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, जिसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है बल्कि भारत के सभी मिशंस, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशंस, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेंजी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है, तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी शिमला।
3: अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
4: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
5: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
4: यदि संतान कर्तव्य न निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
5: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
4: जानकारी लें, अधिकार जाने।
5: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है, और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
7: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है, और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
6: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
8: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर, विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार, और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में RDG सहित हिमाचल के हितों के मुद्दे उठाए। उन्होंने प्रदेश के सामने मौजूद वित्तीय चुनौतियों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने RDG बंद होने के बाद प्रदेश को दिए गए 25,000 करोड़ रुपए की राशि को नाकाफी करार दिया और विकास गतिविधियों को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए इस राशि को बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में विश्वास के विकास के 12 वर्ष, गरीब कल्याण के 12 वर्ष कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल 12 व 13 जून को शिमला के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि 12 जून को नड्डा शिमला में स्वच्छता अभियान में भाग लेंगे। इसके अलावा वे विकसित भारत संकल्प सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों को संबोधित करेंगे। ईरान के हॉर्मुज जल डमरू में एक भारतीय तेल टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में हमीरपुर जिला के गलोड़ के रहने वाले नाविक आदित्य शर्मा की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदित्य शर्मा की मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ित परिवार को हर मुमकिन सहायता देने के निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और सांसद अनुराग ठाकुर ने भी आदित्य शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। सोलन जिला में जनगणना के लिए तैयारियां पूरे जोरों पर है। जनगणना निदेशक दीप शिखा की अध्यक्षता में आज सोलन में कर्मचारियों को जनगणना का प्रशिक्षण दिया गया और इस कार्य की बारीकियों से अवगत करवाया गया। दीप शिखा ने इस मौके पर कहा कि जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इन दिनों स्वगणना का कार्य चल रहा है।
9: फर्स्ट फेज जो है वो 16 जून से 15 जुलाई के बीच में चल रहा है और हमारा इसमें स्वगणना का प्रावधान भी रखा गया है, जिसके अंतर्गत की कोई भी जो हमारा जनमानस है, आम जनता है, वो स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in पे जाके उस पे FAQs दिए हैं, उसको पढ़ सकते हैं और अपनी मोबाइल नंबर के थ्रू उसमें एंटर करके अपनी लोकेशन मार करके 33 जो प्रश्न है आधिकारिक रूप से उनके आंसर भर सकते हैं पोर्टल पे। तदुपरांत उनको एक सेल्फ इन्यूमरेशन ID जनरेट होगा, जिसको कि प्रगणक जब हमारे 16 जून से 15 जुलाई के बीच में आएंगे तो उनके साथ शेयर करेंगे और फाइनली वो उसको एक बार वेरीफाई करके पोर्टल पे सबमिट कर। पूरे हिमाचल में हमारे करीबन 18,600 के करीब करीब जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
8: स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधारीकरण की दिशा में बेहतर कार्य कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री आज शिमला में अटल सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चमियाना में रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग बॉडी की पहली बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति के 2026-27 की अनुमानित आय और व्यय के अनुमानों को मंजूरी दी गई। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसके तहत सरकार गांवों के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों को घर द्वार पर उनकी समस्याओं का समाधान मिल सके। जगत सिंह नेगी ने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला निचार में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को संबोधित किया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन

0: चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को जिम्मेवार ठहराया है। हर्षवर्धन चौहान ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को आरडीजी के रूप में 5 सालों में 70,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब मौजूदा सरकार इसे ठीक करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों की देनदारियां चरणबद्ध ढंग से दे रही है, लेकिन भाजपा सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं कर रही है।
1: जो हिमाचल प्रदेश की वित्तीय हालत हुई है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार। सबसे पहले तो जयराम जी और इनकी जो सरकार 5 साल रही है, इन्होंने हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हमारी सरकार कोशिश करेगी रेवेन्यू जनरेट हो, जो ये पिछली लाइबिलिटीज है, जो कर्मचारी के एरियर्स है, पेंशन की, मेडिकल रिइम्बर्समेंट है और चीजें, वो हम देने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक जो है इसको दिया भी गया है। बीजेपी तो राजनीति करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रही है।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूर्व कांग्रेस नेता नीरज भारती ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और इन आरोपों से सरकार का भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में कहा कि नीरज भारती के आरोपों ने साबित कर दिया है कि सरकार ने लंबे समय से भ्रष्टाचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकाय चुनाव परिणामों ने यह साबित कर दिया है कि जनादेश सरकार के खिलाफ है और आने वाले समय में जनता कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। जयराम ठाकुर ने सरकार द्वारा पहले सैलरी डेफर करने और इस फैसले को वापस लिए जाने पर कहा कि सरकार ने यह फैसला बिना सोचे समझे लिया था। इस बीच जिला परिषद के चमियाणा वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीते खुश विक्रम सेन ने आज शिमला में जयराम ठाकुर से अपने कार्यकर्ताओं सहित भेंट की। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। डॉक्टर प्रेमलाल गौतम बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। वे कृषि वैज्ञानिक हैं और उन्हें इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर गौतम ने देश का प्लांट जर्मप्लाज्म रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क शुरू किया है। वे बिलासपुर जिला से संबंध रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने आज चंबा जिला की तीसा उपमंडी का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। पठानिया ने इस मौके पर कहा कि इस उपमंडी के शुरू हो जाने से क्षेत्र के किसानों और बागवानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए अब घर से दूर नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश हज कमेटी के अध्यक्ष दिलदार अली बट ने इस मौके पर जिले के सभी किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने और सरकार द्वारा दिए जा रहे समर्थन मूल्य का लाभ उठाने की अपील की। पंचायत समिति जुब्बल के आज संपन्न चुनाव में कांग्रेस समर्थित कमलेश झगटा को अध्यक्ष और लोकपाल शरखोली को उपाध्यक्ष चुना गया। ये चुनाव निर्विरोध हुए। इस मौके पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने गुणात्मक स्कूल शिक्षा के लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं। धर्माणी आज घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डंगार में विद्यार्थियों के साथ संवाद कर रहे थे। इस दौरान विद्यार्थियों ने मंत्री से भी प्रश्न पूछे। धर्माणी ने बाद में एम्स बिलासपुर का दौरा भी किया और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि सरकार एम्स की आपात सेतु पहल को प्रदेश भर में लागू करने का प्रयास कर रही है ताकि आपात स्थिति में मरीज को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सके। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार से हिमाचल को सिर्फ केंद्रीय योजनाओं के हिस्से के तौर पर ही पैसा मिल रहा है और राज्य को किसी प्रकार की विशेष आर्थिक सहायता नहीं मिली है। विनय कुमार ने आज शिमला में कहा कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल की आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में अपने सभी दायित्वों को पूरा कर रही है और सभी कर्मचारियों की देनदारियों को चरणबद्ध ढंग से दिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि वो प्रदेश हित में केंद्र से हिमाचल को विशेष आर्थिक मदद दिलवाएं और आरडीजी को भी बहाल करवाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में उठाए हिमाचल के हित के मुद्दे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल से प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को ठहराया जिम्मेवार और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा नीरज भारती के आरोपों से उजागर हुआ सरकार का भ्रष्टाचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
2: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं।
3: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
4: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
3: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
4: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
3: शुभवाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
4: नियम और शर्तें लागू।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एक सौ 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं और इस वक्त हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं विभिन्न गीत संगीत का कार्यक्रम। और आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे इस गीत के साथ। प्यारे प्यारे से गीतों का आनंद लेने के लिए जुड़े रहिए आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। सुनते रहिए सबरस।

0: बड़ा चासी के पहला
1: सबरस कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। और कार्यक्रम का अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है मन्नत नूर की आवाज में, और उनके साथ है एमी विर्क।

सबरस कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति आइए सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

0: एसयूवी का स्टाइल, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसे का नाम मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब घर लाइए ब्रेजा, जिसकी शुरुआती कीमत है सिर्फ ₹7.71 लाख। साथ ही पाइए ₹55,000 तक के टोटल बेनिफिट्स और हर सफर को बनाए और भी इकोनॉमिकल 25.51 किलोमीटर पर लीटर तक के माइलेज के साथ। ऑफर सीमित समय के लिए है। आज ही अपने नजदीकी मारुति सुजुकी अरीना शोरूम पर विजिट कीजिए और अपनी ब्रेजा बुक कीजिए। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: 103.4 मेगाहर्ट्ज पर आप है आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र के साथ। चलिए कार्यक्रम संबंधी एक सूचना आप सभी से साझा कर ले। श्रोता, इस रविवार दिनांक 14 जून 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम का विषय होगा थायराइड और आपकी सेहत। इस विषय के लिए विशेषज्ञ के तौर पर आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर सुजीत रैना, प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय महाविद्यालय एवं चिकित्सालय टांडा कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। आपके प्रश्न जानने के लिए और उनके उत्तर आप इनसे जान सकते हैं और इसके लिए आप कार्यक्रम सुनेंगे आकाशवाणी धर्मशाला FM 103.4 मेगाहर्ट्ज पर। प्रश्न पूछने के लिए आपको फ़ोन नंबर बता दें, आप हमें कॉल कर सकते हैं 01892224391 पर। फ़ोन नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं 01892224391। और ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में 14 जून के दिन। और इस कार्यक्रम को आप FM 103.4 मेगाहर्ट्ज़ के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। सबरस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सितेंद्र सरताज को।

श्रोता, इसी के साथ आज का विविध गीत संगीत का कार्यक्रम सबरस अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कुछ देशभक्ति गीत।

0: श्रोता, इसी के साथ देशभक्ति गीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे और रात्रि 9 आप सुनेंगे News@9। कीजिए बस कुछ पलों का इंतजार।
1: पूजा की थाली में लाए हैं हम फूल हर रंग के आज हर डाल।
2: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
3: The topic for the Governing Council meeting.
4: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
3: To youth, to working life, to old age.
2: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री निफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
5: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोच समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को एमटी सेटबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर एमटी जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से ये जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं, जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने इलाज करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल।

0: होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम में आपसे बात हो रही है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। श्रोताओं, आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा का जन्म 2 जून 1987 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता मशहूर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और माता पूनम सिन्हा हैं। आपको बताना चाहेंगे कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत जो की है वो है वर्ष 2010 में बनी फिल्म दबंग से। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का अवॉर्ड भी दिया गया।

श्रोता, यहाँ पर आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहेंगे कि एक्ट्रेस बनने से पहले सोनाक्षी सिन्हा ने फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया। तो चलिए, बातें तो यूं ही होती रहेगी, फिलहाल सुनते हैं उनकी फिल्म दबंग से ये गीत।

जी हाँ, एक ही कलाकार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से, और आपसे बात हो रही है अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। श्रोता, आपको बता दें, उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम तो उनमें शामिल है दबंग, रावड़ी राठौर, सन ऑफ सरदार, संडे, लुटेरा, कलंक, मिशन मंगल, तेवर और भुज जैसी फिल्में शामिल हैं। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उन्हीं की फिल्म लुटेरा का ये प्यारा सा गीत।

श्रोता, इसी गीत के साथ आज का एक ही कलाकार कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। एक 103.4 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का धर्मशाला केंद्र। रात्रि के 9:30 हो चुके हैं और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम शामे गजल।

जी हाँ श्रोताओं, शाम गज़ल जहाँ पर गज़लें हैं, नज़में हैं, कुछ बातें हैं, कुछ कहानियाँ हैं जो बयां होगी आज के इस शाम गज़ल प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में गई इस गज़ल से। गज़लों का लुत्फ़ उठाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र पर। सुनते रहिए प्रोग्राम शाम गज़ल।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं गजलों का प्रोग्राम शाम गजल। प्रोग्राम में अगली गजल हम आपके लिए लेकर आए हैं गुलाम अली की आवाज में।

जी हाँ, गजलों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र के साथ। कार्यक्रम की अगली गजल आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की आवाज में।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं शाम गजल प्रोग्राम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

श्रोता जगजीत सिंह की आवाज़ में गाए इस गज़ल के साथ ही आज का शामे गज़ल प्रोग्राम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हिमाचली लोकगीतों का कार्यक्रम। आज के हिमाचली लोकगीतों के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं विनय अवरोल की आवाज़ में गाए इस लोकगीत से।

आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीत।

श्रोता, इसी लोकगीत के साथ हिमाचली लोकगीतों का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10:30 हुए हैं। यहाँ पर लेकर आ गए हैं हम आप सभी के लिए सदाबहार फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रपट संगीत। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में गाए अनामिका फिल्म के इस गीत से।

चित्रपट संगीत कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं दिल को सुकून देने वाले कुछ गीत जो हर किसी के मन को भा जाते हैं। ऐसा ही एक गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। फिल्म है अजनबी। इस फिल्म में संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से इस वक्त आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत, और यहाँ से हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ बेहद ही प्यारे प्यारे से गीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की धर्मशाला केंद्र से और हम आपको यहाँ से सुनवा रहे हैं कुछ सदाबहार से फिल्मी गीत। श्रोता, वो जमाना भी क्या खूब जमाना था जहाँ पर अपने जज्बात बयान करने के लिए अल्फाज नहीं बल्कि आंखों से ही बातें करके भी वो बयां कर लिए जाते थे।

चित्रपट संगीत के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं राज फिल्म से ये गीत। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोता, इसी के साथ आज का चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च

0: women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव चार मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के धर्मशाला केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।